गति में उत्तान पदासन। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, अगल बगल में रखें, सांस लेते हुए बाएं पैर को इतना उठाएं कि समकोण की आकृति निर्मित हो। कुछ देर रुकें एवं सांस छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएं। इस प्रकार बाएं पैर से 5-6 बार रखें। इस प्रकार बाएं पैर से 5 और 6 बार करें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ उठाकर करें। आइए दोस्तों, हम लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, मेरुदंड, पीठ के निचले हिस्से की पेशियों को मजबूत करता है, लोच व लचक पैदा करता है, चर्बी दूर कर जंघाएं एवं नितंब सुडौल बनाता है। गति में उत्तान पदासन जब हम करते हैं तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं तो ठीक होती हैं, साथ में जंघाओं पर जो कि एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा आसन कर लेते हैं, पैरों द्वारा वृत्त बनाना यानी पाद वृत्तासन। शवासन में लेट जाएं, पहले दायां पैर सीधा उठाएं और उसे दाएं तरफ से बाएं लाते हुए वृत्त बनाएं। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब उसी पैर से बाएं से दाएं तरफ घुमाएं। अब बाएं पैर से उपरोक्त क्रिया करें, दोनों पैरों को यही क्रिया दोहराएं, अर्थात एक पैर को हवा में गोल आकार देना है, फिर दूसरे पैर को गोल आकार में हवा में एक आकार देना, और अंत में दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार आकृति में हवा देना है। श्वास क्रम, क्रिया करते समय श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। लाभ, कमर दर्द में राहत, नितंब मजबूत और सुडोल बनते हैं, पैर की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है, मोटापा कम करने के लिए यह सबसे अच्छा आसन है, पेट और जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। आइए दोस्तों, अब हम इसी श्रृंखला में अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि पाद संचालन क्रिया यानी कि साइकिल चलाना है। श्वासन में लेटें और कल्पना करें कि आप साइकिल चला रहे हैं। पहले एक पैर उठाएं और साइकिल चलाने जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करें। 10 से 15 बार सीधा पैंडल एवं उल्टा पैंडल मारें। अब दूसरे पैर से पहले पैर की पुनरावृत्ति करें। दोनों पैरों को साइकिल पर बैठकर चलाने की क्रिया करें। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और साइकिल चलाने की क्रिया को दोहराएं। एक बार 10 से 15 बार सीधे पैंडल और फिर उल्टे पैंडल घुमाएं। यह प्रक्रिया दोस्तों आप 10 से 15 बार लगातार कर सकते हैं। साइकिल चलाने की इस प्रक्रिया से पेट की चर्बी, जंघाओं की चर्बी और नितंब की जो चर्बी है वो बहुत ही जल्दी ही ठीक होती है। आइए अब हम इसके लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश को लाभ होता है, टखने, पिंडली, घुटने, जांग, नितंब व कमर, इन सभी अंगों को लाभ मिलता है। जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारू करता है, अपान वायु का निष्कासन करता है, मोटापे को कम करने में सहायक सिद्ध होता है, जंघाओं एवं नितंबों को सुडौल बनाता है। थकान होने पर यह बिल्कुल न करें और पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ही पीछे ले जाएं। आइए अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि है सुप्त पाद संचालन क्रिया। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को अगल बगल में रखें, बाएं पैर को घुटने से इतना मोड़ें कि जंघा का हिस्सा पेट से स्पर्श करें।

अब पैर को सामने की तरफ सीधा करें, जमीन से 2 फीट ऊपर और जमीन पर रख दें। यह क्रिया 5 से 10 बार पहले बाएं पैर से और फिर दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करें, पहले बायां पैर जमीन से फिर 2 फीट ऊपर उठाएं और फिर पैर को घुटने से मोड़कर पेट से लगाएं और जमीन पर सीधा रख दें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। समय यह सभी क्रियाएं 5 से 10 बार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सुप्त पाद संचालन क्रिया के लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश में स्थित चर्बी को कम करता है, पाचन तंत्र मजबूत कर कब्ज को दूर करता है। नाभि अपने स्थान से हट गई हो तो उसे यह ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो आसन थे वह थे लेट कर किए जाने वाले आसन और उदर प्रदेश में अंग क्रियाएं जो संचालन की जाती हैं उनसे संबंधित आसन। यदि आप निरोगी हैं तो सदा निरोगी बने रहने के लिए योगाभ्यास करें और यदि आप रोग ग्रस्त हैं तो निरोग होने के लिए योगा अभ्यास अवश्य ही करें और स्वस्थ व सुंदर हो जाएं। इसीलिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपकी योगिनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आज समता लेकर के आती है। ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सक का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाए। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों के मत से मिलता हुआ है। इसे भारतवर्ष की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनसे शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को
स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णता नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती है और हम दवा लेने के लिए जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सभी चिकित्साएं हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये अन्य चिकित्साओं में श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि हम हर एक रोगी को दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि का उन पर प्रयोग होता है और वह उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो वह लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें दूर करता है और उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा से कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक वो पद्धति है जिसे हम अपने आप में स्वस्थ रह करके उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कुदरती इलाज के मूल तत्व पंच महाभूत। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के पांच तत्वों से हुआ है जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इनमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है जिसके बिना एक क्षण का अस्तित्व ही नहीं है। वायु जीवन है। तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे चिकित्सा पद्धति में वायु का प्रयोग क्या होना चाहिए। वायु का प्रयोग प्राकृतिक जीवन के अनुवायु को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो हम सभी लेते हैं किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में प्रकट होता है। घर के चार दीवारी या गंदी नालियों और कूड़े करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भरें। प्रातः सायंकाल स्वच्छ हवा में दीर्घ उच्चारण यानी दीर्घ मंत्र उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। ये कसरत करने से फेफड़े सशक्त रहते हैं। वायु अधिक लेने से रक्त शुद्ध होता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। आपके मकान, खिड़कियों और रोशनदानों से युक्त जो भी हवा आती है उसे हमें स्वतः लेते रहना चाहिए। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु रखें। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों से मुंह न ढकें। दूसरी बुरी आदत मुंह से श्वास लेने की होती है। काफी लोगों को ये देखा गया है कि सोते समय उनका मुंह खुल जाता है या उनकी आदत में आ जाने से उनका मुंह वह स्वयं ही खोल लेते हैं। या चिकित्सा में वायु मुंह से लेना सबसे खतरनाक साबित होता है। नथनों की राह श्वास लेने से वायु को स्वच्छ होने पर अवसर मिलता है और उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसे ही ली जा सकती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान, सरिता तट, खुले स्थानों, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में रहकर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक उपयोग कर सकें कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे यह निरा भ्रम ही है। शुद्ध, स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राणदाता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। प्रकृति की यही सबसे बड़ी एक अनोखी हमारे लिए उपहार है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं और उस उपहार से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति हमारे लिए स्वयं चलकर आती है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख
और शांति मिलती है वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण से बलदायक भी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोते समय हमें अपने नथुनों से यानी अपनी नासिका से ही श्वासों का लेना निरंतर जारी रखना चाहिए, मुंह से जितना हो सके श्वास नहीं लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़ी देर नंगे पैर जमीन पर चलें। इसका कारण सीधा यही है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शरीर के पैरों के तलवों से होकर के हमारी पूरी आंतरिक शरीर में जाता है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह पाते हैं। दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न के प्रकार से बना सकते हैं। नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था। नंगे पैर रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्ण कुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथा संभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नव जीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता, दीर्घायु एवं नव जीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब भी योग के लिए बताते हैं तो हमेशा से ये कहते हैं कि जमीन पर बैठकर योग नहीं करना है, मतलब जमीन पर कुछ बिछा करके ही बैठ करके योग करना है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण से योग से निकलने वाली ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम योग करें तो हमें कुछ न कुछ चटाई, मैट या कोई पुरानी चद्दर बिछा करके ही बैठ करके हमें योग करना चाहिए। लेकिन आज कुछ दो ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य ही इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए,
सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांति पूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे योग आसन को अगर हम घर बैठ के करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है और प्रकृति से योग में हम पृथ्वी से भी जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि अगर हम ध्यान योग सीधा पृथ्वी पर ही बैठ करके करेंगे, यानी कि कोई मैट, चटाई या चादर बिना बिछाए हुए, तो उसका सीधा लाभ हमें मिलता है, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण और योग के माध्यम से होने वाली शक्ति आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और दूसरा है शवासन, जो सब योग को करने के बाद में एकांत चित होकर के पृथ्वी पर लेट जाना है। और मानसिक तौर से जितने भी योग आसन आपने किए, कोई भी आसन किया है, उसे अपने अंदर उसको दोहराना है। कोने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया, उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ऐसे बिछौने पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति होती है तत्व को ग्रहण करने के लिए। खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति है आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए। मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के साथ योग करते समय आकाश यानी स्काई स्पेस का विशेष स्थान होता है। आकाश विशालता, शांति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम खुले आकाश के नीचे योग करते हैं तो हमारा मन सीमाओं में मुक्त होकर विस्तार का अनुभव करता है। योग दर्शन में आकाश को पंच महाभूत में पहला तत्व माना गया है। यह शून्य नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा विस्तार है। गहरी श्वास को लेते समय आकाश की ओर ध्यान लगाने से मन हल्का हो जाता है, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। खुले आकाश के नीचे किया गया योग श्वास को गहरा और स्वाभाविक सा बनाता है, मन को स्थिरता और स्पष्टता देता है, नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है, आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। और जब हम आकाश की ओर देखते हुए योग करते हैं तो भीतर भी वैसा ही विस्तार महसूस होता है। प्रकृति के साथ योग में आकाश हमें यही सिखाता है, खुला होना, स्वीकार करना और संतुलन में रहना। इसी के साथ में कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो आकाश के नीचे बैठकर के हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और ऐसे तमाम 8 प्राणायामों में मुख्य सूर्य नमस्कार भी हम आकाश के नीचे यानी खुले आकाश में हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे योग प्राणायामों की श्रृंखला में हम अपने आप को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ योग में जुड़ते जाएंगे। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रतुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारबिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना। तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र। मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीजों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा, दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू, आधी सोई हुई आधी जागी हुई, आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी, जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है, पास आना भी है दूर जाना भी है, और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ, दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: A very good morning to all of you and happy Mother's Day to everyone. आपको सभी को आज इतने ख़ास दिन यानी मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज अदनान आ गए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. सो चलिए अब हम आपका संडे स्पेशल शो में वेलकम करते हैं, क्योंकि ये संडे स्पेशल शो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराता है. अच्छा, आप सोच रहे हैं कैसे? सो आज का संडे स्पेशल शो इसलिए ज़्यादा अच्छा फील कराता है क्योंकि आज हमारी आपकी लाइव बातचीत होती है 10 से 11 कॉल इन प्रोग्राम में. और आज कॉल इन प्रोग्राम का विषय बड़ा प्यारा है, मदर्स डे. जी हाँ, माँ, अम्मा, मम्मी, अम्मी और माताजी, अलग अलग बड़े प्यारे से नाम हैं. और इन प्यारे नाम को लेकर के जब हम अपनी ज़िंदगी में कहीं भी शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये ताकत अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है. तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ये बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान. आपने ट्यून किया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। संडे है, थॉट भी वैसा ही लाजवाब है। सो थॉट क्या है आज का? आज का थॉट कहता है कि स्वीकार कर लेना प्रेम की वो पहली सीढ़ी है जिस पर हम सबसे आखिर में चढ़ते हैं। जी हाँ, स्वीकार कर लेना यानी एक्सेप्ट कर लेना प्रेम की वो पहली सीढ़ी है जिस पर हम सबसे आखिर में चढ़ते हैं। सो देखिए ना, जब भी कोई किसी से प्रेम करता है या प्रेम में रहता है तो उसकी तारीफें करता रहता है, उसके बारे में बताता रहता है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसको ख्याल आता है, यार इसमें ये होता तो ज़्यादा सही था, उसमें वो होता तो ज़्यादा सही था। और इस तरह न जाने क्यों उसमें अपने हिसाब से चेंजेस चाहता है और आखिर में समझ में आता है कि जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना ही प्रेम है और प्रेम की ये पहली सीढ़ी है। लेकिन ये हमको बाद में समझ में आता है कि हम किसी भी शख्स को सिर्फ इस तरह नहीं चाह सकते कि जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह चीज़ें चेंजेस हों। और इस तरह कैसे हो सकता है ना? इसीलिए आज का ये थॉट ऑफ द डे कहता है कि जो पहली सीढ़ी है प्रेम की, स्वीकार कर लेना यानी एक्सेप्ट कर लेना, इसको हम लास्ट में करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? न जाने क्यों ऐसा होता है कि पहली सीढ़ी को हम लास्ट की तरफ ले जाते हैं। तो शायद हमें इस पल को, इस बात को समझना होगा कि आखिर प्रेम की अगर पहली सीढ़ी है एक्सेप्ट करना, तो हमको ये बहुत बाद में क्यों समझ में आता है। वैसे ये संडे स्पेशल थॉट है, तो इसलिए आप इस थॉट को सुनने के बाद कभी आपने सीढ़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको महसूस किया है कि बिना चेंजेस ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? अगर हाँ, तो लिटरली ये थॉट आपको आज अपना साही लगने वाला है। स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है, ये कहना आसान है और कर लेने के बाद इसका जो मज़ा है ये सब कुछ भुला देता है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा होती है कि आप हमेशा इस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरा भी उसी के अकॉर्डिंगली बन जाए, यानी मेरे अकॉर्डिंग। एंड जिस दिन से एक्सपेक्टेशन आपकी ख़त्म होती है, उस दिन के बाद से जो कुछ भी आपसे अलग दिखता है आप उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, या जो भी आपका अजीज़ है, ख़ास है या प्रेम में है, तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके अपना और में हिस्सा बना लेते हैं। यानी एक आपका खुद का है, आप खुद हैं, एक इंसान जैसा भी हो उसको भी खुद में जोड़ करके आप उसी में बह जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रेम, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। सो कितना एक्सेप्टेंस आया है आपकी जिंदगी में, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल ये आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान।

0: सो भाई मैं यहीं हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आज के थॉट ऑफ द डे को सुनने के बाद अब आपका मूड कैसा है। साथ ही साथ आपको ये पता चल चुका है चूंकि आप भूल गए थे कि आज 10 मई है और 10 मई यानी मदर्स डे। सो एक बार वापस से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि जिंदगी का मजा सबसे ज्यादा कब आता है। बहुत सारे जवाब मैंने दिए अपने अकॉर्डिंगली। जिंदगी का मजा ज्यादातर खुश रहने में आता है, सुकून में आता है, अपने मन की करने में आता है। बट एक दिन मुझे बैठे बैठे खुद ब खुद ये चीजें याद आई और मुझे उसका जवाब जो मिला, फिर मैं उसको अपने में शायद समझ पाया कि हाँ, ये था जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा। सब कुछ भूल करके बस जिस मोमेंट में है, उस मोमेंट में कस के रहना। जी हाँ, सो इतना ज्यादा आगे पीछे का ना सोचते हुए जो भी पल चल रहा है बस उसमें खो जाना। इससे ज्यादा कहीं कोई आनंद आता ही नहीं है लाइफ में, लिटरली। चलिए आप बताइए अगर आपको आया है इसके अलावा। खैर, आ जाते हैं चैट बॉक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि भाई आप ट्यून कर चुके हैं गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी से 89.6 एफएम। अपनी कार में आप सुन रहे हैं, ट्रांजिस्टर से सुन रहे हैं, खेतों में काम करते हुए सुन रहे हैं, या फिर आप किचन में खाना बनाते हुए सुन रहे हैं, और या फिर लेटे लेटे सुन रहे हैं। तो भाई आपका वेलकम करते हैं थ्रू फ्रीक्वेंसी, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं तो भी, और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का आर्चयतान वेलकम करते हैं। और एक बार सभी को वापस से हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेषित करते हैं। तो चलिए भाई मैसेजेस की तरफ अगर हम चलें, यानी वो लोग जो सुनते हैं 89.6 एफएम को उसकी एप्लीकेशन से, एंड्रॉयड यूजर्स को मिल जाता है प्ले स्टोर पर, एंड आईफोन यूजर्स को मिल जाता है ऐप स्टोर पर। उसी में आपको चैट का ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन में, जो कि डायरेक्ट आपके गोंडा एफएम के आरजेस तक आता है। तो चलिए हम बताते हैं क्या कुछ लिखा है आपने खैनात का है। गुड मॉर्निंग, सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात, सभी को माँ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। नगेश्वर ने लिखा है, ना जमी का टुकड़ा ना दौलत का आसमां चाहिए, मेरी छोटी सी हसरत है, मुझे वसीयत में माँ चाहिए। हैप्पी मदर्स डे, मिस यू माँ करके लिखा है, थैंक यू। एंड इसके बाद पूर्णिमा का मैसेज है, संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त जी, अपना बताइए आप कैसे हैं, तुसी दसो। हैंड प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही साथ नगेश्वर ने रिएक्ट किया है, अगर सफलता की ऊंची सीढ़ी हासिल करना हो तो पहली सीढ़ी को प्रेम की सीढ़ी मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम से हर चीज पाई जा सकती है, जो चीज पैसों से नहीं मिल सकती वो प्रेम से मिल जाती है। किसी ने कहा है कि फलों वाले पेड़ जो है वो झुक जाते हैं, प्रेम वाला व्यक्ति नम्र हो जाता है। अच्छा, ये बात अक्सर सुनी, पहले तो ये ज्यादा सुनते हैं कि भाई जो चीज प्यार से नहीं मिलती वो पैसे से मिलती। नगेश्वर ने कहा, नहीं, जो पैसे से नहीं मिलता वो प्यार से मिलता। मुझे लगता है पैसे से मिली हुई चीज को प्रेम से मिली हुई चीज से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, शायद इतना ज्यादा अंतर है कि अंतर को भी नहीं पता कितना बड़ा समंदर है। खैर, पूर्णिमा ने लिखा है, खुशी के लिए एक पल ही बहुत है ना, ऑब्वियस सी बात है। और उस पल को आपने हमेशा ये देखा होगा कि आपने प्योरली, मतलब खुले दिल से वेलकम किया होगा, और उसके बाद वो पल हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आकर के चिपक गया होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, यादों के पन्नों में ऐसे अगर कई सारे पल आपने संजो के रखे हैं तो उस संदूक को बेहद खास तरह से हमेशा खोल लिया करिएगा। एंड लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत थॉट है, सरल बन जाओ, स्वीकार हो जाओ, क्या बात है। सो बहुत प्यारी बात आपने कही, और अच्छी बात ये कि आप सभी को थॉट काफ़ी पसंद आया, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं, संडे स्पेशल शो है, 9:22 हो चुके हैं आपके 89.6 एफएम के स्टूडियो में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, इसको एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एंड नंदलाल तिवारी जी भी अमर उजाला से आ चुके हैं, और आपने भी लिखा है, उसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी
खफा नहीं होती। क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। एंड ये शेर अपने आप में बिल्कुल सच्चा है। ये चाहे आप देख लीजिए, हम देख ले, कितने तोड़े जाते थे, कितने मारे जाते, लेकिन उसके बाद प्यार से पुचकारे भी हमेशा गए हैं। सो ये माँ है, हैप्पी मदर्स डे।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

हाँ जी, मैं वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। कुछ कहना था या यूं कहें कि कुछ पूछना था। किसी ने क्या खूब कहा है, कहा यह है कि अक्सर कम दूरी तय करने में ज्यादा वक्त लग ही जाता है। अक्सर कम दूरी तय करने में ज़्यादा वक्त लग ही जाता है। जैसे ट्रेन में एसी वाले डिब्बे की जनरल वाले डिब्बे की बीच की दूरी सिर्फ कुछ डिब्बों की नहीं होती, कुछ 150 मीटर की नहीं होती, बल्कि कई सालों की होती है। जी हाँ, ये बात कहीं तो कही गई है, पर ये बात आपको कैसी लगी और कितनी समझ में आई, ये ज़रूर आप बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सॉन्ग है, इवन मुझे तो बहुत पसंद है और एक ज़माने से पसंद है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। तो चलिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं और उसके बाद देखिए आज क्या कुछ है आपके लिए हमारे पास आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। ज्ञानस्थ

0: अगर हमारा सबसे कोई अजीज़ होता है, कोई ख़ास होता है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि अगर हम किसी के बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं तो हमको ऐसा क्या मिलेगा, तो हम खुशी से झूम तो उठेंगे ही, प्लस इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, 90s के कम्युनिकेशन का ज़रिया यानी कि ख़त, लेटर्स। सो लेटर्स तो मिलता है उन लोगों को जिनको आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, और अगर आपको मिला तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो चलिए, जब इतनी मोहब्बत कर ही रहे हैं माता जी से, तो क्यों ना माँ के नाम एक खत हो जाए जो उनको लेकर के कहा गया हो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

एक खत उस माँ के नाम जिसने खुश खुद रहने से ज्यादा अहमियत दूसरों को खुश करने में दे दी। माँ, तुम्हें हमेशा सबकी फिक्र करते देखा, लेकिन कभी खुद के बारे में सोचते हुए नहीं देखा। माँ, अगर तुम्हारे पैरों में अब भी वो ताल बाकी है तो माँ एक बार फिर से खुलकर डांस करो, बिना किसी डर के, सिर्फ अपने लिए। माँ, अगर दिल में रंग अब भी जिंदा हैं तो माँ कैनवास पर अपने सपनों को फिर से उतारो, हर रंग तुम्हारी कहानी कहेगा। माँ, अगर बाहर की दुनिया देखने का मन कभी था तो अब रुकना मत, ट्रैवल करो, नई जगहों को जियो, खुद को फिर से खोजो। माँ, अगर हवा से बात करने का मन है तो एक बार बाइक की सवारी करो, आजादी का एहसास करो, तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। माँ, अगर फिटनेस तुम्हारी भूली हुई चाहत है तो अपनी बॉडी को फिर से प्यार करना शुरू करो, चलो, दौड़ो, योग करो और खुद को फिर से मजबूत महसूस करो। माँ, अगर रसोई तुम्हारा प्यार है तो नए नए स्वाद बनाओ, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। माँ, तुम सिर्फ जिम्मेदारियों को नहीं हो, तुम एक पूरी दुनिया हो जिसके अपने भी सपने हैं। मैं तुम्हें परफेक्ट नहीं चाहता माँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये एक लेटर है हर उस माँ के नाम जिन्होंने हमेशा खुद को खुश रखने से ज्यादा अहमियत दूसरों को खुश रखने में दी। क्योंकि माँ अक्सर ऐसा करती है, लेकिन क्या ये बात अपने आप में मुकम्मल है कि माँ खुद को खुश रखने से ज्यादा दूसरों को अहमियत देती है? इतनी बात मुकम्मल है? यह बात इसके अब आगे भी है, जहां माँ को हर वो सपना जीना होगा जो कभी उनका अपना था, हर वो कैनवस पर पेंसिल चलानी होगी, ब्रशेस चलाने होंगे, जिसको वो अपनी जिंदगी में भरना चाहती थी, हर उस जगह जाना होगा जो उनकी ख्वाहिशों का एक हिस्सा था। तो शायद हर उस माँ के लिए जिनकी माँ है और वो अपने कुछ सपनों को पीछे छोड़कर, कुछ आदतों को, कुछ अपनी हॉबीज को, कुछ अपने फन को, कुछ अपनेपन को छोड़ करके आगे आए हैं, उनके लिए है ये खत। ये खत उन्हें तरजीह देने के लिए है, ये आज का दिन उन्हें याद दिलाने के लिए है कि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, उनकी अपनी चाहते हैं, उनके अपने सपने हैं, उनका अपनापन है और उन्हें उसे जीने का, उसे करने का, उसे महसूस करने का पूरा पूरा हक है, पूरी तरह से। ये खत उस माँ के नाम है। तो भाई, आज मदर्स डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसा दिन जब हम डेडिकेट करते हैं माओं को, जो हमारी दुनिया की सबसे क्लोज पर्सन कहलाती हैं और एक तरह से हमारी दुनिया बन जाती हैं। तो आज का दिन क्या यही है कि हम उनको लेकर के कुछ बातें करें, या इससे आगे बढ़कर क्यों ना आज मदर्स डे पर हम भी अपनी माँ से पूछें, दूसरों का ख्याल रखते रखते वो अपनी कौन सी चाहते भूल बैठी हैं। जी हाँ, आज का मदर्स डे, आज का स्पेशल शो, आज का स्पेशल डे ये याद दिलाने का है कि वो कौन सी अपनी चाहते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते रखते भूल गई हैं। जी हाँ, अपनी ही माँ से आज पूछने वाला है ये, तो ज़रूर पूछिएगा आज के दिन, क्योंकि ये दिन मुझे लगता है इस सवाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत अपनेपन से भरा हुआ है। फिलहाल वापस से आएंगे और आने के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे 10 से 11 गायगा गुंडा विद आरजू अतनाना। आज
बात होगी मदर्स डे को लेकर के, माँ को लेकर के, उनके और आपके रिलेशंस को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, और कुछ खट्टी मिठी यादों को लेकर के। सो तैयार रहिएगा, एक साथ आज मिल करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जो अलग रहते रहते भी हमारी दुनिया बन गई है। सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद योर मॉर्निंग चॉक, आरजे अदनान।

0: हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था जिस वक्त का, जिस लम्हे का, कि भाई आज मदर्स डे के ख़ास मौके पर हम बात करेंगे आप सभी से डायरेक्ट, क्योंकि आज का दिन एक ऐसे शख्स को डेडिकेटेड होता है जो हमारी दुनिया होता है। तो चलिए, उससे पहले चैट बॉक्स पर कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ नए नाम आए हैं, आपका भी हम वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। तो चलते हैं लास्ट मैसेज की तरफ और उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन आया है इस मॉर्निंग वाले शो में। सो हमने जो मैसेज पढ़ा था उसके बाद कई सारे नाम और आए हैं। सो अगला जो नाम है संजय फ्रॉम पटना से लिखते हैं आरजे अदनान से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही साथ शैलेंद्र जी हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो मैसेज आया है वो संजय जी लिखते हैं कि ज़िंदगी रही तो रोज़ याद करेंगे, क्या बात है। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद अगला मैसेज धर्मेंद्र मोहन जी का फ्रॉम आवस विकास गोंडा, गुड मॉर्निंग गोंडा को मेरा सलाम। अदनान सर जी, आपको सुप्रभात का प्यारा भरा सलाम, क्या बात है, बड़े ही प्यार से आपकी विशेष आती है और बड़े ही विनम्र हैं आप, बिल्कुल वैसे ही विनम्रता जैसे एक माँ का सबसे बड़ा गुण होता है। थैंक यू सो मच टू यू। इसके बाद अगले मैसेज की तरफ चले, सुप्रमुख हैं लुधियाना से, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस, उद्यालक शर्मा जी भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू उद्यालक, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच, आपको भी मदर्स डे की बहुत मुबारकबाद। आशु जी ने लिखा है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड यस, अब वक्त है लेकर चलने का, आगे बढ़ने का और देखने का कि भाई कौन है मौजूद इस वक्त हमारे साथ कॉल इन प्रोग्राम में। हाँ जी, हेलो,
1: फूलों में खुशबू में है, बहार बहारों में है आपकी आवाज, आपसे बात करने के लिए हम लोग रहते हैं थोड़ा सा बेकरार। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, बताए बताइए आप कैसी हो?
0: बस हम बताएं?
1: हाँ।
0: अच्छा चलिए, बस हम ही बता देते हैं कि बहुत बढ़िया है और आज दिन बड़ा अच्छा है।
1: हाँ।
0: क्या है आज?
1: मदर्स डे।
0: यस, मदर्स डे, बिल्कुल। तो आज हम बहुत जल्दी जल्दी सभी से बात करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में माँ को लेकर इमोशंस हैं, बात करना चाहते हैं। तो कुछ हाँ। सवाल है अनु आपसे पूछना चाहते हैं हम, क्या आप उसका जवाब देने को तैयार हैं? ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि माँ की कौन सी वो सीख है, यानी एडवाइस, जो आपके लिए मुश्किल वक्त में कंपास का काम करती है। कंपास का काम होता है दिशा को दिखाना। जब इंसान कहीं जंगल में भटक जाता है तो कंपास बताता है कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उसी तरह से ऐसी कौन सी उनकी बताई हुई बात है माता जी की जो मुश्किल वक्त में काम करती है आपके?
1: माँ की सबसे बड़ी सीख तो मेरे साथ ही है, हमेशा कहती है जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी स्थिति हो, घबराना नहीं। और अकेले साहिब जी ने होना धैर्य से काम लेना, शांति से काम लेना, खामोशी से उस पर अपने ठंडे दिमाग से सोचना, फिर आगे बढ़ना।
0: खामोशी से, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद आगे बढ़ना, मतलब बहुत मम्मी कहती है कि शांत होकर के चीजों को हाँ। सोचो अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो।
1: हाँ।
0: क्या बात है। तो आपका ये जो बताया स्टेटमेंट है मम्मी का, ये कहीं काम आया आपकी लाइफ में?
1: बहुत बार आया है।
0: जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे कोई बात बता सकती हैं?
1: जैसे एक बार घर पे कुछ ऐसी स्थिति थी कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, घर पे कोई था ही नहीं और मैं भी, तो फिर ज्यादा मतलब की बात हो गई, तो फिर मैं बड़ी समझदारी नहीं थी, मैं कैसे क्या करूँ। मैंने मम्मी की बातें याद किया और शादी से कुछ पर सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ, फिर फाइनली मुझे कोई ना कोई आंसर सोच दिया और वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई।
0: नाइस, बहुत बढ़िया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो एडवाइस दिया था मम्मी ने वो आपके बुरे वक्त में सच में काम आई।
1: हाँ, और सबसे कई बार काम आई।
0: अच्छा, मम्मी की कुछ आदतें बताना चाहेंगी?
1: मम्मी मम्मी की आदत है, जो सबसे बड़ी आदत है सर यही है कि सुबह खाने के लिए मम्मी मतलब आवाज तो मम्मी सुबह जब रूम में आती है उठाने के लिए तो आवाज नहीं देती उठने के लिए, और रेडियो ऑन कर देती है बस हम लोग उठ जाते हैं। और मम्मी जानती है कि आवाज देंगे तो शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर रेडियो ऑन करेंगे तो तुरंत चलो उठ जाएंगे।
0: तो मम्मी जो है वो रेडियो ऑन कर देती है।
1: हाँ।
0: ओके। इस तरह से आप उठ जाते हैं।
1: हाँ, और ये आदत मम्मी की बहुत अच्छी लगती है मुझको,
0: रेडियो ऑन करने वाली।
1: हाँ।
0: मतलब आपका काम भी हो जाता है, मम्मी का भी काम हो जाता है, और आपका फेवरेट काम है रेडियो को सुनना।
1: हाँ, और तुरंत उठ जाते हैं, वरना आज में थोड़ी देर लेट रहेंगे तो शायद कोई शो मुझसे मिस हो जाए।
0: वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कुछ कहना चाहेंगी मम्मी के लिए? हाँ, कहिए।
1: कभी चुप रहती है तो कभी डांटती है, कभी चुप रहती है तो कभी डांटती है, तो कभी खामोश हो जाती है, मुस्कुरा के सारी शरारते माफ कर देती है, कभी उफ नहीं करती है, न जाने कितने कष्ट उठाती है, तब जाके कहीं हम सब दुनिया में आते हैं। माँ ही तो है जो सारे जहाँ की सैर कराती है, माँ ही तो है जो सारे जहाँ की सैर कराती है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने मम्मी को डेडिकेट करते हुए ये एक कविता भी सुनाई, उनकी कुछ आदतें भी बताई। थैंक यू सो मच अनु, और मैं दुआ करता हूँ कि माता जी स्वस्थ रहे, खुश रहें, और हमेशा आप सभी लोगों के साथ में रहें।
1: जी सर। एक बात और है, मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मतलब सभी की मम्मी अच्छी होती है, पर मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, एकदम फ्रेंड की तरह रहती है, कोई भी बात हो तो आराम से मम्मी से शेयर कर लेते हैं।
0: वाओ, बहुत बढ़िया।
1: कोई भी बात हो तो फिर मम्मी से शेयर कर लेते हैं।
0: मम्मी दोस्त है तो ये बहुत अच्छी बात है, बेशक।
1: और एक बात सर, मम्मी ना आपको बहुत मानती है। एक दिन आपको फ्राइडे था तो शाम को सुन रही थी मम्मी आपकी आवाज, उसकी नस्ल सुन रही थी शाम का, तो मम्मी सुनी, तो उसके बाद मम्मी रोज पूछती थी अभी होनी है हमकी मम्मी कौन थी, हर छदना नहीं आए हमकी मम्मी सर रोज थोड़ी ना आता है, नहीं अभी उस दिन तो सुना था तुम लोगों की कोई शरारते है, कभी अभी नहीं कहीं अलग सुन रही हूँ वहाँ लगाओ, मुझे यहाँ सुनना है ज्ञानी आज ये ना नहीं अभी वो हलो नहीं लाते हैं अपनी मम्मी सर, हलो रात में नहीं लाते हैं, सुबह लाते हैं। और कभी मम्मी जब आपको पूछेंगी तो हम ऐसे नजरअंदाज करके पूछेंगे मम्मी कौन क्या कह रही मम्मी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी कहेंगी जानती खूब हो तुम्हारी सर आते है जो ऐसे पूछ रही हो, रोज आपको सुनना चाहती है रात में। और सर हम रोज आपको रात में कहाँ चलाए, आप आते ही नहीं हो, आपका कोई सो ही नहीं है रोज रात में,
0: बस एक रिकॉर्ड कर ली उसको रोज रात में सुना दिया करिए।
1: यही
0: एक उपाय है बेशक।
1: और मम्मी कहते कि आप रात में फोनिंग भी लेकर आओ, मम्मी किसी की बात करो ना तो मम्मी कहेंगी अरे नान बेटा भी तो कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, जैसे मम्मी कहा इतना अच्छा सर बोलते हैं, वो तो सर ऐसे ही बोलते हैं, इतना अच्छा नहीं अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं।
0: जेलेस।
1: और ये बात मैं कई सोच से आपसे बताना चाह रही थी पर बता ही नहीं पा रही थी, बातों में छोड़ना चाह रही थी ये बात।
0: कोई बात नहीं, एंड थैंक यू सो मच अनु की आपने बड़े ही प्यार से सारी बातों को कंक्लूड करते हुए बताया।
1: ओके सर, बाय।
0: ओके, टेक केयर। सो भाई, ये तो थी हमारे साथ में अनु, जिन्होंने हमसे बातचीत किया। और आज चूंकि 10 मई है, यानी कि मदर्स डे, सो आइए इस स्पेशल मदर्स डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं आपसे बातचीत करते करते, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत का जब तरीका आ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ कॉल पर। हाँ जी, हेलो।
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू। अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: पूर्णिमा बोल रहे हैं सर।
0: क्या बात है पूर्णिमा, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे, आप बताएं कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया लग रहा है, आज मम्मी ने सुबह सुबह कोई सरप्राइज दिया है।
2: जी, वैसे मम्मी को भी मैंने दिया है सरप्राइज।
0: अरे वाह।
2: तो सर वो एक्चुअली आज दो दो ना खुशी का मौका है।
0: दो दो खुशी का मौका, चलिए दूसरा पहले बताइए दूसरा।
2: तो सर मैंने ना मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान किया, मैंने जम्मू की टिकट करवा ली है, मम्मी को बताया नहीं है।
0: माय गॉड, क्या बात है, वाओ वाओ।
2: और दूसरा ये है सर कि मेरी बेटी का आज बर्थडे है, चूंकि आज ही उसका जन्म हुआ था।
0: अरे वाह, क्या तो बात
2: है। आज के दिन मासी बनी थी।
0: क्या नाम है बिटिया का?
2: सर बेटी का नाम है अश्वी।
0: अश्वी?
2: जी हाँ, अश्वी नाम है।
0: अश्वी को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: जी थैंक यू सो मच सर, आज वो 2 साल की पूरी हो गई है। और उसके लिए मैंने बर्थडे गिफ्ट भी प्लान करके रखा, इनफैक्ट मंगवा लिया है मैंने 1 हफ्ते पहले ही।
0: क्या बात है, वाओ। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे लगता है मम्मी जैसे ही जानेंगी जम्मू का टिकट, पहले तो डांटेंगी और उसके बाद इमोशनल हो जाएंगी, फिर हो सकता है रो भी दे।
2: एक्चुअली मम्मी को सर पता नहीं क्या हुआ था ना कि मेरी दीदी की बेटी है प्रांजली, तो उन्होंने कहा था मतलब जब पेपर स्टार्ट हुआ था एग्जाम का बोर्ड का, तो उसने पहले ही कहा था कि मैं अच्छे नंबर से पास हो गई मासी, तो आप मुझे क्या दो। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग को कहीं घूमने जाना, मैं घूमने की टिकट बुक कराऊंगी, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होगी तब। दोनों का अच्छा नंबर है, बेटी ने सर जो है उसको इनाम मिला है, ट्रॉफी मिली है, और बिटिया का जो है उसने टॉपर का मतलब टॉप किया है अपने पूरे क्लास में।
0: वाह क्या बात है,
2: तो टॉपर बनी है, तो उन दोनों के लिए जम्मू का टिकट है, और मम्मी के लिए, बस मम्मी को मैंने नहीं बताया, बच्चों को पता है।
0: अच्छा।
2: क्योंकि उन्हीं के सामने हम पैसे लेकर टिकट करवाने गए थे।
0: तो अब ऐसा ना करिएगा कि अब चलने से 1 घंटे पहले बताएगा मम्मी चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद आपकी ट्रेन है।
2: नहीं नहीं, आज ही बात हो रही थी अभी सर, 22 मई को टिकट है मेरा।
0: अच्छा 22 मई को, और कितने मई को बताएंगे, कितने मई को बताएंगे मम्मी को?
2: बस आज सर अभी 10 तारीख है।
0: हाँ तो कब बताएंगे? अच्छा अभी कुछ दिन और चल रहा
2: है। आज मैंने ना जो चूरा बुन के रख लिया है, थोड़ा बहुत इंतजाम आज मैं कर रही हूँ, चूंकि आज संडे है तो खाली है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंतजाम कर रही हूँ, थोड़ा मच्छी बनाऊंगी, थोड़ा खाने पीने के लिए नाश्ते के लिए बनाऊंगी।
0: वाओ क्या बात
2: जी। तो अभी मम्मी सोच रही थी कि ये, मैंने कहा बस चाय नाश्ते के लिए, घर पे कोई आ जाए अचानक से, तो बस उसके लिए अभी मैंने प्रॉपरली ऐसे सरप्राइज को ओपन नहीं किया।
0: वाओ मतलब लिटरली बहुत बढ़िया सरप्राइज है।
2: तो ये एक्चुअली मेरे जीजू का प्लान था, जीजू चाहते थे कि हम सभी वेकेशंस पे जाएं, बच्चे जाएं, तो मैंने कहा जम्मू का टिकट करवाते हैं, बच्चे का भी मन है तो सभी लोग साथ में जाएं।
0: वाओ मतलब ये सरप्राइज जो आपने दिया है, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कभी कोई ऐसे अचानक दे मैं तो कितना ज्यादा खुश हो जाऊंगा, तो वाकई मतलब मम्मी कितना खुश हो जाएंगे।
2: सरप्राइज बस आप थोड़ा सा वेट करिए।
0: नहीं नहीं
2: ठीक, मैं आपको और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं जिसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक पे टिक करना है।
0: ओके लेकिन हम एक चीज बता दे कि मेरा ऐसे कोई टिकट ना निकलवाइएगा क्योंकि मुझे छुट्टी जल्दी मिल नहीं पाती।
2: मैं उज्जैन जाने वाली हूँ।
0: ओके नाइस,
2: मैं सोच रही थी इस बार मैं आपको अपने साथ लेने जाने मतलब ले जाने की कोशिश करूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ।
0: छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, भाई पहले बता दिया।
2: सर जून में किसको नहीं छुट्टी मिलती, अब शॉल जून में छुट्टी का मौसम होता है।
0: जून में हम कोई भी मंथ हो, हम सबके घरों में आवाज बन करके जरूर पहुंचते हैं।
2: बड़ा मुश्किल होता है, वो तो सबसे खास होता है, वो जब आप नहीं आते तो ऐसा लगता है कि हाँ एक कुछ तो मिसिंग लग रहा है आज।
0: तब आप दूसरों के लिए मिसिंग में कराना चाहेंगी ना।
2: जी लेकिन आपके लिए सरप्राइज है जो आप जान के और देख के बहुत खुश होंगे।
0: ऑलराइट
2: तो मैं पहले बता दूं?
0: नहीं अब सरप्राइज बताया कहाँ जाता
2: नहीं,
0: है पहले?
2: नहीं, मैं आपको टास्क दे रही हूँ ना, आपको ऑप्शंस दूंगी, आपको एक पे टिक करना है।
0: तो अच्छा अभी करना है?
2: हाँ अभी करना है।
0: अच्छा ठीक है चलिए बताइए।
2: सरप्राइज आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा, लेकिन वो किस दिन मिलेगा ये भी नहीं बताऊंगी।
0: ओके ओके
2: ओके, तो देखो मैं आपसे ना किसी को मिलवाने के लिए ला रही हूँ।
0: ओके
2: तो ऑप्शन ए मेरी मम्मी, ऑप्शन बी मेरी दीदी, ऑप्शन सी मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बच्चे।
0: हेलो भैया
2: अब किस पे जाना चाहेंगे आप?
0: ऑप्शन सी छोड़ के ए बी एंड डी पर।
2: ऐसा क्या सर?
0: भाई फैमिली से मिलने का वादा मैंने पहले किया था।
2: जी नहीं तो ये बताइए, मैंने 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए मेरी मम्मी, ऑप्शन बी मेरी दीदी, ऑप्शन सी मेरे दोस्त, ऑप्शन डी मेरे बच्चे।
0: हाँ सी छोड़ करके ए बी एंड डी।
2: नहीं नहीं आपको एक भी टिक करना है सर।
0: नहीं अब मतलब ये मेरी चॉइस है क्योंकि मुझे अब 3 लोगों से मिलना है ना, जाहिर सी बात है।
2: अरे तो ऑप्शन चाह रहे ना।
0: एक काम करिए ऑप्शन ए एंड डी में बांट दिए, एक कर दिए कि मेरे फैमिली एंड दूसरे मेरे फ्रेंड्स, तो मैं उसमें से चूज कर लेता हूँ।
2: तो सर एक एक को ही मैं लाऊंगी।
0: नहीं ए, क्या मतलब ई रिक्शा कौन सा ऐसे उससे आ रहे हैं कि आप उसमें एक ही की जगह है या बाइक चला के ला रहे हैं?
2: नहीं एक्चुअली मम्मी का सर टेस्ट करवाना है।
0: अच्छा
2: शुगर की पेशेंट है तो उनको जो है डॉक्टर के यहाँ लाना है। अब चूंकि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं 20 मई से, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस बेटर हैं। मेरे दोस्त भी जो उनकी छुट्टी है तो आ रहे हैं क्योंकि महाकालेश्वर का हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने का।
0: ओके
2: हाँ, और दीदी तो उस समय फ्री ही है, किसी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो 4 ऑप्शन है।
0: लेकिन पहले ए बी एंड डी।
2: चलिए सर मैं ए और डी में ही बता दूंगी। Okay. तो आप ए और डी में से चूज करिए, बी और सी को हटा देते हैं।
0: ए एंड डी, ए पे और डी पे।
2: जी हाँ, ए पे मम्मी है और डी पे बच्चे हैं।
0: तो मम्मी और बच्चों को अलग क्यों कर रही है भाई, साथ में लेके आइए ना।
2: अब देखिए सर, मम्मी को मैं अपने घर से लेकर आऊंगी, बच्चों को दीदी के घर से लाना है।
0: तो एक काम करिए, पहले मम्मी को लाके यहाँ बैठाइएगा, मैं जब तक उनसे बातचीत करूंगा तब तक बच्चों को ले आइएगा। क्या बड़ा सिंपल सी बात है।
2: नहीं नहीं सर, मैं दरअसल आपको एक टास्क देना चाहती हूँ, और मेरा टास्क यही था कि देखिए आपको किसको चूज करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है।
0: नहीं, मैंने ए बी डी चूज कर लिया, ठीक है। ए बी डी विलियर्स, या राइट।
2: चलिए अच्छा सर, जो मैंने बच्चे के लिए सरप्राइज मंगाया वो तो आपने पूछा ही नहीं।
0: क्या है बच्चे के लिए सरप्राइज?
2: सर वो जो मतलब बुक होती है ना पढ़ने वाली।
0: अच्छा, बुक होती है पढ़ने वाली।
2: हाँ, जो छोटे बच्चे सर यूज करते हैं।
0: अच्छा।
2: अगर आप उसमें फिंगर्स रखेंगे तो आवाज आएगी।
0: ओ, जादुई बुक।
2: तो वो मैंने सर दरअसल मंगवाया है, अभी मैंने दीदी को भी ये नहीं बताया कि मैं उसको दूंगी।
0: क्या बात है
2: जी, तो ये मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, गिफ्ट मेरी तरफ से।
0: बहुत अच्छे सरप्राइजेस हैं, एंड आपकी जो है एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो नजर आ रहा है। एंड लिटरली आप बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए शायद आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है आपसे, क्योंकि एक अगर शख्स ऐसा कोई है तो बहुत अच्छा लगता है।
2: मैं मम्मी को करेले का जूस बना के पिलाने वाली हूँ।
0: अरे वाह, मदर्स डे पे इतनी कड़वे जूस की बात कर रहे हैं।
2: क्योंकि हफ्ते में सर दो दिन मुझे बनाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मम्मी शुगर के लिए, हाँ, तो उसके लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल।
2: तो जब मैं मम्मी को लेकर जाती हूँ उनके पास तो कहती है रख दो भी, मैं बाद में पीऊंगी, इसको पीने के बाद मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं मिठाई खिला दूंगी, और चूंकि मिठाई में देती नहीं हूँ खिलाने के बाद।
0: करेक्ट, थोड़ा सा लालच दे करके मम्मी को भी, मम्मी ने बचपन में ये सब बहुत किया है, अब उनको उनको देखना पड़ेगा।
2: तो लोग कहते हैं, मतलब दीदी भी हंसती है कभी कभी, सब लोग आसपास के जो देखते हैं तो कहते हैं, मुझे कभी कभी ये नहीं समझ में आता है, चाची चाची कहते हैं, तो कहते हैं कि आप इनकी माँ है कि ये आपकी माँ है।
0: कहती हम दोनों एक दूसरे का बांट लेते हैं कभी, इधर हो जाते ड्यूटी शिफ्ट लगती है जब जैसी जरूरत होती हो जाते हैं।
2: जी, तो एक्चुअली मेरी मम्मी सर बहुत प्यारी है।
0: हाँ, बेशक सबकी मम्मी बहुत प्यारी है
2: जी, सभी की मम्मी प्यारी होती है, बिल्कुल सही।
0: एंड थैंक यू सो मच, और इतना प्यारा सरप्राइज प्लान किया है, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, और आपको ऐसे दोस्त ऐसे फैमिली मेंबर्स की तरफ से हजारों सरप्राइजेस मिलता रहा करे।
2: ऐसी मैं कुछ लाइन मम्मी के लिए सुनाना चाहती हूँ,
0: प्लीज सुनाइए।

0: रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। थैंक यू सर
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: जी, थैंक यू सर, बाय बाय।
1: बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छी बातचीत रही भाई पूर्णिमा के साथ में, हमने बातचीत किया और आज के दिन को इन्होंने मदर्स डे को अपनी मम्मी के लिए बहुत स्पेशल मना लिया। यार मैं हमेशा से सोचता था कि कभी इतना बड़ा होऊंगा और कभी इतना तो अर्न कर पा रहा होऊंगा कि मम्मी के लिए कुछ टिकट्स निकलवाऊं और वो सब जगह जो कभी वो जाना चाहती रही थी उनको लेके जाऊंगा। शायद ये कई और भी पेरेंट्स को लेकर के बच्चों के मन में होगा, तो अगर जब भी मौका मिले तो ये बड़ा अच्छा सरप्राइज़ होता है। एंड डेफिनेटली सोचिए अगर ऐसा सरप्राइज़ कोई आपको दे कैसा लगता है ना, तो शायद ये हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं और इस मदर्स डे को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना सकते हैं। क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स। तो चलिए आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखने वाले, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग को सुनते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद आपको बताते हैं कि आखिर नेक्स्ट कॉल पर अब कौन है आ रहा।

0: हाँ जी, वापस से वेलकम करते हैं आपका आपके मॉर्निंग संडे स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जोकर जे अदनान। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: हाँ जी, तो लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं आपसे मदर डे स्पेशल शो में, और फिलहाल हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए। हाँ जी, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सविता दुबे।
0: अरे वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, ये नाम मेरा पापा ने रखा है।
0: अरे वाह सविता, नाम आपका?
1: नाम मेरा मासी ने रखा था,
0: रिंकी।
1: हाँ, रिंकी नाम घर का नाम है, और मेरी बड़ी मासी ने रखा था।
0: बड़ी मासी ने रिंकी नाम रखा था और सविता आपके फादर ने रखा था
1: जी।
0: अच्छा।
1: खाली सविता नहीं, सविता देवी बना दिया था, तो मेरी मम्मी बोली देवी से भी खुश नहीं, सविता रहेगा तो ठीक है।
0: अच्छा, तो बड़ी मासी ने रिंकी रखा, पापा ने सविता रखा, और आपको किसने रखा?
1: मुझे तो मम्मी ने लाया इस दुनिया में, तो मम्मी ने तो सारे संभाल लिए है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वही हम कह रहे हैं कि भाई आज मदर्स डे है, और मदर्स डे की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया आपका। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले अपनी मम्मी के लिए कोई एक उनका अधूरा सपना पूरा करने का, तो वो क्या होगा?
1: उनका अधूरा सपना था कि वो थोड़ा कालीघाट जाना चाहती थी, हालांकि वो पूरा हुआ नहीं, हो सके तो मैं ले जाऊंगी, वो सपना पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी।
0: मतलब अभी आपने कहा कि आपकी मम्मी का जो सपना रहा था वो एक कालीघाट जाने का था,
1: जी।
0: अभी तक नहीं पूरा हुआ, तो अगर कभी मुमकिन हुआ आपसे तो आप जरूर वहां ले जाना चाहेंगी, क्या?
1: और परसों दिन मम्मी से बात हो रहे थे वीडियो कॉल पे, तो देख रही कि मम्मी तो मुझसे बात कर रही थी, और मेरी छोटी बहन अभी आई है मायके, तो उनका जो बच्चा है 5 साल अभी हुआ नहीं, वो बार बार फोन मांग रही थी, वो फोन पे कार्टून देखना चाह रहे थे कि फोन पे ही कार्टून देखेगा, उसको मम्मी ने खोल दिया था टीवी में कि टीवी में बैठ के देखा करो, मम्मी मुझसे बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, तो देख रही हूँ मम्मी ने कान मोड़ रही है बच्चे को, बोले मम्मी ऐसा क्यों कर रही हो, छोटा बच्चा है मांग रहा है, तो बोले तू जानती नहीं इतना शैतान है, को मम्मी के एक सहेली ने उनको 20 रुपए दिया था बच्चे को, तो उन्होंने क्या किया गुस्से में पैसा फाड़ दिया, वो गुस्सा दिखा रही थी मम्मी का, ऐसा रूप मैंने देखी नहीं ना कि छोटे बच्चे देख रही हूँ मैं मम्मी को, बोली मम्मी ऐसा क्यों कर रही हो, जानती है तू लोग तो शांत थी पर इतना चंचल है कि 20 रुपए आज खड़ा है, बता क्या करूँ।
0: तो वो गुस्सा उस पे निकल रहा था।
1: जी।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा पल था, लम्हा था, वक्त था, जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपकी माँ सिर्फ माँ नहीं है बल्कि उनकी एक अलग पहचान है और उनकी एक पसंद है, यानी एक शख्सियत दिखाई पड़ी आपको उनमें, यानी सिर्फ माँ नहीं लगी, लगा कि एक अलग इंसान भी है वो, उनकी पहचान भी है अपनी।
1: जैसे कि मेरे जीवन में तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आई है इतने दिनों में, तो उस टाइम जब मैं बिल्कुल अकेली हो पड़ी थी, रो रही थी, अपने आपको संभाल नहीं पा रही थी, तो तब मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से समझाया कि इस तरह से जिंदगी कटेगा नहीं, तुझे मजबूत बनना पड़ेगा।
0: वाओ,
1: मजबूत बनना पड़ेगा ताकि दुख और पीड़ा से तुझे बाहर निकलने पड़ेगा, तभी तू जी पाएगी। इस तरह से तू अपने आप को चाह रही थी कि मैं खत्म कर देना चाह रही थी, तो उसके बाद से जो मुझे समझाई तब जाके मैं अपने आप को संभाली हूँ, आज भी संभाल रही हूँ, संभल गई हूँ। अब
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने कि उस दिन आपको लगा कि माँ सिर्फ मम्मी नहीं है आपकी बल्कि उनकी एक अलग पहचान है, और जिस तरह उन्होंने आपके अंदर जज्बा भरा जिंदगी में आगे बढ़ने का इन संघर्षों से निकल करके, वो आपको बड़ा अच्छा लगा
1: जी।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने, और मदर्स डे पर जिस तरह से आपने शेयर किया है बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि माँ चाहे जिस एज में,
1: बारे में पूछ रहा था। अच्छा। आपके भी वो बारे में पूछ रहा था कि रेडियो स्टूडियो वगैरह जाती है कि नहीं, हाँ जाती हूँ, तो ताकि मैं भेजती हूँ ना रिकॉर्डिंग किया हुआ कुछ कुछ जो बातचीत का दौरान जो रिकॉर्डिंग करके रख लेती हूँ तो उसे भेजती हूँ, तो मम्मी को अच्छा लगता है सुनने में।
0: अच्छा अब बताइए, हम बंगाल तक पहुंच चुके हैं।
1: अरे आप तो सारी दुनिया में फैल चुके हैं, बंगाल क्या है इस बार उस बार।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगा कि हमको जानती हैं और उन्होंने हमको पूछा। दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं और हम यही चाहेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही आपकी बातचीत होती रहे और ऐसे ही अभी भी आप डांट खाती रहें।
1: जी जी जी, शुक्रिया।
0: कुछ कहना चाहेंगी मम्मी के लिए?
1: हाँ, मम्मी के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी भी मेरे जैसी चंचल है, और मम्मी नहीं पापा भी चंचल थे। हम लोगों को घर में पूरा फैमिली में चंचलता मैं बचपन से देखता रही हूँ। हाँ। तो वैसा ही चंचल रहा करे आज भी।
0: अरे वाह, हमेशा से चंचलता आप देखती आ रही हूँ और आप उम्मीद करती हैं कि ऐसी ही चंचलता हमेशा बरकरार रहे।
1: जी जी,
0: बहुत प्यारी बात।
1: अपने आप को बुढ़ापना समझे कि मेरा उम्र हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सब ना समझे कभी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आप जब तक हैं तब तक कोई समझ भी नहीं पाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी से प्यार से बात बताई। सुबह ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल किसकी आ रही है, क्योंकि आज डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मदर्स डे। और मदर्स डे पर बातचीत कर रहे हैं हम आपसे लाइव कॉल इन प्रोग्राम संडे स्पेशल में। तो चलिए देखते हैं कि भाई अगला नंबर किसका है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो,
0: हाय शैलेन जी, कैसे? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मदर्स डे।
2: क्या बात है, थैंक यू सर, आपको भी।
0: थैंक यू सो मच भाई, आप आ गए हैं काफी वक्त बाद। अभी आप कोई आंकड़े तो नहीं बताने वाले कि इतनी कॉल्स के बाद में?
2: जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, मौका नहीं मिला आपसे बात करने का, काफी समय हो गया।
0: बिल्कुल।
2: और माँ की दुआएं हैं जो आज आपसे फिर मिल पा रहा हूँ।
0: वाह, क्या बात है, बिल्कुल बेशक, सही कहा। तो आज का मौजू भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अलग है। आप बताइए।
2: आज कैसे मुलाकात होगी, होगी या नहीं होगी? मदर्स डे जैसा खास डे होने के बाद अगर बात नहीं हो पा रही है तो फिर आनंद नहीं आएगा सारा दिन।
0: सही बात है। अच्छा,
2: तो माँ के चरण तो लेके आया हूँ मैं अभी।
0: वाह, क्या बात।
2: हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा उनके विषय में बात हो किसी के साथ तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, प्लीज कहिए, जो भी कहना है प्लीज कहिए।
2: सर, कहना क्या है, जिंदगी है वो बच्चों की जिंदगी, अगर माँ होती है, माँ की जिंदगी अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी अपनी जिंदगी माँ को समझना चाहिए, भले ही शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे पिता को देखा है अपनी माँ के पैर दबाते हुए।
0: वाह, क्या बात है।
2: ये सबके दिल में ये आदर, ये भावना होनी चाहिए।
0: सच में।
2: और वक्त सब बदलता है, लेकिन इतना नहीं बदल जाओ कि उनको ही भूल जाओ जो आपको इस लायक बनाया है जिन्होंने।
0: करेक्ट।
2: माँ माँ होती है, वो कुछ मांगती नहीं है आपसे, ना कभी मांगेगी।
0: सही बात है।
2: आपको प्यार देना है, भावनाएं देना है, क्या देना है वो आपको डिसाइड करना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: रुपया पैसा, अब आप एक सबसे बड़ी बात ये सोचिए, वो माँ जिसके लिए उसकी दुनिया, उसका संसार, उसके मतलब अपना घर छोड़ के वो किसी के लिए आई थी, और वो अपने बच्चे से, अपने बच्चे के लिए अपने पति से भी बहस कर जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होती है? आपकी क्या उनकी नजर में वैल्यू होती है बच्चों की, वो नहीं समझ सकते आप।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कोई ऐसा यूनिवर्सल डायलॉग है मम्मी का जो हर गलती पर आपको सुनने को मिलता हो, कुछ ऐसा?
2: नहीं सर, ऐसा विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने गलती सिर्फ एक ही दो की है अपनी लाइफ में मम्मी के सामने, और सबसे बड़ी एक मिस्टेक हुआ करती थी, मैं स्कूल जाने से कतराता था।
0: ओके।
2: और मेरी मदर इतनी तेज रही है स्वभाव से, उस वक्त जब बच्चे थे हम लोग, अब तो काफी पोलाइट हो गई है
0: जी,
2: तो मुझे दूसरे माले से पैर पकड़ के नीचे टांग दिया करती थी उल्टा। मतलब मेरे पड़ोसी डरा करते थे कि भाभी ये क्या कर रही है आप बच्चे के साथ, लेकिन वो कहे नहीं ये सीधा है।
0: मुझे 90s की मूवीज याद आ गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और वो कहीं चली गई घूमने, मतलब किसी काम से और मैं स्कूल नहीं गया था। अब मैंने सर उस कमरे में जो भी सामान पड़ा हुआ था उसकी मदद से उस दरवाजे को मैंने तोड़ लिया, उखाड़ लिया वहां पे अपनी जगह से। और जब मैं जब वो आई तो हम लोग क्रिकेट खेलते हुए मिले मोहल्ले के बच्चे के साथ, और फिर जो कान पकड़ के पापा के सामने उठा बैठक लगी है मेरी ये बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं जो नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी, कितने भी बुजुर्ग हो जाए हम।
0: क्या बात है। अच्छा, यूजुअली
2: बच्चे ही रहेंगे।
0: यूजुअली जब कोई ऐसा कांड करते थे सजा देना होता था, तो मैं आपको चार ऑप्शन बता रहा हूँ, उसमें से बताइएगा कौन सी सजा मिलती थी। 100 के अंदर में उठक बैठक करना, ऑप्शन बी है 200 के अंदर में उठक बैठक करना, ऑप्शन सी है 300 के अंदर में उठक बैठक करना, ऑप्शन डी है मुर्गा बने रहना।
2: नहीं सर, मुर्गा तो नहीं बनाया, लेकिन 100 के अंदर, ये तो 100 के तो होता है, मतलब 100 तो कहीं नहीं जा रहा है। अब वो मेरा एक मेरे अंदर क्वालिटी थी कि मैं 30 में ही अपने आप को धराशायी कर देता था कि बस अब मेरे बस का नहीं है। अब उसके बाद आप पिटाई कर लो, लेकिन मैं अब नहीं करने वाला हूँ उसके आगे।
0: क्या बात है, वाओ। अच्छा, ये पेरेंट्स भी पहले के ज्यादा ही समझदार थे, जैसे सजाएं भी ऐसी देते थे जो सजा ना होकर के एक्सरसाइज होती थी, ये जरा सोचिए।
2: बिल्कुल सर, और क्या। अब आप ये सोचिए ना कि ये सच बात है कि माँ वही है जिसको नहीं मारना है तो वो सामने रखी चप्पल भी नहीं देखती है, सिर्फ इशारा करेगी मैं चप्पल मार दूंगी लेकिन मारेगी नहीं। दिखाओ मेरी चप्पल कहाँ गई। सही बात है, ये सच बात है।
0: बहुत सही बात कहा आपने, बहुत बहुत प्यारी बात है। अच्छा,
2: इस उम्र पे आ गई है लेकिन फिर भी आज भी मुझे ये लगता है कि मेरे पिता चलेगा कम से कम ये बनी रहे मेरे साथ,
0: बेशक सही बात है,
2: सानिध्य में जीता रहूं, ये बड़ी बात है, जब तक बन सकेगा उनकी सेवा करूंगा।
0: सही बात है, बहुत प्यारी बात कही। और जो माँ है वो इस वक्त आपकी माँ और पिता दोनों हैं, तो वो हमेशा स्वस्थ रहे।
2: हाँ बिल्कुल सर, माँ और पिता दोनों का काम उन्हीं को करना है अभी।
0: बिल्कुल। और कोई ऐसा कोई सपना
2: मुझे याद है सर, मेरी हाँ, मेरी माँ को सर अपनी माँ का प्यार नहीं मिला।
0: क्यों
2: सर? बहुत छोटी उम्र में वो नानी मेरी गुजर गई।
0: ओ अच्छा, यानी आपने भी नहीं देखा।
2: हाँ नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा, मेरी माँ बहुत छोटी थी बताया करती है।
0: ओके।
2: और सासु माँ मिली तो वो बहुत टिपिकल पहले हुआ करती थी, सास टिपिकल सासें हुआ करती थी तरह, तो उस टाइप की थी वो दादी मेरी।
0: ओके।
2: तो मेरी माँ को मदर का प्यार नहीं मिला। तो वो कभी कभी काफी उदास हो जाती है। एक गीत मुझे याद आ रहा है, अगर उनके सामने वो कभी बज जाए इसी तरह से तो वो उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है।
0: कौन सा गीत?
2: ये सर तू कितनी अच्छी है। हाँ सर, हमेशा रोने लगती है, मैंने हमेशा देखा उनके सामने ये गाना हम लोग नहीं कभी प्ले कर पाए। मतलब फिल्म ने कहा भी गा भी नहीं सके, क्योंकि अगर गा दिया तो भी वो काफी उदास हो जाती है और आंसू आने लगते हैं, जबकि आज उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं वो 70-72 वर्ष की हो गई हैं। लेकिन माँ होती है सर, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की कमी आज भी खलती है।
0: बहुत बड़ी आने के बाद बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही है।
2: मैं वाकई में ये सारे लिसनर्स जो भी सुन पा रहे हैं सबसे कहना चाहूंगा, भैया पिता आपका सहारा है तो माँ आपके लिए प्रेम की वो रस्सी है जो आप कभी काटना नहीं भैया, प्लीज।
0: सही बात,
2: क्योंकि जीवन में ये दोबारा नहीं मिलेंगे, सारे रिश्ते मिल सकते हैं, सच है।
0: बेशक सही है,
2: इस रिश्ते को कभी बुलाना नहीं किसी के भी चक्कर में, चाहे वो प्रेमिका हो चाहे पत्नी हो, पत्नी ऐसी नहीं मिलना चाहिए। सबको अपनी माँ से प्रेम होता है, उस पत्नी को भी अपनी माँ से प्रेम होगा जो आपके साथ आई है,
0: बेशक
2: तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए।
0: मुझे लगता है बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक घर के मेल पर डिपेंड करता है, वो कैसी छवि बनाते हैं और बताते हैं अपनी फैमिली को लेकर के।
2: हाँ, ये भी
0: है, ये बहुत बड़ा रोल होता है लड़कों का ही होता है कि जो घर में आई है उनकी वाइफ पत्नी उन तक भी पता चल जाता है कि भाई किस तरह की चीजों को ट्रीट करना आपको, क्योंकि वो हमसे ही इमेज बनती है।
2: हाँ, हमसे ही इमेज बनती है, ये बात सही है।
0: बिल्कुल,
2: हमने कैसे दिखाया है वो वैसे ही चले गए सामने वाला।
0: बेशक,
2: सर दो लाइन मैं उनके लिए गा देता हूँ।
0: प्लीज प्लीज प्लीज गाइए।
2: और उसके बाद आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा,
0: प्लीज गाइए,
2: क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग कतार में होते हैं, मैं खुद भी रहा हूँ कतार में।
0: जी प्लीज बताइए।
2: एक सेकंड सर, मुझे एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा मैं हल्का सा व्यस्त हो गया हूँ किसी कारण से।
0: ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सच में आज का जो दिन है, हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं माँ को लेकर के। और
2: समस्या हो जाती है कभी कभी,
0: कोई बात नहीं जी।
2: यही सब सुनाऊंगा मैं, तू कितनी अच्छी है।
0: अरे वाह
2: जी
0: प्लीज।

है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ।

जाना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई,

0: सबसे लास्ट स्टेंजा सर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है
1: जी।
0: माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी।

0: मच सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: ये कहने वाली बात नहीं है, प्लीज सब लोगों से ये मेरा निवेदन है, मैं खुद के लिए भी ये लागू करूंगा कि ये सिर्फ भावनाएं कहने तक नहीं होना चाहिए, करने तक जाना चाहिए।
1: बेशक सही बात है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया और इतने इमोशन के साथ में आपने बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू सो मच। सो भाई, ये तो थे हमारे साथ में ऑफ कोर्स शैलेंद्र जी फ्रॉम खजुराहो मध्य प्रदेश से। माँ कहीं के भी हो, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, माँ तो माँ है भाई, हर लैंग्वेज में, हर जगह, हर तरह से। फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच। आपको भी मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दिए।
2: मेरा नाम रीत है।
1: रीत
2: जी,
1: जिंदगी की यही रीत है,
2: हार के बाद ही जीत है।
1: नहीं नहीं नहीं, गुनाड होटल के बाद आपका मोहल्ला है। कैसी हैं आप?
2: आपको याद है?
1: बेशक बेशक मुझे याद है, आपने बहुत पहले बताया था, इवन कई बार शायद जिक्र किया है आपने कि आप विष्णुपुरी कॉलोनी की निवासी हैं, इसलिए मुझे याद था। सो आपका हालचाल बढ़िया है, आज मदर्स डे है, क्या कहना चाहेंगी आज?
2: माँ के लिए तो शब्द ही नहीं है सर।
1: बेशक सही फरमाया, शब्द कम पड़ जाते हैं।
2: शब्द कम पड़ जाते हैं माँ के लिए।
1: बिल्कुल।
2: आज मैं सुबह से बहुत इमोशनल हूँ।
1: अच्छा, एक सवाल करें।
2: जी जी बिल्कुल।
1: मम्मी के हाथ का वो कौन सा ऐसा स्वाद था जिसे दुनिया के आपने कई फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में गए थे लेकिन आप ढूंढ नहीं पाई थी, ऐसा क्या था, ऐसा क्या वो बनाती थी?
2: माँ तो जो ही बना देती थी सब कुछ, मतलब वो टेस्ट सर, हम लोग कितना भी मसाले डाल रहे हैं, कितने भी, वो जो उनका प्यार रहता था ना, कुछ

0: भी बनाने में कि मेरे बच्चे खा लें कैसे भी करके
1: जी,
0: वो मैं भूल नहीं सकती। मेरा पेपर था LLB का, तो मेरी बहन गई थी गोरखपुर का, कोई कंपटीशन का पेपर था, तो हम और मम्मा नहीं गए थे।
1: ओके।
0: तो हम घर पे आए तो मम्मा ने निमोना चावल, जानते होंगे निमोना, जो मटर का बनता है पीस के।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मटर के सीजन में।
1: हाँ, हरी, तो, हरी मटर के।
0: जी जी, हरी मटर को पीस के तो मम्मी ने निमोना चावल बनाया था, और वो टेस्ट मैं मतलब आज भी भूल नहीं पाती हूँ। हम लोग कितना भी बनाते हैं लेकिन वो माँ का हाथ वाला टेस्ट आता ही नहीं है किसी भी चीज में। कुछ भी बनाती थी मम्मा, वो मतलब सुपर से ऊपर रहता था उनके हाथ का कुछ भी। वो दाल चावल ही बना देती थी, इतना अच्छा छौंका लगाती थी कि हम लोग तो मतलब देखो तरस जाते हैं सर उनके हाथ का वो टेस्ट पाने के लिए,
1: है ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तुम निमोना चावल का आपने एक एग्जांपल दिया कि एक ऐसा टेस्ट था जिसको आपने बहुत जगह खाया, लेकिन वो बात नजर नहीं आई जो आपको मम्मी
0: नहीं, तो मैंने एक चीज बताई क्योंकि एक इंसिडेंट था, लेकिन वो कुछ भी बनाती थी वो अपने हाथ से, वो टेस्ट ही अलग रहता था, हर खाने का टेस्ट अलग रहता था। दाल चावल भी बनाती थी तो भी वो इतने प्यार से, जो प्यार से बनाना होता है ना खाना, वो प्यार से केवल माँ ही बना सकती है। और हम लोग तो बस जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, अरे जल्दी से ये बना दो वो बना दो काम खत्म, लेकिन वो उसमें इतना प्यार डाल देती थी कि मसाले भले कम हो जाए लेकिन प्यार की कमी नहीं रहती थी। तो बस वही है, खाने को भी प्रेम से बनाइए तो इस दाल चावल भी बहुत अच्छा बनता है, उसको आदमी पेट भर के खाता है। और वही खाना अगर आप झगड़ा झंझट करके बनाइए, गुस्से में बनाइए, तो देखिए वो टेस्ट आएगा ही आएगा ही नहीं। बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बात है। एंड कुछ कहना चाहेंगी
0: है जो इतने, जी
1: बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगी, गाना कोई डेडिकेट करना चाहेंगी?
0: वही जो जस्ट परे शैलेंद्र जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाया उन्होंने,
1: प्लीज आप भी सुनाएं।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच टू यू कि आपने इतने प्यार से गाना डेडिकेट किया मम्मी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये थी हमारे साथ में रीत जी फ्रॉम गोंडा, और आपने जिस कदर बताया मम्मी को लेकर के, हालांकि नहीं है मदर, लेकिन जो इमोशन है वो आज बहुत ज़्यादा जागे हुए हैं, क्योंकि ऐसे स्पेशल डेज पे ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ें याद आ जाती है जो पूरे लाइफ टाइम आपने बिताई है माँ के साथ में। हमेशा खुश रहिए और उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा ही आप पर बना रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। और अब आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है, उसके बाद फिर हम आएंगे। कंटेंट भी आया है आज, सो कंटेंट किसका है क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉल पर आते हैं। हाँ जी, हेलो
2: जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आप कौन बात कर रहे हैं?
2: सर मेरा नाम शैलेंद्र है और निक नेम मेरा आरुष है, और मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, वाराणसी, अभी मुझे बस एक हफ्ता हुआ लगभग आए हुए उधर से।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप आए और आप पास से गुजर गए।
1: क्या बात है। तो
2: सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी आवाज है, जब भी मॉर्निंग में उठते हैं आपकी आवाज सुनते हैं पूरा मॉर्निंग फ्रेश हो जाता है एकदम बढ़िया से।
1: कहते हैं बनारस की सुबह ही खूबसूरत होती है अपने आप में।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बनारस, मैं एक्चुअली रहने वाला आगरा का हूँ, लेकिन यहाँ बनारस में BHU से हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी।
1: अरे वाह, क्या बात।
2: और आज मदर्स डे है, और सबसे पहले आपको और सभी लिसनर्स को, कोंडा एफएम के जितने भी लिसनर्स हैं सभी को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से।
1: क्या बात है, आपको भी बहुत मुबारकबाद, एंड थैंक यू सो मच शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज संडे भी है, मदर्स डे भी है, और आपसे बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: मुझे सोचिए, थैंक्स टू यू कि मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है कि जिस जगह की मैं इतनी वाइब लेकर आया हूँ, इतना बेहतरीन शहर लगा वहाँ पे, इस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं, और 7 वंडर्स में से एक दुनिया की एक जगह आगरा, ताजमहल वाली, वहाँ के आप हैं, जहाँ की मोहब्बत की निशानी बताया जाता है जो, तो ताजमहल।
2: जी जी जी जी सर, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, और बनारस के तो आपको पता ही है क्या क्या चर्चे हैं।
1: बिल्कुल,
2: बनारस तो सबसे आध्यात्मिक शहर है, और सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस है,
1: पुराना शहर है,
2: और यहाँ की जो वाइब है, घाटों की जो वाइब है, यहाँ की शाम, यहाँ की सुबह, और यहाँ की चाय, सब कुछ याद रहता है।
1: पान भूल गया खा के आया था ना मैं,
2: एक्चुअली पान में खाता नहीं, इसलिए मैं, मुझे याद नहीं आया।
1: ओए होए होए होए, बड़ी चीज मिस कर दिया आपने, हम तो खा के आए थे मीठा वाला पान, बड़ा मजा आया।
2: अच्छा, कई कई जगह पे अच्छा मिलता है, कई कई जगह पे ठीक भी नहीं मिलता है, इसलिए पान को थोड़ा स्किप कर दिए हैं। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, विश्वात्मा मूवी, सॉरी, वो जो एक मूवी आई थी जिसका मूवी का नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन गाने का नाम पता है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला।
1: क्या बात,
2: और पंकज जी ने गाया है, पंकज उदास जी की आवाज है इसमें।
1: अरे
2: और मैं कोशिश करूंगा फिर आपकी आपकी परमिशन से शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: नहीं, मैं तो कहूंगा, गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज स्टार्ट करिए।
2: ओके सर, थैंक यू।

रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला,

रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हुसैन हसन से रिश्ता है, ईशा का जो मरियम से।

0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
1: माय गॉड, मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं फिलहाल बोलने के लिए, क्या इमोशन है और किस तरह के आलाप के साथ आपने शुरुआत की। माय गॉड, मतलब एकदम हम सब लोग खो गए। मुझे लगा कि अचानक से ये सिंगर की आवाज कहाँ से आ गई। मतलब लिटरली यू हैव वंडरफुल वॉइस, बहुत प्यारी।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आपके सामने मैं गा पाया दो लाइन। मुझे अंदर से इतना एजिटेशन हो रहा है कि मैं अपनी हार्ट बीट रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ।
1: मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कोशिश की और आपने गाया, और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिनको हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं। मतलब लिटरली बहुत प्यारी आवाज़ है, और उससे भी ज़्यादा प्यारा आपका दिल है, क्योंकि कहते हैं जब दिल साफ होता है तो आपकी कला में वो सफाई नज़र आती है, वो डूबना नज़र आता है। लिटरली बहुत बहुत बढ़िया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से आपको शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना, आपने मेरी आवाज़ को सबके सामने गाने का मौका मुझे मिला, और मैं अपने मन की बात कह पाया सभी को। और यही कहना चाहता हूँ कि आज मदर्स डे है, सभी जितने जिन वो जो लोग जिनके पास माए हैं उनका प्लीज बहुत ख्याल रखिए, आप अपना भी ध्यान रखिए, और जिनकी माए नहीं है किसी कारण से, उनसे दूर है या फिर नहीं है, वो भी अपनी माँ को बहुत मिस करते होंगे, तो उनको भी बहुत ढेर सारा प्यार।
1: क्या बात है भाई, जितना आपकी मैं तारीफ करता जा रहा हूँ आप उतना ही हमारे दिल में उतरते जा रहे हैं, और इतने प्यारे इंसान, मतलब बहुत लिटरली कम लोगों से बात हो पाती है जिनका अंदाज भी इतना प्यारा हो, जिनकी सोच भी इतनी प्यारी हो, खूबसूरत हो। और मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आप खैर जो चाहते हैं उसके लिए दुआ बहुत लोगों ने की होगी, मैं भी करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में आपको सुकून बहुत मिले, ये मेरी अलग से पर्सनली दुआ है आपके लिए, बहुत सारा सुकून।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी नसीहत, आपकी हर बात मैं याद रखता हूँ, हमेशा सोचता हूँ कि जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल सही है।
1: बहुत शुक्रिया आरुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लिटरली मज़ा आ गया।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। सो भाई, ये तो थे हमारे साथ में शैलेंद्र कुमार जी उर्फ आरुष फ्रॉम बनारस, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और रहने वाले हैं ये आगरा, ऑफ कोर्स ताज नगरी के। सो इतने अलग लहजे के साथ इन्होंने जिस तरह गाना सुनाया, लिटरली आप लोग भी सुन करके हैरान होंगे कि यार ऐसे इतना बढ़िया अचानक ऐसे कोई कैसे कर सकता है ना। इवन मैं भी हो गया लिटरली, ऐसे बहुत कम लोग अचानक से सरप्राइज देते हैं। एंड आज का दिन तो खैर खास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एंड यस, अब फिलहाल वक्त है आपके भेजे गए कुछ कंटेंट्स आए हैं उनको पढ़ने का और आप सभी लोगों तक पहुंचा देने का। यस ऑफ कोर्स, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कॉन्टेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेंट्स फ़िलहाल मिल गए हैं। और आज संडे है तो सबसे पहले नरेंद्र छाव जी ने भेजा है, एक शब्द नहीं पूर्ण ग्रंथ है माँ, प्यार स्नेह का देती प्रसाद है माँ, शब्द पढ़ने देती नहीं कोई गलत, ग्रंथों के सारों का सार है माँ। क्या बात है, बहुत प्यारा भेजा, थैंक यू सो मच नरेंद्र छाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसके बाद गुंजन जौहरी जी लिखती हैं कि माँ की बाहों में डूब कर भी ममता तैरती रही, खुद दर्द सह कर भी अपने बच्चों की सांसें बचाती रही, लहरों ने चाहा छीनना मगर हौसला ना हार पाया, माँ ने हर तूफान से बढ़कर अपने लाल को सीने से लगाया, ममता की गहराई को कौन समंदर माप सके, माँ तो वो शक्ति है जो मौत से भी बच्चों को छीन ना सके। क्या बात है, क्या बात है, इतनी प्यारी कविता कितने इमोशंस के साथ में लिखी गई है, थैंक यू सो मच गुंजन जौहरी जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मतलब आज का संडे स्पेशल मुझे लगता है कि इसलिए स्पेशल नहीं कि हम FM पर हैं और मॉर्निंग का शो है, बल्कि इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम अपने इमोशंस के साथ में हैं, और दुनिया में बहुत कम ऐसे कोने होते हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस के साथ में जैसा फील कर रहे होते हैं वैसे हम रह पाते हैं। तो ये खूबी आपकी है या अच्छाई आपकी है, आपकी वजह से ऐसा है, सो आप इसके बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज का संडे स्पेशल यानी मदर्स डे स्पेशल ये एपिसोड कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी स्पेशल डे पे मदर्स को डेडिकेटेड एक और सॉन्ग हम सुनते हैं अपने एसी 89.6 एफएम पर, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। और आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं।

0: हाँ जी, आपका एक बार वापस से स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार स्वागत है आपका अपने बच्चों वाले स्पेशल शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी में। सो गीता दीदी, आपका भी हम स्वागत करते हैं
1: और हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ अपने ढेर सारे श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं। और दुनिया की जितनी माएँ हैं, आज मैं उनको खूब खूब खूब बधाई देती हूँ।
0: क्या
1: क्योंकि आज क्या है,
0: मदर्स डे।
1: जी हाँ, अरे एक मैं प्यारा सा आज सॉन्ग भी गाऊंगी क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। आज मैंने देखे कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: मुझे लगता है कि अच्छे कपड़े पहनूंगी तो जहाँ कहीं भी मेरी मम्मा होंगी वो मुझे देख रही होंगी और उन्हें एक एहसास कराना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुश देख करके वो भी बहुत खुश होंगी।
0: क्या बात है
1: जी।
0: तो ये तो बहुत कम ऐसा होता है कि गीता दीदी खुद आए और आते ही कहें कि भाई आज हमें गाना सुनाना चाहिए और आज का डे चूंकि स्पेशल।
1: वैसे मैं गाती नहीं हूँ लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि जो ये सॉन्ग है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी माएँ हैं या जिनकी माएँ नहीं भी हैं।
0: बेशक, और मुझे लगता है कि आज गा करके अपने इमोशंस साझा करना बहुत अलग होने वाला है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पहले गाएंगी या कहानी सुनाएंगी?
1: नहीं, पहले गाएंगे फिर कहानी सुनाएंगे।
0: वाह क्या बात है। तो चलिए, हम तो रेडी हैं। अगर आप भी रेडी हैं तो फटाफट से आइए चैट बॉक्स में और कहिए गीता दीदी गाना शुरू करिए। और जब गीता दीदी गा लें तो बताइए कैसा लगा।
1: तो चलिए, तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और मैं गाती हूँ सभी बच्चों के लिए और सभी माओं के लिए ये प्यारा सा सॉन्ग। गाने रही हूँ, बोल रही हूँ मैं।
0: गाने रही हूँ, बोल रही हूँ।
1: हाँ, अच्छा, मुझे गाना नहीं आता है ना।
0: सुन के देखते हैं कैसे बोलते हैं गाने को।
1: जी, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले

0: फिर न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
1: क्या बात है, आपके गाने में वो इमोशंस थे, वो भावनाएं थीं जो माँ को लेकर के शायद कभी आपने महसूस की हो।
0: अब मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी महसूस करते होंगे जिनकी माँ उनसे दूर हैं। तो ये प्यारा सा गीत उन्हीं के लिए था। कभी कभी मैं तो ये सोचती हूँ ना कि कभी कोई ऐसा बच्चा दिख जाए जिसके माँ नहीं, मुझे मालूम हो कि इसके माँ नहीं है, तो हमें उसको भरपूर प्यार देना चाहिए, उसको माँ का एहसास ज़रूर कराना चाहिए।
1: सही बात है। अभी हमारे कई लिसनर्स ने बताया भी था कि उनकी माँ को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला।
0: जी,
1: तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया, इस जहां में, जिनको माँ का प्यार नहीं मिला। शायद वो एहसास होना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है तो वो है माँ।
0: माँ,
1: क्या बात है,
0: और कितना प्यारा शब्द है माँ।
1: माँ एक शब्द में, और बच्चे का सबसे पहला शब्द माँ। तो चलिए, आज इस माँ यानी कि मदर्स डे की थीम को लेकर के चल रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि गीता दीदी स्टोरी में आज क्या लेकर आई हैं।
0: अदनान, आज स्टोरी कोई बहुत खास होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है, तो आज किस तरीके से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है ये देखिए, बड़ा कष्ट होता है कि माँ, जो माँ शब्द है वो एक मतलब अपने आप में ही इतना संपूर्ण है कि उसके आगे हर चीज़ तुच्छ हो जाती है, छोटी दिखाई देने लगती है, और जब हम उन्हीं का निरादर करते हैं तो ये तो समझो कि प्रकृति का निरादर होता है।
1: सच में ये बहुत बड़ी बात आपने कही। तो चलिए, मुझे लगता है स्टोरी भी ऐसे ही कुछ होने वाली है।
0: जी, तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर, और आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, और क्योंकि इसमें भी मॉरल छिपा हुआ है।
1: वाओ।
0: तो किसी गांव में एक बहुत ही गरीब गड़रिया रहता था। उसके पास ना धन था, ना कोई दौलत थी, ना कोई बड़ी संपत्ति थी, बस थोड़ी सी भेड़ें थीं जिनसे ही उनका गुजारा चलता था। और उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी साधारण स्वभाव वाली माँ थी। समय बीतता गया और उनके घर में एक एक करके चार बेटियों ने जन्म ले लिया, लेकिन गड़रिया और उनकी पत्नी पुत्र की इच्छा रखते थे, इसलिए वो अपनी बेटियों को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बेटियाँ कितनी मासूम होती है तो आपको भी पता है, सो वो बेटियाँ बहुत ही प्यारी और मासूम थी, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा था जिनकी वो हकदार थी। एक दिन गड़रिया की पत्नी ने कहा कि मुझे हलवा और पूड़ी खाने का मन कर रहा है, पर घर में आटा भी बहुत थोड़ा है और घी भी बहुत कम है। मेरा मन हलवा खाने का और पूड़ी खाने का कर रहा है। तो गड़रिया ने कहा, कोई बात नहीं, चलो तैयार करो। लेकिन दोनों चाहते कि लड़कियां जब तक सोती रहें तब तक वो आराम से हलवा पूड़ी बना के खा लें, पर ये बात लड़कियां चुपचाप सुन रही थीं। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो सोने चली, किसी ने बेलन छिपा के रख लिया, किसी ने कुछ छिपा के, बर्तनों को छिपा के रख लिया। तो जैसे ही माँ उठी और गड़रिया उठा, वैसे ही उन्होंने किसी तरीके से बनाना शुरू किया। तो चारों बेटियां बोली, ये कलछुल मेरे पास है, कढ़ाई मेरे पास है, और सारी बेटियां एक एक करके जा करके अपनी मम्मा के पास आके बैठ गई। गड़रिया को एक उपाय सूझा कि कैसे ये हलवा जो है इनसे बचाया जाए। तो उसने कहा कि चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जंगल में बेर खिलाने ले चलता हूँ। बेर का नाम सुनते ही लड़कियाँ खुशी से झूम उठीं और अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर गड़रिया ने उन्हें एक जगह बिठाकर कहा, तुम लोग उधर जाकर बेर खाओ, मैं यहीं बैठकर सुस्ता रहा हूँ, और जब खा लेना तो वापस यहीं पे आ जाना। लड़कियाँ बेर तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ गईं। तभी गड़रिया ने एक झाड़ी पर अपना कंबल डाल दिया ताकि दूर से बच्चों को ऐसा लगे कि वह वहीं बैठा है, और चुपचाप वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी के साथ मिलकर हलवा और पूड़ी का स्वाद लिया, लेकिन समय के साथ दोनों के मन में पश्चाताप बढ़ने लगा। बच्चों के बिना, बेटियों के बिना घर सूना सा लगने लगा। कई साल बीत गए पर उनका ये अपराध बोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन गडरिया बोला, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, पता नहीं हमारी बेटियां अब जीवित भी हैं या नहीं। उनकी पत्नी ने भी सहमति जताई और उसे बेटियों की खोज करने के लिए कहा। सो गडरिया फिर उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसने अपनी बेटियों को छोड़ा था। लोगों से पूछा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ हड्डियां देखी जिसमें वह टूट सा गया और फिर पश्चाताप के कारण खूब रोने लगा। तभी एक सुंदर सी युवती घोड़े पर सवार होकर उनके पास आई और उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? फिर गडरिया ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। अब युवती मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उसने बताया कि कैसे चार लड़कियों को उनके पिता जंगल में छोड़ गए और एक राजा ने उन्हें अपनाकर अपने चार बेटों से उनका विवाह कर दिया। गडरिया की आंखों में आंसू आ गए। युक्ति ने कहा, मेरे साथ चलिए, शायद आपको आपकी बेटियों का पता मिल जाए। वह उसे एक राजमहल में ले गई। वहाँ कुछ देर बाद तीन और युक्तियाँ आ गईं। गडरिया उन्हें देखकर सोचने लगा, अगर मेरी बेटियाँ जीवित होती तो शायद ऐसी ही दिखती, इतनी ही बड़ी होती। तभी सबसे छोटी लड़की ने आकर कहा, पिताजी, जिस हलवे के लिए आपने हमें जंगल में छोड़ा था, क्या वो अभी बचा है? यह सुनकर गडरिया स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। चारों लड़कियां उसकी अपनी ही बेटियां थीं। उन्होंने बताया कि राजा ने उन्हें अपनाया और उनका जीवन संवार दिया। सबसे बड़ी लड़की बोली, पिताजी, हर व्यक्ति अपने कर्मों और भाग्य के अनुसार जीवन पाता है। आपने तो हमें छोड़ दिया था लेकिन हमारे भाग में सुख लिखा था, सो देखिए हम राजमहल में रह रही हैं। गडरिया ने रोते हुए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी। बेटियों ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि बेटियां तो ऐसी ही होती हैं। उस दिन गडरिया ने समझा कि संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो सब भगवान का आशीर्वाद होता है और उनका प्रेम ही जीवन का सच्चा धन है। तो क्या समझे मिस्टर रत्नान जी?
1: सच्चा धन है प्रेम।
0: प्रेम नहीं, बच्चे ही सच्चा धन है।
1: तो बच्चों में ही तो बसा है प्रेम।
0: तो लड़की हो या लड़का, है ना, माँ के लिए तो वो अनमोल होते हैं।
1: बेशक, सही बात है। और आज की ये स्टोरी मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। खैर, कैसी लगी ये तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन गीता दीदी, क्या सिर्फ एक स्टोरी और गाना ही आज होने वाला है मदर्स डे को लेकर?
0: कहो तो और सुना दें कहानियां, मेरे पास तो कहानियों का भंडार है।
1: कहानियों का भंडार तो है, लेकिन क्या आज बच्चे भी कुछ लाने वाले
0: हैं? बच्चे आज बहुत मजा करने वाले हैं। अभी आते ही देखिए कितनी सारी वो विशेष लेके आएंगे अपने साथ, और मुझे तो तंग करेंगे ही।
1: बेशक भाई, आप भी तो माँ ही हैं उनकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलिए भाई,
0: देखिए एक माँ के लिए भी आज का दिन मदर्स डे है।
1: बेशक, सही बात है, उनकी भी तो माँ, जाहिर सी बात है
0: जी।
1: हर किसी के लिए। तो हमारी गीता दीदी जाती हैं अपने बच्चों की तरफ और देखते हैं कि बच्चे आज अपनी माँ के लिए क्या लाए, क्योंकि आज मम्मियों का दिन है। और एक बार वापस से मैं खुद भी गीता दीदी को विश करता हूँ हैप्पी मदर्स डे।
0: आपको भी अदनान जी ढेर सारी बधाई मदर्स डे की।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, ना दिन दिन ना ना दिन। गुड मॉर्निंग, आई लव यू।
1: नमस्ते दीदी, हैप्पी मदर्स डे।
0: आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। कैसे हैं आप सब लोग?
2: बहुत अच्छे दीदी,
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज देखो सबने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सब इम्प्रेस करना चाहते हैं अपनी मम्मा को, है ना? हाँ, तो आज मदर डे और हमारा प्रोग्राम ही मदर डे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चे माँ को डेडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ ले करके आए हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सबसे छोटी सी है हमारे साथ, आराध्या है, सानिध्या है, और ये कौन छोटी सी बच्ची बैठी है? क्या नाम है?
3: अनन्या।
0: फिर से बोलो।
3: अनन्या।
0: अनन्या, और छोटी सी अनन्या भी हमारे साथ है। साथ है हमारे साथ श्रेष्ठ कर और तन्मय जी भी आ जाए हैं, साथ ही साथ ऋषभ है और हमारे अतुल हैं, समर जी भी हैं हमारे साथ, एक ठंडी हवा का झोंका। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे अभी से इकट्ठे, एक टोली तो अभी बाहर इंतजार कर रही है। तो चलो चलते हैं अपनी प्यारी सी सानिध्या की ओर। आज सानिध्या क्या सुनाने वाली हो?
4: माँ पे तविता।
0: माँ पे तविता सुनाने वाले। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज सारी बातें मम्मा के ऊपर होने वाली है। मम्मा को लेकर बहुत सारी बातें हमको भी शेयर करनी है, कुछ बातें आप लोगों से। तो सबसे पहले हम सानिध्या की पोयम सुन लेते हैं, ना
4: जी? दीदी।
0: तो चलो सानिध्या सुना दो पोयम।
4: भोली भाली कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी सारे जग से न्यारी हो, मेरे मन में जोश तुम्ही से तुमसे ही प्रताश, मुझ में साहस तुमसे आता तुमसे ही विश्वास।
0: हाँ, तो देखो कितनी अच्छी बात बताइए, क्योंकि माँ ही विश्वास दिलाती है, बेटा तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बच्चे तुम अच्छे आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, जीवन में अच्छी मार्ग पे चलने की सीख भी हमें माँ ही सिखाती है ना? तो माँ का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और माँ के बिना तो कुछ जीवन ही नहीं है। तो एक बार फिर से बोलो सभी को, जितने लिसनर्स हैं सबके लिए बोलो हैप्पी मदर डे।
5: मदर डे दीदी।
0: हाँ, तो जितनी माएँ बैठी हैं हमारे बच्चे सबके लिए हैप्पी मदर डे बोल रहे हैं। आप लोग हमारे बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। जो हमारी मम्मा लोग हैं वो हमारे बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि अच्छा एक बात आज हम पूछने वाले हैं कि आज मदर डे स्पेशल है
4: जी दीदी,
0: तो ये बताओ पहले तो हम किससे अक्कड़ बक्कड़ बोले
4: जी दीदी।
0: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 मिलागा तागा, चोर निकल के भागा। अरे ये तो शेषकर पकड़ में आ गए आज। तो चलो आज हम शेषकर से ही पूछ लेते हैं कि आज अपनी मम्मा के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, मम्मा को खुश करने के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है?
6: अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन घर जाने के बाद कुछ करना चाहूंगा।
0: क्या करना चाहेंगे?
6: जैसे
0: मम्मा को कुछ करने के लिए क्या करेंगे आज? अरे बता भी दो, इतना शर्माने की क्या बात है?
6: जो जब थक जाती हैं तो थोड़ा काम में हाथ बटा
0: दे। ओ, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ भाई। मम्मा अगर थक जाती है काम करते करते, पूरे दिन मम्मा के पास कितना सारा काम होता है, और जब वो थक जाती है तो उनके काम को थोड़ा हल्का करने के लिए उनका हाथ बटाना, तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं ना
4: जी दीदी।
0: हाँ, तो आज श्रेष्ठकर मालूम है क्या करने वाला है? मम्मी का काम हल्का करने वाला। अभी मैं फोन करके बता दूंगी कि आज कोई काम मत करना, क्योंकि आज सारा काम श्रेष्ठकर जी करने वाले हैं। तो आज क्या सुनाना चाहोगे श्रेष्ठकर
6: दीदी? आज मैं मदर्स डे पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा।
0: ओ, तो चलिए सब लोग गीत की कहानी सुनते हैं ना
4: जी दीदी।
0: तो देखो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा माँ पे बात करता है, जब कोई बच्चा माँ की कहानी सुनाता है, जब कोई बच्चा माँ के गीत गाता है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज चलो सुनते हैं इनकी प्यारी सी कहानी।
6: एक बार की बात है, एक माँ थी जिसके दो छोटे बच्चे थे।
0: ओ,
6: वह घर के काम बच्चों की पढ़ाई और खाना बनाने में दिन भर व्यस्त रहती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, भले ही वह बहुत थक जाती थी। एक दिन बच्चों ने देखा कि माँ ने खुद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उनके लिए नए खिलौने और स्कूल का सामान ले आई। बच्चों ने माँ से पूछा, माँ आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेती? माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है।
0: ये तो बात सच है।
6: मदर्स डे के दिन बच्चों ने माँ के लिए एक छोटा सा कार्ड और फूल बनाया
0: आहा।
6: और उन्हें गले लगाकर कहा, थैंक यू माँ हमें प्यार करने के लिए। उस दिन माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे।
0: खुशी के आंसू तो होंगे ही होंगे।
6: जी दीदी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, माँ का प्यार और त्याग अमूल्य है, उसे कभी नजरअंदाज ना करें। माँ के प्रति कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करना ही उन्हें सबसे बड़ी उपहार देना है।
0: सराहना बेटा। हाँ, तो माँ का हर काम जो है उसकी तारीफ करना, वैसे तो तारीफ के काबिल होती है माँ, क्योंकि माँ तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है ना। खुद गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चों को सूखे में सुलाती है। खुद भूखी रह जाती है, पर बच्चों को खाना खिलाती है। खुद के फटे कपड़े होते हैं, पर बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़ों का और खिलौनों का इंतजाम करती है। तो ये त्याग करने वाली कौन होती है?
4: माँ
0: होती है। तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। तो चलो अब चलते हैं हम अपनी अनन्या की ओर। और अनन्या आज क्या सुनाने वाली है छोटी सी अनन्या?
4: पोयम।
0: पोयम, अच्छा तो सुना दो, कौन सी पोयम है?
4: मम्मी वाला
0: है। ओहो, आज तो सब मम्मा के लिए ही तैयारी करके आए हैं।
4: मम्मी जल्दी बाहर आ, सब्जी वाला आया है, आलू मटर गोभी टमाटर लौकी छिलकम लाया है, गोल गोल है लाल टमाटर बैगन मोटी मोटी।
0: अच्छे नहीं, जला जोर से सुनाओ, बहुत दम दम छे।
4: मम्मी जल्दी बाहर आ, सब्जी वाला आया है, आलू मटर गोभी टमाटर लौकी छिलकम लाया है, गोल गोल है लाल टमाटर बैगन मोटे मोटे।
0: हाँ, गोल गोल है लाल टमाटर बैगन मोटे मोटे। ऐसे ही ना हम लोग भी बुलाते थे, जब मम्मी कहती थी, अरे अरे वो देखो देखो सब्जी वाला आ रहा, जल्दी से जाके उसको रोको, तो हम लोग भाग के जाते थे और सब्जी वाले को रोक के रखते थे, मम्मी जल्दी आओ नहीं तो चला जाएगा सब्जी वाला। ऐसे अब देखो इसने वही वाली पोयम भी सुना दी, तो बहुत अच्छी पोयम थी। तो अनन्या के लिए
4: ताली।
0: तो अब कौन सुनाने वाला? अक्कड़ बक्कड़ करें कि अच्छा हमारे बीच में ऋषभ जी बैठ चुके हैं। ऋषभ क्या सुनाने वाले हो हमारी श्रोताओं को, हमारे अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को?
2: दीदी कहानी।
0: आहा, कहानी कौन सी कहानी है
2: दीदी? मदर्स डे के ऊपर है।
0: मदर्स डे के ऊपर,
2: और ये भावुक कहानी है।
0: भावुक कहानी है
2: जी दीदी।
0: ओहो भाई, भाव कहानी में कहीं मैं रोने ना लगूं, ऐसी कहानी प्लीज मत सुनाना, नहीं तो मेरे आंसू ऐसे ऐसे बहने लगेंगे। इतनी भावुक मत सुनाना भाई।
2: बहुत भावुक नहीं है दीदी।
0: अच्छा चलो चलो, तब ठीक है।
2: रवि शहर में नौकरी करता था।
0: हाँ।
2: काम इतना था कि उसे अपने गांव और माँ की याद भी कम आने लगी थी।
0: अच्छा, हाँ तो जो नौकरी करेगा तो फिर वो काम में व्यस्त रहेगा।
2: जी दीदी, हर बार माँ फोन करती, बेटा खाना खा लिया? थक जाता होगा ना, घर कब आएगा? और रवि हमेशा एक ही जवाब देता, माँ अभी काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे महीने गुजर गए।
0: ओहो।
2: एक दिन मदर्स डे आया, ऑफिस में सब लोग अपनी माँ की फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। रवि भी अपने फोन की गैलरी खोलकर तस्वीर ढूंढने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास माँ के साथ हाल ही की एक भी फोटो नहीं थी। उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसी शाम उसने बिना बताए गांव जाने का फैसला किया। घर पहुंचा तो देखा माँ दरवाजे पर बैठी थी, जैसे रोज उसका इंतजार करती हो। रवि को देखते ही माँ की आंखें चमक उठी। अरे तू आ गया बेटा, रवि दौड़कर माँ को गले लगा लिया। उसने महसूस किया माँ के साथ पहले से ज्यादा कमजोर हो गए थे, बाल भी सफेद हो गए थी, रवि की आंख में आंसू निकल पड़े। माँ माफ कर दो, मैं बहुत दूर हो गया था। माँ मुस्कुराई और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा माँ से कोई दूर नहीं होता, बस बच्चे थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। उस रात रवि ने पहली बार समझा, दुनिया में हर रिश्ते किसी वजह से बनते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता बिना किसी मतलब के सिर्फ प्यार से बनता है।
0: तो माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, बच्चों से उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल बच्चों से इतना लगाव होता है, बच्चों के लिए ही तो माँ का जन्म हुआ है। तो क्या बोल रही है ये बीच बीच में, क्या बोल रही हो बेटा?
4: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे बता दो
4: दीदी, वो माँ पे पोयम है, सुना दीदी।
0: अच्छा, माँ पे पोयम है। हाँ हाँ बिल्कुल सुनेंगे। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, मैं कुछ सोच रही थी ऋषभ की कहानी के बारे में। इतनी अच्छी कहानी सुनाई ऋषभ ने कि सच में दिल भर आया, क्योंकि माँ से बच्चे कभी दूर नहीं होते हैं, वो तो उनके दिलों में बसते हैं। बच्चे भले माँ से दूर हो जाएं किसी भी कारणवश, लेकिन माँ उनको अपने बच्चों को अपने से दूर कभी नहीं करती है। तो चलो देखते हैं कि आराध्या क्या करने वाली है। बता रही कि माँ पे पोयम है।
4: माँ मुझको पुस्तक दे दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा, सबसे ऊपर जाकर जब सबका नाम कमाऊंगा।
0: अरे वाह, तो देखो भाई, ये माँ से पुस्तक मांग रही है और मैं मैसेज भेज दूंगी कि इसको ढेर सारी पुस्तक दे दो, ये पढ़ते पढ़ते बुढ़ी हो जाए।
4: दीदी कहानी सुना दे।
0: हाँ कहानी भी सुना दो भाई।
4: जी दीदी, प्रिय प्रसंग है।
0: हाँ प्रसंग है
4: जी दीदी। एक राजा था जिसने अपनी से वो एक राजा था जिसने अपनी
0: अरे भाई अभी अभी नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे हम कहानी। जब कहानी ठीक से याद हो जाएगी तब सुनेंगे बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज आराध्या, अभी थोड़ी देर में हम कहानी सुनेंगे आपसे। तो हमारी हैं साथ में सानिध्या, और सानिध्या तो बेहद अच्छी चीज़ें लेकर के आती हैं। अब देखते हैं सानिध्या और क्या लाई है आप लोगों के लिए। सानिध्या जी कैसी हैं आप?
3: दीदी बहुत अच्छी।
0: अब और क्या लेके आई हो भाई छप के लिए?
3: दीदी तबिता।
0: तबिता, एक और तबिता, देखते हैं कौन सी कविता है। तो चलो भाई सानिध्या की कविता सुनते हैं हम सब।
3: ये तदम्बता पेड़ अदर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह तदम्बती डाली। तुम्हें नहीं तुझ टहता पर मैं चुपते चुपते आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठे फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा तह बंसी स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी तो माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने ताम छोड़कर तुम बाहर आती। तुम तो आता देख बांसुरी रथ में चुप हो जाता, पट्टों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती तहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हस्तर तहती मुन्ना राजा। नीचे उठो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दुंडी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दुंडी। बहुत बुलाने पर भी जब मैं नहीं उतर कर आता, माँ तब नाता हृदय तुम्हारा बहुत वितल हो जाता। तुम आंचल फैला तर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से तुझ विनती तरती बैठी आठे नीचे। तुम्हें ध्यान में लदी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा तर आठे ढोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा डोडी में ही पाती। इसी तरह तुझ ठेला तरते हम तुम धीरे धीरे, ये तदम्बता
0: होता यमुना तीरे। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर कविता है, क्या कितनी भावना इसमें बच्चे की छिपी हुई है, क्या कह रहा है, कितना अच्छा अच्छा बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी तो माँ, तो माँ को तो डर लगता ही ना बच्चा कहीं गिर ना जाए, है ना। तो बस वही है कि वो ईश्वर से भी प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा किसी ना किसी तरीके से नीचे आ जाए, और जब वो प्रेयर कर रही होती है आँख बंद करके तो बच्चा जो है शरारत से धीरे से नीचे उतर करके आता और माँ के पल्लू के नीचे छिप जाता। तो कितना अच्छा, देखो अम्मा शब्द कितना अच्छा होता है ना
4: जी दीदी।
0: हाँ, माँ अम्मा कितना प्रेम छिपा होता है, कितना लगाव होता है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है अम्मा, है ना, जब बच्चे पहला शब्द बोलते अम्मा, है ना तो कितना अच्छा लगता है छोटा बच्चा अम्मा अम्मा अम्मा तो आराध्या
4: जी दीदी
0: क्या कह रही थी।
4: एक राजा था जिसने अपने शक्तियों पर बहुत अभिमान था।
0: हाँ।
4: एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, बताओ इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है। मंत्री ने मुस्काया और कहा, और राजा एक बार गेट पर अपना नाम लिखकर देखें। तो राजा ने वैसा ही किया। सूरज की एक किरणें आई और हवा का एक झोंका आया। राजा का नाम पलभर में मिटल गया। मंत्री ने कहा, राजा आपका नाम मिटल गया, लेकिन सूरज और हवा की शक्ति को दिखाया। इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। समय से बड़ी कोई शक्तिशाली कोई नहीं है। राजा ने मंत्री की बात का गहराई का ठीक समझा और उसका अभिमान चूर चूर हो गया।
0: तो भाई बहुत अच्छी कहानी थी आराध्या की, और बच्चे कुछ थके थके से लग रहे हैं ना। तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ और मिलती हूँ ब्रेक के उस पार।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

0: किसी ने दाल
1: तो लीजिए। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपनी शैतान हम्टी डम्टी बच्चों की टोली के साथ, और अब आ गए हैं हमारे साथ अथर्व यानी कि विचारक, और साथ ही साथ हैं छोटे से यस यानी हमारे छोटे साइंटिस्ट, और साथ में समर एक ठंडी हवा का झोंका। तो चलिए चलते हैं इनकी ओर और देखते हैं आज ये क्या लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम समर की ओर चलते हैं, और समर जी आज क्या स्पेशल डे है?
2: वैसे तो मदर्स डे आज स्पेशल और उससे स्पेशल क्या ही हो सकता है।
1: हाँ तो बहुत आप मतलब आप स्वीकार करते हैं ये सबसे स्पेशल डे है बच्चों के लिए, है ना? तो अच्छा थोड़ा सा आज आप क्वेश्चन करते हैं तुमसे, क्या किया आज आपने मम्मा को इंटरटेन करने के लिए, या उनको खुश करने के लिए, या उनको हेल्प दिया है, या उनके लिए कुछ अच्छा डिलीशियस बनाया है, ऐसा क्या किया कि मम्मा ग्लेड ग्लेड हो जाए?
2: कुछ नहीं।
1: अरे गॉड ये कैसा बच्चा कह रहा, कुछ नहीं, कुछ तो किया होगा।
2: नहीं नहीं कुछ नहीं किया, मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ किया, क्योंकि मम्मी ऐसा कुछ करती है जिससे हम लोग खुश हो, मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ।
1: अच्छा मतलब मम्मी उल्टा करती है मदर डे पर भी। हाँ। कि मेरे बच्चे मुझसे खुश रहे। हाँ। बच्चों के लिए मैं जितना
2: और
1: कर सकूं,
2: मदर डे के दिन नहीं हमेशा।
1: हाँ तो ये आज तो एक दिन खास होता मम्मा के लिए, मालूम है कि पहले भी होता आया, तो हम क्या करते थे ना मम्मा को उस दिन खुश करने की कोशिश करते थे, कुछ नहीं मिलता था तो चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ जाते थे, उनके पैर ही दबाने लगते थे, कहती थी अरे अरे मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, हम फिर भी दबाते रहते थे, कहते क्या है आज तुम मेरा पैर क्यों पकड़े हुए हो, तो हम कहते थे हैप्पी मदर डे। तो ऐसे कुछ करते थे। अच्छा देखते अथर्व जी आप बताइए आज आपने क्या किया मम्मा के लिए कुछ खास?
3: जी बस मम्मा ने जो जो काम मुझे बताया वो मैंने अपनी पूरी निष्ठा से काम किया उसको।
1: ओहो सारा काम करवा दिया आज मम्मा का। यश आपने क्या किया?
4: देखिए वैसे सही बताऊं तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब मुझे याद आया है कि आज मदर्स डे। इससे पहले मुझे याद ही नहीं था कि आज मदर्स डे है, क्योंकि वैसे मदर्स डे की कोई एक स्पेसिफिक डेट होती नहीं, स्पेसिफिक होती भी है तो कहा जाता है कि मई का जो पहला मतलब दूसरा संडे जो होता है वो मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, तो वैसे मुझे नहीं याद था। संडे जब भी आता है मेरे दिमाग में तो यही यहाँ पे आने का यही जो एक्साइटमेंट है यही दिमाग में रहता, तो इसी के कारण मैं भूल गया। वैसे आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है
1: तो सभी। अच्छा अभी जा करके क्या करोगे फिर मम्मा के लिए, अब याद आ गया है तो?
4: अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है,
1: तो आज कुछ अच्छा सोच के जाना।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज समर क्या तैयारी करके आए हैं, क्या बताने वाले अपने दोस्तों को और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो आप लोग का प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या है ऐसा जो आप उनको इंटरटेन करेंगे।
2: हाँ अभी तो मदर्स डे के बारे में बहुत चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन आईपीएल सीजन चल रहा है इंडिया का, इंडियन प्रीमियर लीग,
1: इसका तो सभी को पता है।
2: हाँ वो खासकर लड़कों का, ये मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी बॉयज का खासकर वो 7:30 से लेकर के और 11 बजे वाला शिफ्ट वो कंफर्म रहता है कि आईपीएल,
4: और आज तो संडे है, संडे के दिन तो 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा,
1: सारे लोग जो है टीवी के पास बैठ जाएंगे।
4: और आज तो हमारी यूपी की टीम का क्लास भी है, मैच भी है लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से 3:30 बजे।
1: अच्छा क्या लग रहा है कि टीम क्या करेगी आज?
3: देखिए मैं अगर हम लोग टेबल्स की बात करें तो जिस तरह से लखनऊ अभी 10th पोजीशन पे बनी रही है, लेकिन हम लोग उसे ऐसे नहीं जज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं जज कर सकते, बाजी कभी भी पलट सकती है।
4: और
1: ये तो गेम है, हार जीत का क्या है भाई, वो तो एक पहलू तो होना ही होना है, चाहे जीत हो या हार।
2: अभी इनको मदर्स डे का नाम सुन के ये नहीं याद आ रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब इनको ये इसीलिए मैं कह रहा था कि चाहे हो या ना हो लेकिन हर लड़के के दिल में आईपीएल अपनी एक बहुत अच्छी जगह, बहुत खास जगह बना चुका है, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो
1: मैंने भी प्लान बना लिया है कि कुछ अच्छा सा बना करके और टीवी के सामने बैठ जाना और खाते हुए मैच एंजॉय करना
2: है। आज आपको क्यों बनाना है, आज तो मदर्स डे है ना।
1: नहीं नहीं मेरी तो मैं तो खुद ही मदर हूँ ना।
2: अच्छा।
1: और हाँ जैसे तुम बच्चे बैठे हो ऐसे मेरे भी बच्चे हैं, वो मेरे लिए शायद कुछ बना के रखेंगे।
4: और क्या पता, क्या पता अभी आप घर जाएं फिर आपसे कहा जाए कि चलिए लखनऊ चलते हैं या चलिए आपको
1: मे भी ऐसा हो सकता है। तो चलो चलते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है और जल्दी से हम समर की ओर चलते हैं। समर, प्लीज आप जल्दी से हमारे श्रोताओं को बताइए आज क्या आप लेके आए हैं।
2: तो मैं कह रहा था क्रिकेट, तो क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, क्रिकेट है प्योर प्रोबेबिलिटी, प्योर फिजिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। ऐसे है कि उसमें स्टैटिस्टिक्स का इतना ज्यादा यूज है,
1: प्रोबेबिलिटी तो उसमें मस्ट है
2: कि हम उसको सोच नहीं पाते। जैसे आपने सोचा होगा कि स्कोर कार्ड जब आप देखते हैं तो रन, स्ट्राइक रेट, एवरेज इकोनॉमी, रन रेट, विकेट्स, विकेट्स पर ओवर और रन पर ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट, ये सब सीधा सीधा नमूना है स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का।
4: और क्रिकेट में तो आजकल के स्टैटिस्टिक्स इतने ज़्यादा तगड़े हो गए हैं। अभी पिछले साल के आईपीएल के सीज़न की बात है, धोनी ने एक 75 मीटर का छक्का लगाया और उसमें लिख के आ रहा है ये आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का है ऑन रेड सॉइल पिच इन नॉर्थ इंडिया। हाँ। ऐसे वेदर में, ऐसी जगह पे, ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स।
2: और अब हमारा स्टैटिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है क्रिकेट को लेके कि हम लगभग लगभग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी, या फिर जो टीम टॉस जीतेगी तो उसको क्या लेना चाहिए कि उसको मैच जीतना है। और आ तो ये भी सोचिए कि आज हम DLS मेथड जो होता है कि बारिश हो गई तो भी हम मैच कंटिन्यू कर सकते हैं, मन में ही DLS मेथड से जिता सकते हैं किसी को भी। तो क्रिकेट मतलब टैलेंट, डेटा और प्रोबेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रन रेट। मान लीजिए अगर आपको 30 बॉल में 60 रन्स चाहिए तो रिक्वायर्ड रन रेट होता है 12 रन्स पर ओवर का, क्योंकि 5 ओवर हैं और 12×5=60। हाँ। लेकिन अगर आपकी एक ओवर पूरा मेडन चला गया, एक ओवर पूरा डॉट हो गया, मेडन हो गया, 6 बॉल्स यानी कि, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ,
1: तो फिर एक रन और बनाना है।
2: हाँ, तो फिर एक रन नहीं बनाना है और वो जाएगा
1: नहीं, एक रन के हिसाब से मतलब जो एवरेज है हमारा। हाँ,
4: फिर वो जो रन रेट है वो 15
2: वो 15 के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट का जो रेशियो होता है वो हमको बना के चलना पड़ता है ताकि हम किसी भी मैच को जीत सके। जैसे आपने देखा होगा जब बड़े मैचेस होते हैं जैसे वर्ल्ड कप और ये फिर जैसे और सब सारे मैचेस, तो उसमें लिखा आता है नीचे कि विनिंग प्रोबेबिलिटी इस टीम की इतनी है, इस टीम की इतनी है। हालांकि वो हमेशा सही नहीं होती लेकिन फिर भी 80-90% टाइम सही होती है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच, जो जिस मैच में इंडियन ODI वर्ल्ड कप इंडिया हारी थी, उस मैच की वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सटीक थी। इसलिए सटीक थी क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में बहुत अंतर था। ऐसे ही जो हम सबके बहुत क्रिकेटर, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, एक धोनी, कैप्टन कूल MS धोनी, वो इसी को अपनी पूरी नींव बना के चलते हैं इस प्रोबेबिलिटी को। वो किसी भी ग्राउंड पर जब जाते हैं, किसी भी बॉलर को जब फेस करते हैं या फिर उनकी टीम फेस करती है, तो वो उसका पूरा ऐसे कह सकते हैं कि पूरा चिट्ठा बना के रखते हैं कि कौन सा बॉलर किस प्रोबेबिलिटी से क्या कराएगा और कितना स्ट्राइक रेट, कितना रन रेट हमको चाहिए। इसीलिए उनका उनकी जो CSK टीम है, ऐसा माना जाता है कि उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। और वो चूंकि मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं इसलिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं मैचेस में। ऐसे ही ज्योमेट्री ऑफ क्रिकेट शॉट्स, यानी कि जो क्रिकेट शॉट जब हम मारते हैं कहीं पे, तो जैसे ग्राउंड का बहुत असर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं खेल रहा हूँ कहीं इक्वेटर के पास में, या जैसे कि किसी कंट्री में लाइक फिलीपींस यहाँ सब में, और कभी खेल रहा हूँ बिल्कुल ऊपर आर्कटिक सर्कल में जैसे कि ब्रिटेन, यूरोप यहाँ सब में, तो वो जो छक्का या फिर चौका मारने के लिए मुझको ताकत लगानी पड़ेगी वो बहुत अलग अलग होगी। इसलिए अलग अलग होगी क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है U² sin θ / 2g।
1: अच्छा, इसमें भी साइंस लगा।

0: फॉरेन सॉवरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब जान ही नहीं पाते कि इंडिया ने ये सब किया,
1: ये टेक्नोलॉजी उनके पास आई कैसे,
0: ये कैसे हुआ। मतलब देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट करना और वो भी पोखरण जैसे खाली एरिया में, क्योंकि यूएसए जैसी जो कंट्रीज है वहाँ पर जो इंटेलिजेंस उनकी एजेंसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से काम करती हैं, और उनके जो सेटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के चारों ओर घूमा करते हैं, इमेजरी हमेशा वो मतलब यूएस डिफेंस के पास पहुँचा करती है।
1: और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि जो टेक्नोलॉजी, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी होती है, अगर इंडिया चाहे उसको लेना तो वो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं मिलती है, बल्कि जो कचरे के बॉक्स में पड़ी होती है वही टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड करा दी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद भी इंडिया सक्सेस
2: ऐसे कि जब भी बात इंडिया की आती है तो दूसरे कंट्रीज हमारे लिए थोड़ा सा असम्मान का भाव रखते हैं।
1: वो ये सोचते कि ये बस एवे कंट्री है
0: लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो खुद ही वैसे है। उस हिस्टोरिक दिन सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं हुआ था, उसी दिन इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3 की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, और त्रिशूल मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। अभी देखिए, त्रिशूल मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अग्नि MIR-5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। और ये सब टेक्नोलॉजी से ही जोड़ता है, इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
3: वो अग्नि MIR जो मिसाइल है, वो जिनको नहीं बताऊँ मैं बता दूँ कि वो MIR उसके लिए, उसके पास इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो एक बार अगर लॉन्च हो गई तो वो सिर्फ एक नहीं मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती
1: रहती है।
0: जैसे स्पेसएक्स ने अपनी रॉकेट्स को बनाया है वैसे ये मिसाइल भी है कहीं ना कहीं।
1: मुझे लगता है जैसे यूरेनियम जो 35 है उसी की तरह से ये जो है वर्क करती है,
0: और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है सोचने में। मतलब ये एक मिसाइल जो कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन करके आया है, फिर वो फिर से हम इसका यूज कर सकते हैं, ये सुनने में काफी ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अचूक निशाना भी लगाती है, तो काफी ज्यादा। तो ये टेक्नोलॉजी डे के बारे में आज हमने बात की, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो हमारे जो भारतीय हैं, अगर उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि आज जो भारतीय टेक्नोलॉजी डे हम मना,
2: आज हमारा इंडिया भी AI की फील्ड में बहुत ही ज्यादा तेजी से
1: आगे, हाँ आगे बढ़ रहा है। तो चलते हैं अथर्व की ओर, और अथर्व देखते हैं वो हमें क्या जानकारी देने वाले हैं।
2: तो दीदी, बात हो रही है इंडिया के बारे में और मॉडर्न जमाने के बारे में
1: जी, जी।
2: लेकिन अगर हम लोग चले जाएं उस साल में जहां पर हमारा इंडिया की जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी कह सकती हैं आप। जी हाँ, वो जो हम लोग आज हम जिस हिस्ट्री के बारे में बात करने आ रहे हैं वो हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है, मतलब इस टॉपिक का नाम है, द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, यानी कि भारत की पहली स्वतंत्रता की ज्वाला, यानी कि आप भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हम्प्टी डम्प्टी विथ गीता दीदी, जहां हिस्ट्री बन जाती है पावरफुल, इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने चाहेंगे।
1: बिल्कुल।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि जो भारत की आज़ादी है उसकी पहली बड़ी चिंगारी कब जली थी?
1: 1857।
2: लेकिन आज हम जानेंगे कि भारत के इतिहास में जो उसकी और भी हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि हम लोग से छुपाई गई थी। तो सबसे पहले इस रिवोल्ट की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सभी जानते होंगे, जिसने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जो ब्रिटिश शासन की जो पॉलिसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और एक्सप्लोइटेटिव थी, जिससे किसानों पर भारी टैक्सेस लग गया, भारतीय रूरल्स के लिए जो पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया, और जो भारतीय ट्रेडिशंस थे यानी कि हमारी जो परंपराएं थी उसमें भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अड़चन डाली गई थी। और इन सब ने मिल करके हम सबको, यानी कि हमारे जो पहले 1857 के पीपल्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा एंगर मिला दिया
1: जी।
2: अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसने रिवोल्ट की आग को और ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। तो 1857 में सोल्जर्स को नई एनफील्ड राइफल्स दी गई थी। इन कार्ट्रिजेस को यूज करने के लिए उसको मतलब मुंह से काटना पड़ता था।
1: चर्बी की बात थी।
2: तो अब ये अफवाह फैल गई थी कि जो कार्ट्रिजेस थे उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी थी वो यूज होती थी। तो अब ये हमारे लिए
1: अफवाह नहीं थी, ये फैक्ट था।
2: ये फैक्ट था, ये सच था।
1: सच था।
2: और ये हिंदू और मुस्लिमों के लिए तो जानते हैं आपकी बहुत ही

0: इसके खिलाफ था, और इससे जो हमारे सोल्जर्स थे और जो कह सकते हैं आप लोग की जो हमारे जो हमारे जो अखंड मतलब अखंड भारत था उसके लिए भी एक बहुत ही कह सकती है भारी गुस्सा फैल गया था हमारे लिए। हिंदुओं
1: में गाय का मांस ये मतलब बिल्कुल भी मना किया गया सेवन करने के लिए, और इस्लाम धर्म में तो सुअर ये शब्द भी बोलना हराम माना गया है
2: जी।
1: तो ये तो उनके ये दोनों ही वर्गों के लिए बड़ी बात थी, और ये दोनों ही वर्गों को यूनाइट कर देता ताकि वो एक रिवोल्ट फैला दें।
0: और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन द डेट 10 मई 1857, इसमें भारतीय सोल्जर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे हम लोग
2: एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक कोई मतलब नीच कह सकते हैं उस समय जो शब्द इस्तेमाल होता था, वो पानी भरने जा रहा था तो कहा तो ये ब्राह्मणों का कुआं है और इससे आप पानी नहीं ले सकते हो, तो उन्होंने कहा कि उसने ये बात कही कि वहाँ पे जो कारतूस यूज होते हैं उसमें क्या है, तो हाँ उसने हाँ उसको जो है ओपन किया इस बात को, तब से ये जो है एकदम चिंगारी भड़क गई चारों तरफ, ये अफवाह कहिए या सच्चाई कहिए, ये लोगों में बात घर कर गई कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है।
0: और इसके बाद जो ये रिवोल्ट था वो और तेजी से फैल गया, जैसे कि दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ जिसे उस समय अवध के नाम से जाना जाता था, और झांसी में, इन सभी जगहों पर ये रिवोल्ट बहुत तेजी से फैला था। मतलब कह सकते पूरा नॉर्थ इंडिया रिवोल्यूशन में
2: डूब गया,
0: घिस गया था पूरा। अब जैसे रेबेलियन में कई लीजेंडरी हीरोज ने भी अपनी एंट्री ली थी, जैसे कि बहादुर शाह जफर जिन्हें रेबेलियन का सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था, मतलब कि कह सकते हैं उन्होंने इसकी कमान संभाली थी, और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने इनक्रेडिबल ब्रेवरी दिखाई, उनका एक डायलॉग था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और मंगल पांडे जिनको रेबेलियन की शुरुआती चिंगारी भी माना जाता था, तत्या टोपे और बेगम हजरत महल ने भी पूरी निष्ठा से लड़ाई लड़ी थी। अब हालांकि जो
2: उस समय ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था,
0: आप जैसे कि नाम अभी सुनी बहादुर शाह जफर, सब एक साथ मिलकर
2: जो है अंग्रेजों से विद्रोह में शामिल थे।
0: हालांकि जो ये रेबेलियन था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन हम लोग के पास कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि जो अलग अलग लीडर्स थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी।
2: हाँ।
0: हमारे पास मॉडर्न वेपन्स की भी कहाँ मतलब इतनी ज़्यादा कह सकते हैं भारी मात्रा में थी, वो भी हम लोग के पास उसकी कमी थी, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी एडवांस्ड मिलिट्री, मतलब कि हम कहाँ 1857 में इतने पहले मॉडर्न हुआ ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, लेकिन वही जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कितनी ज़्यादा मॉडर्न थी।
1: देखिए मैं आपको ये बताऊं, ब्रिटिश आर्मी जो उस समय थी वो ऑर्गेनाइज्ड थी, उनके अंदर यूनिटी का एक मतलब भावना थी कि हम सब एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिवोल्ट था ना ये हर भारतीयों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, और ये जो रिवोल्ट था ना ये नॉर्थ इंडिया में ही और नॉर्थ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में ही रहे।
2: उसके बाद भी अंग्रेजों ने बहुत जो है लड़ाने की उनको लड़ाया, हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काया,
1: और उस समय के जो राजपूत थे जो कि मेवाड़ के राजपूत थे उन्होंने भी जो भारतीय थे उनकी जो साथ था वो छोड़ दिया था, वो कह रहे थे कि हम अपनी जो लॉयल्टी है वो ब्रिटिश आर्मी से बना रखेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी फॉल्ट थी, क्योंकि राजपूत एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड वॉरियर्स माने जाते हैं,
2: ये बहुत बड़ी चूक थी उनकी,
1: बहुत बड़ी चूक थी, अगर वो साथ देते तो हम 1857 में आज़ाद हो जाते और इंडिया आज बहुत ज़्यादा डेवलप होता।
0: लेकिन जब अब जो इंडियन रेबेलियन था 1857 का उसने भारत के इतिहास को बदल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी खत्म हो गई, जो भारत था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन की कंट्रोल में हो गया था, और जो भारतीयों में नेशनलिज्म थी उसकी भी भावना बढ़ गई थी, मतलब कह सकती हैं आप कि रेबेलियन फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स की एक इंस्पिरेशन बन गया। तो अगर हम इससे मतलब हम लोग को ये सीख मिलती है कि जब भी हम लोग यूनिटी और करज से लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग को फ्रीडम जरूर मिलेगी।
2: जी बिल्कुल, और आज हम लोग बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं ये उनके बलिदानों के कारण। तो चलिए भाई बहुत अच्छी बात आपने बताई, मुझे तो बहुत खुशी होती जब भी कभी इस तरीके की चर्चा होती है, तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ और जितनी जानकारी है एक दूसरे से शेयर करूँ। तो चलिए हम चलते चलते हमारे बच्चे हैं जो मदर्स डे पे एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चलो इनका हम भी साथ देते हैं और देखते हैं कौन सा गीत है।
3: जी दीदी।
2: हाँ

0: एक बार मदर्स डे पे तालियां हो जाएं। बच्चों ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया है और हम चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों को मदर्स डे की ढेर सारी बधाई देते हैं। और
1: तब तक के लिए सुनते रहिए आप लोग 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: जाओ सबको दे करके आओ,
2: हम आप भी चलिए।
0: अरे सबको दे करके

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। ये वो वक्त होता है भाई जब हम अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टिसिपेंट हमारे पास आते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है। और आज दिन बहुत खास है क्योंकि मई माह के प्रत्येक दूसरे रविवार को हम इस दुनिया का ऐसा पर्व मनाते हैं जो पर्व शायद दुनिया के सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ होता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है वो माँ का होता है, और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड। की इसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई थी और आज पूरा विश्व जो है मातृ दिवस मना रहा है। तो आप सबसे पहले तो आप सभी माओं को, आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ फिलहाल पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं और जो उपस्थित हैं कहा जाता है कि वो व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है अपने आप में। आपने कई बार उनकी आवाज़ को सुना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने कई विधाओं में अपने पंख फैला रखे हैं और कोई भी विधा शायद उनसे छूती रही हो। मैं बात कर रहा हूँ श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी की। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं आप सर?
1: ठीक हूँ।
0: बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ।
1: जी हाँ, कुछ भतीजे की शादी वादी के विषय में व्यस्त था, तो यह है कि अब थोड़ा फुर्सत मिली तो हमारा भी मन लगा हुआ था इधर। हाँ। और हम आप लोगों के पास आ गए।
0: मतलब भतीजे का विवाह संपन्न हो गया?
1: नहीं, विवाह तय हुआ है, उस सिलसिले में छोटी मोटी रस्में होती हैं, वो हुई हैं।
0: अच्छा, मतलब आज मुंह मीठा कराएंगे आप हम लोगों का जो रस्में तय
1: हुई हैं? क्या नहीं।
0: चलिए, नहीं ये तो अच्छा है भाई, इस मौके पर ये शानदार चीज हो गई कि मातृ दिवस है और भतीजे का विवाह भी सुनिश्चित कर दिया गया है। तो कहाँ से सुनिश्चित किया आपने?
1: पहले तो मैं मातृ दिवस पर एक बात बताऊंगा आपको।
0: जी,
1: बचपन की बड़ी प्यारी बात है कि हम लोग इलाहाबाद में थे, मेरी मदर वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी और मैं 3 साल का था वहाँ पे, 3 या 4 साल का। तो हम लोग जा रहे थे कि एक मेले में, तो सब बच्चे साथ में थे और आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो और मैं हुआ क्या कि मैं चप्पल सीधी और उल्टी नहीं समझ पा रहा था, उल्टे पैर में सीधी और सीधी पैर में उल्टी डाल रहा था। तो मेरी माँ नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग स्टाफ में ट्रेनिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है। और मैं परेशान था, मैं रो रहा था, मैं सबके साथ जा नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये इस तरीके से बनी हुई है, ये चप्पल इस पैर की है, इस चप्पल इस पैर की है। तो मुझे आज याद आया जब मदर्स डे की बात आपने की,
0: क्या
1: और
0: बात,
1: मैंने पढ़ा भी पेपर में कि उन्होंने मुझे चप्पल पहनना सिखाया था।
0: अरे वाह,
1: आज मैं रिटायर हो चुका हूँ, ये उम्र हो चुकी है। ये खैर, माँ तो अपने आप में उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती,
0: नहीं की जा सकती। मतलब बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान।
1: सभी माओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और माँ अपने कर्तव्यों का ऐसे ही निर्वाह करती रहीं। कहते हैं कि माँ बच्चों का विश्वविद्यालय होती है।
0: सही बात।
1: उसकी गोद में जब बच्चा जाता है और वो संस्कार वाली कहानियाँ सुना के उनको परिलक्षित करती है, तो वो आगे जाके उन्हीं संस्कारों को पोषित करते हैं और उनका व्यक्तित्व महान बनता है।
0: क्या बात।
1: तो चाहे वो माँ पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो, वो उसके उपटन लगाती है, बुकुआ लगाती है। अब ये शब्द शायद आजकल के बच्चे उपटन और बुकुआ जानते भी ना हो। तो ये इस तरीके का प्रेम, पैर ऊपर करके नीचे करके पूरी कसरत वो अपनी गोद में करा देती।
0: सही बात है।
1: वो सीन अगर जिन लोगों ने देखा है, वो लोग आज सोच रहे होंगे कि वो दोनों पैर फैला के उस बच्चे को नंगा लिटाल के और उसको मालिश करती है। वो बचपन में जो हमारा पोषण करती है, हम आजन उसके ऋण को तो खैर उतार ही नहीं जा सकता।
0: उतार ही नहीं सकता। दुनिया में 3 ऋण है, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण।
1: जी जी।
0: तो उपनिषद में एक वाक्य पूछा गया, छात्र ने पूछा
1: जी
0: कि गुरुदेव गुरु ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है
1: जी,
0: तो मातृ ऋण क्यों नहीं है
1: जी?
0: तो गुरु ने उत्तर दिया था, देखो बेटा ऋण वो होता है जिसको हम चुका दें।
1: क्या बात है, वाह।
0: मातृ ऋण हो ही नहीं सकता क्योंकि ये चुकाया नहीं जा सकता।
1: वाह वाह।
0: तो
1: हम आजन्म उनके आभारी ही रहेंगे, हाँ, भी नहीं उनके ऋण को चुका सकते।
0: और हम तो बात करते हैं कि अगर भगवान राम जो सबके लोगों के आदर्श भी हैं
1: जी,
0: जब बाबा तुलसी ने उन पर लिखा तो उन्होंने लिखा कि बंदहु कौशल्या दिस प्राची कीरति जासु सकल जग माची। मतलब हम राम के पहले राम की माँ को प्रणाम करते हैं। भाई भगवान से बड़ा कौन, भगवान की माँ
1: उनसे भी बड़ी,
0: उनसे बड़ी वो है। तो उन्होंने कहा बंदहु कौशल्या दिस प्राची, मतलब होता है पूर्व दिशा। और हमारे साथ प्राची जी भी उपस्थित हैं। तो वो शब्द मुझे याद आया तो कि उनके भाई अगर जन्म न लिया होता तो शायद राम इतने महान न हुए होते
1: जी।
0: तो किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के पीछे मुझको लगता है कि माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, और सिर्फ माँ का ही होता है
1: ज्यादा।
0: मतलब उसमें 75% मदर होती हैं और 25% में बाकी सब होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो मातृ दिवस की शुभकामनाएं। तो क्या मातृ पर कुछ गाएंगे आप?
1: अब पहले हम आपको एक चुटकुला सुनाएंगे।
0: चुटकुला सुनाएंगे जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है,
1: थोड़ा सा माहौल और खुशनुमा हो जाए
0: जी।
1: हुआ यूं कि एक PWD के बड़े बाबू थे
0: जी,
1: अब वो रिटायर हो गए थे। अब PWD का रिटायर बड़े बाबू का माने कुछ होता है,
0: बहुत
1: है कि नहीं है। तो कॉलोनी में बहुत बड़ी थी, उसमें रहते थे वो। तो पहुंचे जनरल स्टोर पे, तो जनरल स्टोर वाले से उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, ये सामान हम बता रहे हैं इसको हमें दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है सर, बताइए आप। और नमस्ते मस्ते करके वेलकम किया, भाई बड़े बाबू, बड़े बाबू है तो हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 ग्राम भैया ऐसा करो काजू दे दो, और 100 ग्राम किशमिश दे दो, और 100 ग्राम बादाम दे दो, तीन चीज़ हमें 100-100 ग्राम दे दो। तो उसने कहा अपने सबॉर्डिनेट से कि भैया तौल दो, ये दे दो बाबू जी को, नहीं कहे तो घर पहुँचवा देंगे। कह लगे नहीं नहीं लेते जाएंगे। ये सब चल ही रहा था, इसी बीच एक कार आके रुकी उस जनरल स्टोर की दुकान पे
0: जी।
1: एक वेल मतलब आदमी, अच्छा खासा पर्सनालिटी का, और सुंदर सी कार से उतरा। पीछे एक मैडम का हल्का हल्का चेहरा कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा कि जनरल स्टोर पर पहुंचने से पहले जनरल स्टोर वाले ने उसको सलाम दागा, कहिए साहब क्या सेवा करें। तो उसने कहा ऐसा करो, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो अखरोट और 1 किलो किशमिश। अब ये PWD के बड़े बाबू मामूली हस्ती तो थे नहीं, लेकिन देखा तो इनको अखर गया। और दूर से वो ऐसे ऑर्डर लगाया उसने, मालूम पड़ता है कि तो उसने कहा कि और सुनो गाड़ी में डिक्की में रखवा दो। और उसके जवाब जाके गाड़ी में बैठ गया। और भैया उसने जाके उसके आदमी ने जनरल स्टोर के उस तीनों सामान चारों सामान रख दिया। अब बड़े बाबू तो बड़े बाबू महीन आदमी होते ही हैं, कहने कि भैया ये बताओ ये कौन था जो ये पीछे अभी उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर आपको दिया। कहने के कि ये अरे वो जो मैडम रहती हैं, आप तो 5 नंबर में रहते हो, 25 नंबर उसमें कमरे मकान में वो रहती हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। कहने के ये उनके हस्बैंड हैं, हस्बैंड तो नहीं लग रहे हैं। अरे उन्हीं लैला मैडम कहीं, हाँ हाँ लैला मैडम।
0: अच्छा,
1: तो कहने कि ये उनके हस्बैंड तो नहीं लग रहे हैं। कहें दरअसल बात ये इसमें कुछ राज है साहब। तो कहने लगे क्या? कहने लगे वो ऐसा था कि लैला मैडम के हस्बैंड थे तो नहीं रह गए, तो ये ड्राइवर ने उनसे शादी कर ली।
0: हाँ।
1: तो अब सारा कुछ इन्हीं का हो गया।
0: हाँ।
1: अब ये दोनों मियाँ बीबी हो गए हैं।
0: हाँ।
1: और कार ये ड्राइवर चलाता था तो पहले टहलाता था, अब जो है और शान से टहलाता है। अब बड़े बाबू को जैसे सांप सूंघ गया।
0: हाँ।
1: बड़े बाबू के आगे कोई आगे से निकल जाए, कहने लगे ये 100-100 ग्राम तुम सब वापस ले लो।
0: हाँ।
1: कहने लगे अरे साहब आप नाराज हो गए, क्या बात हमने कुछ कह दिया? कह लगे नहीं नहीं इसको वापस ले लो, हमको भी साला 1-1 किलो दे दो। वो अखरोट था वो भी दे दो। तो उसने कहा सर क्या बात है, अचानक आपने इतनी कृपा की? कहने लगे जाला साहब यही होना है।
0: हाँ?
1: तो हम काहे कंजूसी करें, किसके लिए कंजूसी करें?
0: सही बात है,
1: तो हमारे साथ भी यही
0: मतलब
1: ये समझ लीजिए कि ऐश कीजिए। जमाना बहुत तेजी से भाग रहा है।
0: हाँ, पता नहीं कब आपकी पत्नी जो है वो
1: कल को ड्राइवर के साथ घूमे।
0: ये भाई ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं,
1: बहुत कंजूसी करते
0: हैं। हाँ, जो लोग बहुत कंजूसी करते हैं और अपना पैसा बचा कर रखते हैं वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और मतलब खूब खाइए पीजिए आराम कीजिए। और कहा भी जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पत्नी अच्छी हो तो क्या धन संचय हो, बुरी हो तो भी क्या धन संचय, दोनों में धन को संचय नहीं करना।
1: एडवांस कानून बन रहे हैं साहब, बड़ी फ्रीनेस मिल रही है।
0: तो मतलब मातृ दिवस के अवसर पर ऐसी माताएं जी हाँ, आपने बहुत ही छोटा सा जो क्रैक किया और बड़ा मजा आया इसको सुन करके कि भाई अब 100-100 ग्राम नहीं लेना है,
1: जाइएगा या हम चलेंगे तो भैया 1-1 किलो लिया जाएगा,
0: 1-1 किलो लिया जाएगा। हाँ,
1: कहीं कंजूसी नहीं की जाएगी,
0: कहीं कंजूसी नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। जी हाँ, तो इसके बाद चलते हैं प्राची जी की तरफ और उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। जी हाँ प्राची जी, तो कौन सा गीत पहले, तो आपका खैर मकदम है, स्वागत है इस्तकबाल है।
2: थैंक यू सर।
0: और आज आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं।
2: थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है, तो अपनी मम्मी को कुछ दिया आपने?
2: अभी तो नहीं, अभी तो स्पेशली फील कराना है यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, क्योंकि मार्केट होके जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ लेके जाना है,
0: मतलब केक कटिंग वगैरह कुछ।
2: जी, कुछ सोच रही हूँ अभी।
0: हाँ, मतलब चूंकि हमने इसलिए पूछा कि पीछे पीछे हम भी लग जाए, केक कटेगा तो थोड़ा सा हमको मिल जाएगा।
1: तो आपको दोनों जगह चलना पड़ेगा, मेरे यहाँ भी हो इनके यहाँ।
0: हाँ जी, हम दोनों जगह जाएंगे।
1: तैयार हो जाइए,
0: हम तैयार है। तो फिलहाल क्या आप तैयार है?
2: सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे आप सभी को
0: जी,
2: सारी मम्मी लोगों को जो हम लोगों को इतने प्यार से बड़ा करती हैं
0: जी।
2: तो उन्हीं के लिए एक प्यारा सा गाना है, इतनी अच्छी आप लोगों ने सुना होगा ना।
0: हाँ।
2: तो वही सॉन्ग है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात
1: है, फेमस सॉन्ग है।

अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख।

0: सो मच। क्या बात है भाई, लगता है एकदम साक्षात लता जी। हाँ, डिट्टो डिट्टो, बहुत प्यारी आवाज है इनकी,
1: मिश्री जैसी घोल दिया इन्होंने।
0: वास्तव में जितने अच्छे शब्द हैं उतना ही अच्छा गला है, और बहुत ही प्यारा गाती हैं, बहुत ही प्यारा गाती हैं। कई सारे कार्यक्रम में भी, फोन पर भी गाती हैं।
1: ख्याल बहुत कम लोगों को आता है, बिटिया ने ख्याल किया। हाँ, माँ का, और मदर्स डे है,
0: मदर्स डे है, और
1: मौके पे
0: जा रही है कुछ स्पेशल फील कराने। अच्छा, आज हम लोग जो फादर्स डे होंगे उस समय जो है बड़ा दुख होता होगा कि बताओ आज मम्मी को स्पेशल फील कराया जा रहा है, पापा को नहीं कराया जा रहा है।
1: अरे तो खाती भी तो बहुत है माँ, सुबह शाम खाना, बच्चों की देख रेख, टिफिन, ये वो।
0: हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समय मम्मी तो बहुत खुश होंगी, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होंगे तो वो हस्बैंड सोच रहे होंगे कि यार बताओ आज सब कुछ इनका है।
1: अरे तो उनका भी दिन आता है,
0: फादर्स डे भी आता है।
1: गम ना करिए।
0: नहीं, गम नहीं कर रहे हैं हम, तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मतलब स्पेशल अगर फील कराया जाए तो दोनों से कह जाएगा कि दोनों लोग हाथ पकड़ लो, इसके बाद केक काटो। तुमको लगता है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि चीजें अगर शेयर की जाए तो हमको लगता है बहुत खूबसूरत हो सकती है, है कि नहीं।
1: अब गिफ्ट किसके हिस्से में जाएगा ये प्रॉब्लम।
0: हाँ, गिफ्ट किसके, नहीं गिफ्ट तो माँ का ही होगा। हाँ, अब ऐसा हो नहीं सकता कि साड़ी लेकर जाए तो पिताजी पहले।
1: चलिए ठीक है, मदर्स का है तो मदर्स का ही सही।
0: हाँ, मदर्स का गिफ्ट, मदर का केक दोनों लोग मिलकर काट ले,
1: ये बच्चे भी खाएंगे,
0: मतलब अकेले कितना ही खा पाएंगे, तो नहीं बिल्कुल सही कहा।
2: केक तो मम्मी के लिए काटते हैं, लेकिन सबसे पहले मम्मी हम ही लोग को खिलाते हैं,
1: हम ही लोग को खिला देती है।
0: यही तो माँ का, देखिए एक बात मुझे बचपन की बात याद आई कि विधाता ने जो है वो एक जगह कहीं एक सेंटेंस था रस्किन बांड का कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो ही मेड मदर्स। चूंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता तो उसने माँ बनाई। तो अगर हम अपने बचपन की यात्रा करें तो हमने अपने माँ के गोद में बैठ करके उसका स्तनपान किया, और कभी छोटे बच्चे देखिए तो जब माँ दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो जो बच्चे होते हैं वो पैर चलाते रहते हैं माँ पर। और सोचिए कितना बड़ा हृदय है माँ का, लात खाकर भी इंसान को, बच्चे को दूध पिलाने की जो शक्ति है, जो सहन शक्ति है, वो विधाता ने केवल माँ को दी। बाकी अगर कोई किसी और के ऊपर पैर चला दे, वो चोट खा रही है, मार खा रही है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का पेट भर रही है। इसीलिए तो शायद इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो 9 महीने पुराने हैं माँ के साथ। बाकी सब लोग हमको तब जाने जब हम इस धरती पर आए, लेकिन माँ ने हमको तब से जाना जब हम उसके गर्भ में आए।
1: और बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ का सम्मान करें,
0: सम्मान
1: माँ से ठीक से बोलें, तहजीब से बोलें, उनको थोड़ा समय दें। ये हाँ, बहुत बड़ी आज के दिन गिफ्ट होगी।
0: हाँ,
1: कि जो भी बच्चे जो बहुत व्यस्त हैं वो अपनी मम्मी के पास
0: बैठे हाँ,
1: उनके सर सहलाएं, उनके पैर दबाएं, उनके उनकी उनकी बातों को सुन लें। बस माँ यही चाहती है,
0: माँ यही चाहती
1: है। और प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है एफएम के जरिए से कि सारे बच्चे आज ये प्रण लें कि 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, हम अपनी मम्मी के पास बैठेंगे और उनको शेयर करेंगे और अपनी बातें उनको बताएंगे।
0: जी हाँ, और वर्तमान परिपेक्ष में तो जो हमको दिखाई पड़ता है, माँ पर आपने कहा तो हमको याद आ गया कि लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद।
1: जी,
0: लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें, पूरी करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। और माँ गरीब को क्या चाहिए, माँ कहती है बच्चे से कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी।
1: वाह,
0: ये एक माँ की सोच।
1: आप भी भाई कहाँ से लाते हैं आप मोती समुद्र से?
0: नहीं नहीं, बस आप जैसे लोगों के खुद ब खुद चल के नहीं, तर्ज सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे
1: रखते हैं आप।
0: बस ये आप
1: सही बात है, बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं आप।
0: नहीं, ये नहीं। आप जैसे लोग हैं जिनके दिशा निर्देशन में थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, तो आप जैसे व्यक्तित्व है जिनसे बहुत थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थोड़ा आपसे सीखा, थोड़ा आपसे सीखा। हाँ, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये भी कहेंगे कि भाई जो सोच है उसको बदलिए, क्योंकि हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम सब, पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम सब, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। इस परिप्रेक्ष्य को, इस नज़रिए को चेंज करने की आवश्यकता है, इस कहावत को बदलने की आवश्यकता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये कहावत चेंज हो करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये कहावत अपने आप में गलत है। अगर मैं किसी लड़के को 500 रुपए दूंगा और कहूँ बेटा हमको पापा बोलो, तो क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसका मतलब पिता पिता होता है, वो रुपया कभी बड़ा नहीं हो सकता है। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। चलिए भाई, अब चलते हैं एक छोटे से संगीत में अंतराल की ओर, और आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पर। हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स और भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से संगीत में अंतराल की तरफ। सुनते रहिए और रेडियो गन एस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM, और खास दिन है मदर्स डे।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन। हैप्पी मदर्स डे भाई, मातृ दिवस के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः फिर से। और अब चलते हैं भाई, हाई स्कूल पास हो गई लेकिन बताशा फूटा हुआ भी नहीं खिलाया। एक ऐसी हमारी जो कंजूस श्रोता है वो भी हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले आपका नाम जान लेते हैं।
1: सृष्टि।
0: जी हाँ, तो सृष्टि जी मतलब आप हाई स्कूल पास हो गए और आपने जो है मिठाई नहीं खिलाई।
1: हमने खुद अभी तक नहीं खाई
0: है। मतलब ये तो आप खाइए ना खाइए उसमें नहीं फंसे हैं, आपने खिलाई नहीं।
1: अरे हमको मिलता तो हम यहाँ जरूर लेके आते, जब हमको मिला नहीं तो हम कैसे लेके आए।
0: तो प्रत्येक सोमवार को दुखननाथ मंदिर और मंगलवार को हनुमानगढ़ी पर बैठिए। आपको नहीं, नहीं
1: मतलब
0: मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मतलब आप सोमवार को दुखननाथ मंदिर पर बैठिए, एक थोड़ी सी कटोरी ले लीजिए।
1: कटोरी नहीं है,
0: कटोरी नहीं, हम ला कर दे देंगे आपको। और मंगलवार को हनुमानगढ़ी पर बैठ जाइए। अगले सप्ताह जब आप संडे को आएंगे तो आप पर मिठाई भर के पैसे होंगे। ये गारंटी।
1: इसको ना लेके चली जाऊं?
0: वो कहीं पास हुई है, वो तो फेल हो गई है बेचारे।
2: अरे सर, दो बार पास हो गए।
0: हाँ चलिए।
2: हाई स्कूल इंटर दोनों निकाले,
0: बीकॉम में गड़बड़ाया।
1: पैसे लगा के निकालिए।
0: अच्छा, पैसा लगा के निकालिए। देखिए ये सहेलियां आपस में गुपचुप कर लीजिए। फिलहाल लेकिन क्या है आपके पास खास?
1: शायरी।
0: जी शायरी तो सुनाइए।
1: माँ जब डांटे तो सिर झुका लेना, क्योंकि वह डांट भी दुआ बनकर लगाती है। कभी माँ से आँख मत मिलाना, क्योंकि उनकी आँखों में तुम्हारे लिए कई रातों से रो रो कर काटी हैं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म देकर जीना सिखाया, उसे जीने का सबक कभी मत सिखाना। माँ के बिना जीवन अधूरा है, और माँ का स्थान इस धरती पर कोई नहीं ले सकता है। अगर भगवान से मिलना हो तो माँ के पैरों में भगवान से मिलना, तो माँ के पैरों के नीचे देख लेना, वह स्वर्ग बसता है जो माँ होती है।
0: क्या बात है, माँ के पैर। ये कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। हमसे भी पूछा गया कि माँ के पैरों के नीचे क्या होता है, तुमने कहा जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। फिर उन्होंने अगली बार पूछा और पिता के पैरों में, तुमने कहा जी जूता, क्योंकि हमको तो वही मिला। मतलब जब भी उन्होंने मारा तो जूते और चप्पल से मारा, मतलब हुक कर मारा। तो मतलब पिता के पैरों के नीचे क्या होता है, क्या लगता है?
3: आशीर्वाद।
0: यानी जो भारतीय पिता होता है वो सिद्ध कर सकता है, सिद्ध करने के लिए है कि मतलब हम पिता हैं। और पिता वाला रोल अदा करने के लिए कि मतलब जब हम बचपन में कूटे गए होते हैं, तो जब हम हमारा बेटा होता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है बेटा, हमने तो मार खाई है, बदला इसी जन्म में लेंगे। हाँ, हमारे पिताजी सरस्वती शिष्य मंदिर में अध्यापक रहे, यही मालवीय नगर में। तो एक दिन उन्होंने हमको एक दिन साइकिल पर आके बिठा ला, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। हम रोने लगे, उतने इतने मारे हम रोए। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है भैया, काहे पीट रहे हो? कहीं क्या बताएं, आज साइकिल की घंटी खराब है। हाँ, तो ये चिल्लाएगा तो लोग रास्ता दे देंगे। तो जो है भारतीय पिता जो है वो बड़ा बहुत शानदार पिता होते हैं। मतलब आप में से कभी आप लोगों ने अपने पिता का खाया है कि नहीं? जबरदस्त वाला
1: खाना जरूर खाया, पर ये नहीं खाया, एक ही बार खाए थे। जिससे
4: लड़कियों को नहीं पड़ता है, वैसे
1: पड़ता है। मैं एक बार खाई,
2: मैं रोज खाती हूँ।
1: नहीं, मैं रोज नहीं, मैं छोटी थी तो मुझे एक बार मारा गया। तो मैं सुबह से लेके पूरी रात सोते सोते में भी बहुत सुसुक सुसुक के रोई। तो पापा ने बोला आज के बाद इसको अब मैं कभी नहीं मारूंगा, कितना भी कुछ कर देंगे।
0: नहीं, हमारे पापा तुमको मारते थे,
1: वो खूब मारते थे,
0: वो मार लेते, वो कूट देते थे। हाँ, तो जो कूटने के पश्चात वो फिर तेल वगैरह लगाते थे, और इसके पश्चात जो है वो संतोष स्वीट्स के यहाँ ले जाकर जो है वो राबड़ी खिलाते थे।
3: राबड़ी खिलाते,
0: और राबड़ी वो भी 100 ग्राम। तो फिर हम ये सोचते थे कि अब ऐसी कौन सी गलती करें,
3: दाग अच्छे हैं।
0: अब ऐसी कौन सी गलती करें कि फिर राबड़ी खाने को मिले, क्योंकि जब वो मारते थे तभी खिलाते थे। तो इसलिए हम ऐसा मौका ढूंढा करते थे कि मतलब मारे और फिर हमको राबड़ी खाने को मिल जाए। आप लोग भी ढूंढती हैं कि नहीं?
1: हाँ, पर ढूंढते हैं। मम्मी अब मारती नहीं है, पर पहले मारती थी।
0: अच्छा।
1: जो जो किस्सा था हम बता नहीं सकते।
0: चलिए ठीक है, कुछ सुने कुछ भी है हमारे साथ मौजूद है। जी श्री इंजनी सर जी, तो भाई आपने चुटकुला बहुत अच्छा सुनाया, माँ पर आपका व्याख्यान बहुत ही सार गर्भित रहा। और अब सोचते हैं कि भाई संगीत में भी कुछ हो जाए।
3: सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे तो कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी की है बाहर, समय की बहती धार करती जाती है पुकार। ये मेला दो घड़ी की है बाहर, समय की बहती धार करती जाती है पुकार। हाय हाय, मिलेंगे सवेरे वाली।

0: देंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे। हाय हाय, बनेंगे किसी के हो के जाएंगे, बनेंगे किसी के हो के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।
1: क्या बात है भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्या बात है, और ये गीत हमारे पापा भी गाते हैं।
0: अच्छा
1: सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, क्या बात है। वास्तव में बहुत ही
0: फिल्मांकन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाने का जो। और सही बात है, जिंदगी की असलियत भी यही है। इतनी अच्छी गायिका, इतनी अच्छी शायरा, और आप ऐसे अनाउंसर, वो अंशिका ऐसी वो देखने वाली कंप्यूटर, वो सब एक से एक महारत हासिल है सब। और हम सब एक कहानियाँ बन जाएंगे एक दिन, नहीं कहना चाहिए अभी, लेकिन वास्तविकता तो यही है। कितने वीर बहादुर और अच्छी अच्छी ऐसी हस्तियाँ जिनका सिर्फ आज हम लोग नाम जानते हैं। जाना तो है पर कुछ ऐसा करो कहानी बड़ी ना हो छोटी हो, लेकिन याद की जाए।
1: सही बात है, क्या बात कही आपने। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक बेन जॉनसन की कविता है द परफेक्ट लाइफ,
0: जी,
1: उसमें उन्होंने कहा कि 300 साल बलूत का पेड़ अपनी जिंदगी को जीता है लेकिन जब गिरता है तो बाल्ड, मतलब बिना पत्ती के होकर बेजान होकर गिर जाता है। उन्होंने कहा बट लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाइज दैट नाइट, बट इट इज द प्लांट एंड फ्लावर ओ लाइट, इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, इन शॉर्ट मीजर लाइफ में परफेक्ट बी। उन्होंने कहा कि लिली का जो पौधा होता है कुमुदनी का, वो फूल एक रात के लिए खिलता है, लेकिन वो अपनी सुगंध से वातावरण को भर देता है। उसी प्रकार से 300 साल बलूत का पेड़ जिया लेकिन निरर्थक जीवन जिया,
0: क्या बात है।
1: और कुमुदनी ने एक रात की जिंदगी जी लेकिन शानदार जिंदगी जी। तो छोटी सी जिंदगी भी एक परफेक्ट जिंदगी हो सकती है। 100 साल के बूढ़े इंसान का नाम नहीं जानते होंगे हम लोग, लेकिन 23 साल के भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, उसको हम सभी याद जानते हैं।
0: और एक बात और हम यहाँ पे कहेंगे, ईश्वर ने जब पैदा किया इंसान को तो हर एक आदमी के अंदर एक ऐसा हुनर दे दिया कि जो उसके आनंद के स्रोत भी है, आनंद का स्रोत भी है, और उसको सिर्फ उसी को पकड़ के वो जीवन भर खुश रह सकता है।
1: हाँ।
0: और उसी से उसको दुनिया भी महकानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हर एक आदमी के अंदर वो योग्यता है, बस उसको खोजने की जरूरत है, अपने में उतर के और सोच लो कि हम कौन सी चीज से दुनिया को महका सकते हैं।
1: और ईश्वर, हमको लगता है इंसान पर सबसे मेहरबान। 84 लाख योनियां है, 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर हैं, और इकलौता इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इंडेक्स को, तर्जनी को अपने अंगूठे से मिला सकता है। बाकी योग्यता किसी के पास नहीं है, दुनिया के किसी भी प्राणी के पास नहीं। मतलब जब इंसान को कलम पकड़ना आया, कूची पकड़नी आ गई, पेंसिल पकड़नी आ गई, तब वो इंसान
0: कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा जोड़ दिया आपने। कलम पकड़ना आ गया।
1: हाँ, अगर आप कलम नहीं पकड़ सकते, कूची नहीं पकड़ सकते, तो आप इंसान की,
0: आपका विवेक जागृत नहीं हुआ, और आप वो नहीं कर सकते हो जिसके लिए ईश्वर ने आपको पैदा किया।
1: हाँ, मतलब इसीलिए जो है वो एक शब्द आता है हिंदी में, संस्कृत में द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। तो मैं जब रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उसमें जब द्विज आयो के काज, तो हनुमान जी को द्विज कहा गया, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो भाई बंधन है, इनको द्विज कैसे कह दिया। तो अध्ययन किया हमने तो पता चला द्विज संस्कृत शब्द से आया है, जिसका संधि विच्छेद होता है द्विधन अज, दो बार पैदा होना। तो जो इंसान दो बार पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, द्विज है। पहली बार हम तब पैदा होते हैं जब हम फिजिकली पैदा होते हैं, और दूसरी बार हम तब पैदा होते हैं जब हमको ये पता चल जाता है कि हम क्यों पैदा हुए।
0: अरे वाह वाह, जीवन का लक्ष्य
1: लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप अभी तक, आप एक बार पैदा हुए हैं लेकिन दूसरी बार
0: केवल पैदा हुए हैं,
1: फिजिकली पैदा हुए। तो इसलिए जब हनुमान जी को मुलाकात हो जाती थी राम जी से, तब उनके लिए शब्द इस्तेमाल कहता है द्विज।

0: क्योंकि वो पता चल गया था कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो चलिए भाई चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की ओर। आपका शुभ नाम?
1: रिया।
0: हम ऐसे जानते तो कहते हैं अशुभ नाम लेकिन चलिए रिया जोक्स ऑफ पार्ट, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे?
0: जी हाँ, क्या सुनाने वाली हैं आप?
1: सर माँ के ऊपर शायरी।
0: जी जी सुनाइए।
1: तू रोया ना कर माँ मेरी, दिल मेरा दुख जाता है। तेरी आँख का एक आंसू मुझे बड़ा सताता है। बचपन से तूने हमें हंसना ही सिखाया है, तुझे हंसना नहीं आया है, देख कर खुद ही तुझे दिल दर्द से भर जाता है। तू रोया ना कर मेरी माँ, दिल मेरा दुख जाता है। तेरी आँखों का एक एक आंसू मुझे बड़ा सताता है।
2: क्या आप लोग लिखती हैं? आप खुद लिखती हैं?
1: अभी तो इससे।
2: शाबाश बेटा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
0: वास्तव में कहा भाई माँ के लिए, कहा जा सकता हाँ। है कि ऐ अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। तो वास्तव में भाई दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग वो हैं जिनके पास उनके माता पिता हैं, और सबसे बदनसीब वो हैं जो माता पिता हैं और उसके बाद वृद्धाश्रम में। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आज के ही दिन गोंडा में भी वृद्धाश्रम है, और हमारे यहाँ परंपरा रही कि पिता के एक पुत्र वाक्य कहने पर बेटा सन्यासी हो गया, अब 14 साल वनवास चला गया। वो परंपरा थी, और उस परंपरा के बाद आज हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम है, ऐसे बच्चे भी हो चुके हैं जो वृद्ध माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, और उन स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं आँखों में एक नमी सी आती है कि इस परिस्थिति को, इस परिवेश को बदलना होगा।
2: बिल्कुल,
0: मतलब ये एक सीरियस मुद्दा है, गंभीर विषय है कि आखिर में कौन है वो माँ बाप जो वृद्धाश्रम में है, और क्या बच्चों को अपने माँ बाप की कदर नहीं है? तो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा को अपनाइए, और आज के दिन ये अहद लीजिए, ये सौगंध लीजिए कि आप में से कोई भी अगर किसी भी वृद्ध को वृद्धाश्रम में देखे तो अच्छी बात ये होगी कि अपने घर लाकर जितना हो सके हम उनकी सेवा करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और इससे बड़ा पुण्य हमको लगता है नहीं मिलता,
2: जो भी कर सके।
0: हाँ, जो भी कर सके, छोटा मोटा काम। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो आज अगर हम वृद्धाश्रम जाएँ और अगर हमारे पास जो कुछ भी है, हम 5 रुपए का एक बिस्किट ही खरीद करके उनको दे दें, तो हमको लगता है कि वो अच्छा होगा, एक अच्छा सामाजिक कार्य। जी हाँ, आप चलते हैं भाई। बंदों कौशल्या जिस प्राची, जिसका जो है वंदन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, वो हमारे साथ उपस्थित हैं, और आज के कार्यक्रम पर को इन्हीं से समाप्त करने की हमारी आकांक्षा है।
3: तो आज तो मदर्स डे है, तो मैं मदर मतलब मम्मी के लिए गाना गाऊंगी, और तो कोई गाना नहीं गाऊंगी आज।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ,
3: क्योंकि सब कहते हैं आज मदर्स डे है, मतलब मम्मी का दिन है, पर ऐसा कौन सा दिन है जो मम्मी का नहीं है?
0: क्या बात है, हर दिन माँ का दिन
3: होता है। पर फिर भी आज के इस अच्छे अवसर पे मैं गाना गा रही हूँ।

0: जो है। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। और फिर भाई मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। तो हम चाहते हैं कि चलिए भाई एक दौर वो फिर आए। लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई आज का ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम। हम लोगों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ, बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट के साथ इस शो को किया। और अब समय आ चुका है आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, तो अब अगर आसमान वाले ने चाहा तो फिर अगले रविवार को ठीक 1 बजे पुनः आपसे मिलेंगे यहीं पर रेडियो गणेश 9.6 एफएम पर ठीक 1 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 एफएम, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? आए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 2:08 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी आर चुनौती आ चुकी है आप सभी के साथ लेकर के संडे का आफ्टरनून स्पेशल वाला शो एंटर टॉप 20, जिसमें होती है बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड के गॉसिप्स और ऑफकोर्स 20 गाने बैक टू बैक जिनको आप करते हैं एंजॉय। वैसे तो मैं हर बार प्लेलिस्ट लेकर आती हूँ और आते ही आपको बताती हूँ कि आज हम इन जनाब के ऊपर लेकर आए हैं या फिर इन मोहतरमा की 20 गाने लेकर आए हैं। बट आज होने वाला है एक गेम और मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे कभी म्यूज़िक से मोहब्बत नहीं थी, जिसने कभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने का सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखता है उसके सारे गाने हिट जाते हैं और आज भी उनके गाने सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है जितना शायद उन्होंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने दूर दूर तक म्यूज़िक से कभी अपना रिश्ता नहीं जोड़ा था, जो सोचते थे म्यूज़िक में कुछ नहीं रखा है, म्यूज़िक उनका करियर नहीं है, जिन्हें कुछ कर दिखाना था ज़िंदगी में, जिन्होंने कभी म्यूज़िक की पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने खुद म्यूज़िक को नहीं चुना बल्कि म्यूज़िक ने खुद उन्हें चुना था। वो कहते हैं ना, कभी कभार हम जो सोचते नहीं हैं डेस्टिनी हमें वही लेकर जाती है, और उस दिन अगर वो दूसरी बस पकड़कर एक गलत टर्न ना लेते तो शायद आज वो यहाँ ना होते और हमारे पास इतनी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट ना होती। तो आज उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ आपको। लास्ट में यानी कि शो के आखिर में हम रिवील करेंगे उनका नाम। तब तक के लिए आइए देखते हैं क्या आप गेस कर पाते हो कि हम किन जनाब की बात कर रहे हैं, कौन है वो जिनके आज बैक टू बैक 20 गाने लगातार हिट आप सुनने जा रहे हैं इंडिया टॉप 20 में। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 20 की तरफ और यहाँ से आपके गैसिंग पावर को करते हैं थोड़ा सा तेज़। अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए, प्लस अपने दिमाग में जितने भी गूगल के सर्चेस हैं खोल के रख लीजिए, क्या पता आप कर ले जाएंगे। अगर आप गैस कर लेते हैं कि किन जनाब की बात आज हो रही है इंडिया टॉप 20 में तो चैट बॉक्स में ज़रूर से मैंशन कीजिएगा। इन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 20 और पहला गाना है आपके लिए एक आइटम सॉन्ग बिल्लो रानी। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Gala 99.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 20.
2: हाँ शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
3: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
2: जो भी देख यही पूछे है किसकी बिल्लो।
0: ऋचा शर्मा की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं बिल्लो रानी। जावेद अख्तर की लिरिक्स हैं और आनंद राज आनंद जी, हाँ बताइए अब ये कौन है। प्लस हम आपको बता दें भाई कि आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। स्टे ट्यून्ड

0: हाँ जी, 2007 में रिलीज हुआ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूर। ऋचा शर्मा की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं। जावेद अख्तर के बोल हैं और म्यूजिक किनका है उनके बारे में तो हम आपको बताते ही रहेंगे। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की कहानी जिन्होंने कभी म्यूजिक से मोहब्बत नहीं की थी, जिन्हें बनना था एक आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, म्यूजिक की पढ़ाई ना करने के बाद भी म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने आते ही एक से एक हिट गाने दिए हैं। हम आपको बता दें ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सोचा था कि जब मैं जूलॉजी ले लूँगा यानी कि भूविज्ञान ले लेंगे उसके बाद हम जाएंगे आईएएस ऑफिसर बनने, और आईएएस ऑफिसर अगर नहीं भी बनते हैं तो बैंक में जाएंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे या फिर कोई बैंक की जॉब कर लेंगे। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो म्यूजिक में आए और उनका ऐसा कौन सा गाना है जहां से लगातार उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती गई? भाई हम आपको बता दें ये वो हैं जिनके ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम तक लगा है। लोगों ने ये भी कह दिया कि ये दूसरों के म्यूजिक को चोरी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं और आज सारे गाने आप उन्हीं के एंजॉय करने वाले हैं इंटर टॉप 20 में अपनी आरजे उन्नति के साथ। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 19 की तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है। सॉन्ग नंबर 19 पेश है आपके लिए देसी बॉयज से सुबह होने ना दे। स्टे ट्यून, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आरजे उन्नति के साथ।
1: Radio Ganasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: हां जी, कैरेक्टर रीला आप सुन रहे हैं रेडी फिल्म से जबरदस्त सॉन्ग। और आज हम आपको बताते हैं भाई, बात है कोलकाता की। एक छोटे से घर में रहने वाला एक लड़का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में से जियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके पिता जो खुद एक म्यूजिक टीचर थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संगीत में जाए और संगीत में आकर गलियों में भटकता रहे। पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने और लड़का खुद को देख रहा था एक आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब। प्लान बिल्कुल साफ था, अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो बैंक की नौकरी तो पक्की है। लेकिन तकदीर ने एक ऐसा विज्ञापन दिखाया, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जहां से पूरा प्लान बदल गया। सोचा भी नहीं था कि एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ एक छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट उसकी लाइफ में ऐसा तूफान लेकर आएगा, एक ऐसी चीज़ लेकर आएगा जो उसने कभी सोची ही नहीं थी, जो उसके पिता चाहते नहीं थे कि वो बने, वही वो बनकर दिखाएगा। और ये बात उसके घर वालों को भी नहीं पता चली जब तक उसने एग्ज़ाम नहीं दे दिया। न्यूज़पेपर में देखने के बाद दिल में हलचल थी, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके थे, जाने के लिए तैयार थे और फाइनली बस स्टॉप पर पहुंच भी चुके थे। बस इंतज़ार था तो बस वालों का कि कब बस आएगी और कब उस पर चढ़कर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। और पता नहीं क्यों उस दिन उसके दिमाग में दो ख्याल चल रहे थे, पहला यूपीएससी देना है, दूसरा कहीं और जाना है। वो सोच रहा था कि राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ। और शायद उसने अपना फैसला कर भी लिया था, इसीलिए पहली बस छोड़कर उसने पकड़ी थी दूसरी बस। आगे क्या हुआ बताते हैं, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं उनकी ही म्यूजिक का सॉन्ग नंबर 17 फैंटम फिल्म से अफगान जलेबी। एंड अनिल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने गेस कर भी लिया है कि वो कौन है। और राइट फिलहाल मैं आपका आंसर बाद में रिवील करूंगी जब इस कहानी को कंप्लीट करके वो वक्त आएगा जब हम बताने वाले हैं इनका नाम। वैसे आपने एकदम सही गेस किया है अनिल जी, तो आपका स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 17 इंडिया टॉप 20 की जबरदस्त प्लेलिस्ट के अंदर। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गारासरी 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 17।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं फैंटम फिल्म से अख्तर चंचली जाहिर की आवाज में खूबसूरत सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गान जलेबी एंड हाई बीट सॉन्ग है ऑफ कोर्स। और हम बात कर रहे हैं उस म्यूजिक डायरेक्टर की जिसके बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने गेस कर भी लिया होगा और कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि वो जनाब हैं कौन। FTII पुणे में साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स, ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा गया था रात में। पिता को संगीत से नफरत थी और घर पर डर था कि अगर पता चला कि हम वही करने जा रहे हैं जो पिता नहीं चाहते हैं तो घर से बेदखल तो नहीं हो जाएंगे। अब हो भी सकते हैं भैया, अगर आप अपने सपनों को अचानक से एक नया रुख दे दें तो घर वाले तो हैरान परेशान हो ही जाएंगे कि ये तुम क्या करने लग गए। तुम तैयारी कर रहे थे UPSC की, क्रैक करने जा रहे थे इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम। तुम्हारे दिमाग में कौन सा भूत चढ़ा जिस चीज़ को मैं बचपन से मना करते आ रहा हूँ तुम्हें वही करना है, क्यों अचानक से, क्यों ऐसा क्या हुआ? लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी म्यूजिक आपको खुद चुनता है, आप उसे नहीं चुनते हैं, और इसीलिए शायद इस बार म्यूजिक ने उन्हें चूज कर लिया था। भाई उन्हें अपने घर से बोल कर निकले थे कि जाएंगे UPSC देकर आएंगे और आकर बताते हैं एग्जाम कैसा गया था। बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे, इंतजार बस का कर रहे थे, एक बस आई जो कि छोड़ दी गई, दूसरी आई और जनाब उस पर चढ़ गए। सोच रहे थे अब क्या होगा, अब चढ़ तो गए हैं ना, एग्जाम भी दे दूंगा, आगे क्या होने वाला है, घर पर किस मुंह से जाकर बताने वाले हैं कि हमने UPSC छोड़कर साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। और कमाल की बात यह है, इस एग्जाम से पहले उन्हें यह खबर भी नहीं थी कि साउंड इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कुछ होता है और बॉलीवुड में इसका इस्तेमाल भी होता है। बॉलीवुड में इस तरह का कोई कोर्स लिया जाता है जिसकी बदौलत आप एक म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, आप म्यूजिक डिजाइन कर सकते हैं। ये बात उन्हें कभी पता ही नहीं थी और शायद उनके इतने बड़े सपने भी नहीं थे जो वो सोचते कि हम बॉलीवुड में जा करके एक म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे। फिलहाल वो उस बस में चढ़ चुके थे, एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके थे और अपना एग्जाम भी दे चुके थे साउंड इंजीनियरिंग का। और कमाल की बात यह है कि उनका ये एग्जाम क्रैक भी हो गया, वो पास हो चुके थे। तो घर में क्या होने वाला था बताते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं उससे पहले सॉन्ग नंबर 16 बिल्लू बार्बर से। आप एंजॉय कीजिए मरजानी, हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गाना 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: हां जी, आप सुन रहे हैं बिल्लू बारवर से मर जानी। सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में बोल हैं गुलजार साहब के। करीना कपूर और शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, जब उनका ये एग्ज़ाम क्रैक हो चुका था तो घर पर नहीं बताया गया था कि जनाब हमने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसको आप सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। भाई उन्होंने घर पर सफ़ेद झूठ बोला कि वो जा रहे हैं पुणे पढ़ाई करने इंजीनियरिंग की, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं था हमारा बच्चा UPSC देकर नहीं आया है, हमारा बच्चा देकर आया है FTII में साउंड इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को, और अब वो जा रहे हैं पुणे पढ़ने साउंड इंजीनियरिंग, क्योंकि ख्वाब अब बदल चुका है। अब UPSC क्रैक कर साहब बनकर नहीं बैठना है, अब एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। जो पापा सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं जिस चीज़ से, अब वही करके दिखाना है। भाई वो पुणे पहुँचे साउंड सीखने, पर वहाँ की फिज़ाओं में संगीत ऐसा घुला हुआ था कि जो बच्चा जियोलॉजी लेकर एक IAS ऑफिसर, एक इंजीनियरिंग या एक बैंक की नौकरी करने के ख्वाब लेकर घूम रहा था, अब वो संगीत की तरफ बह चुका था। घर वालों को लग रहा था कि भाई साहब गए हैं पढ़ाई करने इंजीनियरिंग की, और कुछ वक्त बाद यानी कि कुछ सालों बाद मेरा बेटा एक अच्छा इंजीनियर बनकर आएगा। बेटा वहाँ संगीत की दुनिया में यूँ हो चुका था कि अब उसे पता था कि उसको आगे क्या कुछ करना है और कहाँ जाना है, यानी कि बॉलीवुड में एंट्री करने के ख्वाब अब उनके दिमाग में आ चुके थे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं चैट बॉक्स में मनीष शर्मा जी एंड संजय, जो हमें सुन रहे हैं पटना से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। कौन है भाई, कौन है वो जो सपनों में आया? फिलहाल मैं हूँ इंडिया टॉप 20 में एंड आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट, जो कि आज हमारे एक ऐसे डायरेक्टर के ऊपर है जिनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन नाम आपको लास्ट में रिवील किया जाएगा। फिलहाल आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 15 की तरफ। एंजॉय करते रहिए, अल्लाह माफ़ करें, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन। आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: हां जी, आप सुन रहे हैं भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक नीरज श्रीधर की आवाज में। और अब बारी है 1997 में चलने की। जी 1997 में मुंबई की दहलीज पर पहला कदम रखा। जेब खाली थी, हाथ में एक गिटार था। शांतनु और राजकुमार हिरानी जैसे दोस्तों के साथ अपना जिंगल बनाना शुरू किया। फिर वक्त आया साल 2001 का, जिसमें उन्होंने अपना पहला म्यूजिक दिया। फिल्म का नाम था तेरे लिए। म्यूजिक चल गया लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद साथी जीत गंगोली के साथ फिर से एक जोड़ी बनाई गई। सफलता के ठीक मोड़ पर वो जोड़ी भी टूट गई। अब प्रीतम बिल्कुल अकेले हो चुके थे। उप्स, मैंने शायद नाम बोल दिया। फिलहाल जय मां को बता दी, डायरेक्टर बिल्कुल अकेले हो चुके थे। सस्पेंस ये था कि क्या वो अकेले अब सर्वाइव कर पाएंगे। 2004 में एक और फिल्म आती है जिसका नाम था धूम, जिसमें उन्होंने अपना म्यूजिक दिया और वहां से अगेन के करियर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो भाई साहब सबको करना पड़ता है, लेकिन जो स्ट्रगल्स में हार मान जाते हैं सिर्फ वही हैं जो इतिहास नहीं बना पाते। और इसने सोच रखा था, हमारे लड़के ने ये सोच रखा था कि स्ट्रगल से हार नहीं मानेंगे। भले ही लोग आएंगे जाएंगे, म्यूजिक कम पड़ेगा, म्यूजिक हारेगा। कभी कभी फिल्में फ्लॉप होंगी, कभी हीरोज़ की वजह से, कभी म्यूजिक की वजह से। कभी म्यूजिक चलेगा, कभी फिल्म हिट होती है लेकिन सॉन्ग हिट नहीं होंगे। न जाने ऐसी कौन कौन सी बातें सामने आने वाली हैं। इसके बाद भी कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी धूम में पूरी इंडस्ट्री में धूम मचा दी। सफलता मिली और साथ में बहुत सारे विवाद भी उनके पास आए। धुनों को कॉपी करने का आरोप लगाया गया उनके ऊपर। न जाने कितनी उंगलियां उठी, लोगों ने उन्हें म्यूजिक चोर कहा। लोग उन्हें कहने लगे कि ये म्यूजिक चुराते हैं, म्यूजिक चोरी करके ये अपना म्यूजिक देते हैं। बट इनकी तरफ से किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहते थे शब्दों में। ये बताना चाहते थे अपने म्यूजिक से कि चोरी वो नहीं करते। हाँ, हो सकते हैं बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें आपको किसी न किसी से इंस्पायर दिखे, बट वो इंस्पायर करना और किसी की म्यूजिक को चोरी करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब भाई, उन्होंने किसी को जवाब दिया या नहीं दिया ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 13, प्रेम की नैया। Stay tuned. And of course, हमारे साथ जुड़ गई हैं पूजा मिश्रा जी, जो मैं सुनती हैं गोंडा से, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग मैम। अजी जनाब, अजी मोहतरमा, आपकी गुड मॉर्निंग अब हो रही है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। एंड ओके, संजय जी अगेन लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू यू। मेरी तरफ से भी आप दोनों का स्वागत करते हैं हम इंडिया टॉप 20 में। एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 13। इसके बाद आते हैं और बताते हैं भाई, हेटर्स को या फिर कहें तो उन लोगों को जो उन्हें अभी तक म्यूजिक चोर कह रहे थे, उन्हें कैसे जवाब दिया। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास,
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 11.
2: Sexy.

हां जी, तो आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20। मैं हूं आपकी अर्चुनति और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। बात हो रही है म्यूजिक डायरेक्टर की, जिन्होंने लोगों के ताने सुने, स्ट्रगल्स देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जो लोग उनसे कहते आए हैं भाई कि आपने म्यूजिक चोरी किया है, आप म्यूजिक चोर हैं, और लोगों को लगा था कि अब उनकी करियर में, उनके म्यूजिक में सन्नाटा आ जाएगा, मतलब करियर ख़त्म हो जाएगा, पर असली सस्पेंस तो यहाँ था। प्रीतम ने खामोशी अख्तियार की और उसका जवाब दिया अपने काम से। बर्फी, ये जवानी है दीवानी, ब्रह्म राक्षस, एक के बाद एक ऐसे धुनों को पेश किया बॉलीवुड में जिसको सुनकर हर कोई झूम उठा। वो कहते हैं जो लोग बोल कर जवाब देते हैं उनके जवाब कुछ ही लोग सुनते हैं, जो लोग अपने काम से जवाब देते हैं उनके जवाब पूरी दुनिया सुनती है और उनका लोहा भी पूरी दुनिया मानती है। तो भाई इस म्यूज़िक डायरेक्टर ने भी सेम ऐसा ही किया। अगर आप बोल के किसी को सफाई देने जाओगे तो आपको न जाने कितने लोगों को सफाई देनी पड़ जाएगी, इसके बाद भी आप ही गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका काम बोलता है तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती और जो भी आपके खिलाफ होते हैं उनका मुंह अपने आप बंद हो जाता है। इस कहावत को उन्होंने सच करके दिखाया और आज फिर से लोग उन्हें उतनी ही मोहब्बत से देखते हैं, उनके गानों को उतने ही मोहब्बत से सुनते हैं जितना कभी पहले सुना करते थे। तो आप इन्जॉय करते रहिए, ओ यारा ढोल बजा के नाचेंगे, और आप नाचते भी रहिए क्योंकि हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 11, 11 ढोल बजा के, और बजाते रहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि बजाना ही हमारा काम है। फिलहाल हमारे साथ मनीष शर्मा जी, पूजा जी और संजय पन्ना जी जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से आपका भी बेहद स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में। आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 10 की तरफ, और सॉन्ग नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट होगा आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग्स का पूरा टाइम, यानी कि एक घंटा अब आपके लिए रोमांटिक गाने। अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे हाई बीट सॉन्ग, जैसा कि हमारे शो में होता ही है। 10 गाने होते हैं हमारे हाई बीट यानी कि एनर्जेटिक, एंड 10 गाने होते हैं सूथिंग एंड रोमांटिक। जिस तरह से वक्त ढलता है, शाम आती जाती है, उस तरह से हमारे म्यूज़िक की स्पीड या फिर कहें तो म्यूज़िक का बीट भी डाउन होता जाता है। तो आप इन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 10 धूम से, शिकदम शिकदम, और ऑफकोर्स नाचते रहिए, डांस करते रहिए, इन्जॉय करते रहिए, वाइब करते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं इंटर टॉप 20, 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गुना शहर की धड़कन पर आरजी के साथ।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 10.

0: आशिक दो। आप सुन रहे हैं शान और श्रेया की आवाज में खूबसूरत सा गीत, और हम आपको बता दें बोल है भाई समीर साहब के। आप सुन रहे हैं टॉप 20, मैं हूं आपकी आरजी उन्नति। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM यही गोंडा शहर की धड़कन पर। भाई वक्त है बॉलीवुड न्यूज की तरफ चलने का, क्योंकि आज हम अपनी कहानी में इस तरह से खो चुके थे कि हम ये भूल ही गए कि आज की थीम के अलावा भी बॉलीवुड की कुछ न्यूज आपका इंतजार कर रही है। हम आपको बता दें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये कंफर्म हो चुका है कि दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करने आ चुकी हैं सई पल्लवी, और किस फिल्म में कर रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। कल की 2898 एडी के सिक्वल जो आने वाला है उसमें अब आपको दीपिका पादुकोण की जगह पर सई पल्लवी नजर आने वाली हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रही हैं। फिलहाल आप बताइएगा क्या दीपिका पादुकोण की एक्टिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी थी, या आपको पसंद है सई पल्लवी और आप उन्हें देखना चाहेंगे एक माइथोलॉजी या फिर कहें तो एक ऐसी फिल्म में जिसका इंतज़ार आप काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो दीपिका पादुकोण के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अब आप बताइए कि आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, हम आपको लेके चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग है सॉन्ग नंबर 9 अजर फिल्म से, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। भाई ये गाना उनको डेडिकेट कर दीजिए जिन्हें आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप अपनी मम्मी को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनसे भी तो आपको मोहब्बत है। वो अलग बात है कि मम्मियों से कहते हुए डर बहुत ज़्यादा लगता है, हालांकि मम्मियाँ सबकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। और आज मदर्स डे है तो भाई ज़रा थोड़ा सा स्पेशल उन्हें फील कराइए, उनका पसंदीदा खाना बनाकर या फिर उनका पसंदीदा कोई सामान लाकर उन्हें ज़रूर से दीजिए। वैसे तो वो हमेशा आपसे कहेंगी कि नहीं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस खुश रहो, मैं ऐसी मैं खुश हूँ, लेकिन उनको खुश करना आपका काम है। और आज का स्पेशल डे उनके नाम है तो भाई उनके लिए कुछ हो जाए, साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए। एंटर टॉप 20 मिलते हैं इस गाने के उस पार यानी कि अगली वाली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 9।

अजर फिल्म से आप सुन रहे हैं इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। इस खूबसूरत सी आवाज़ को तो आप पहचानते ही होंगे भैया। जी हाँ, आवाज़ थी अंतरा मित्रा जी की और अरिजीत सिंह की। फिलहाल अरिजीत सिंह को हम काफ़ी ज़्यादा

मिस करते हैं जब से उन्होंने बॉलीवुड में गाने बनाने से छोड़ दिया है। हम इंतज़ार करते रहते थे अरिजीत सिंह के गाने कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अब ना है तो भाई ना सही। खैर आइए लेकर चलते हैं हम आपको एक और न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ ये आ रही है कि जाह्नवी कपूर, सुनने में आ रहा है कि वो शाहिद कपूर के साथ आने वाली हैं अपोजिट में, और एक नई कॉमेडी फिल्म आपको नजर आएगी जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर 2026 में। तो शाहिद कपूर और जाह्नवी कपूर को एक साथ देखने के लिए तैयार रहिएगा, वो भी एक कॉमेडी वाली फिल्म में। और ऑफकोर्स शाहिद कपूर काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, इस बात का अंदाज़ा हर उस इंसान को है जिसने भी शाहिद कपूर को उनकी पुरानी फिल्मों में देखा होगा। कबीर सिंह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कबीर सिंह से पहले आपने अगर उन्हें किसी भी फिल्म में देखा है तो आपको पता है कि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, प्लस उनकी कॉमेडी के भी न जाने कितने लोग फैन हैं। फिलहाल शाहिद कपूर की आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है ये चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। लव आजकल फिल्म से आप सुनते रहिए शायद, और शायद हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, यानी कि कन्फर्म मिलते हैं। तो एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट। मैं हूँ आपकी आर चुनती, और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यही गोरा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानसली।

0: आपको क्या लगता है कि थ्री इडियट की जगह पे फोर इडियट्स कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भाई सुनने में आ रहा है विकी कौशल थ्री इडियट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, और अगर विकी कौशल ज्वाइन करते हैं तो थ्री की जगह पर अब फोर इडियट्स होने वाले हैं। विकी कौशल की एक्टिंग को कोई भी तोड़ नहीं है, उनकी एक्टिंग आपने बायोग्राफी में देखी है जो कि काफ़ी लाजवाब होती है। बट इस वक्त सुनने में आ रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म और आमिर खान की थ्री इडियट सिक्वल में उनकी एंट्री होने वाली है, और अगर होती है तो क्या थ्री इडियट फोर इडियट बन जाएगी, और अगर फोर इडियट बन जाती है तो क्या स्टोरी वैसी ही रहने वाली है या फिर कुछ अलग होने वाला है? क्योंकि इस बार हमने जब तारे ज़मीं से सितारे ज़मीं पर देखे थे तो थोड़ी इमोशनल स्टोरी थी, लेकिन तारे ज़मीं से थोड़ा अलग था, हालांकि स्पेशली डेडिकेटेड था बहुत सारे ऐसे बच्चों के ऊपर जिनको हम शायद सोसाइटी में किसी काबिल नहीं समझते। हमें लगता है कि अगर वो नॉर्मल नहीं है तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसको बिल्कुल गलत प्रूफ करता है तारे ज़मीं और सितारे ज़मीं पर। फिलहाल थ्री इडियट जो कि एक ओजी, एक लेजेंडरी और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसमें अगर विकी कौशल की एंट्री होती है और एक नया सिक्वल आता है तो क्या वही कॉमेडी, वही स्टोरी लाइन रहने वाली है या फिर कुछ डिफरेंट तड़का इस बार लगने वाला है बॉलीवुड में? आप अपने ख्याल बताइए कि आप थ्री इडियट्स का इंतज़ार कर रहे थे या फिर फोर इडियट्स आपको चल जाएंगे अगर स्टोरी बेहतर हुई तो। एंड इसी के साथ सुनते रहिए सॉन्ग नंबर 7 आपके अपने शो इन द टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट में। गाना है तुम मिले, फ्रॉम तुम मिले का टाइटल ट्रैक है ऑफकोर्स। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गारासरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

नीरज श्रीधर की आवाज में आप सुन रहे हैं आपका सॉन्ग नंबर 7 तुम मिले तो मिल गया ये जहां। लिरिक्स कितनी ही खूबसूरत है। फिलहाल आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर सिक्स की तरफ और आप सुनने जा रहे हैं गैंगस्टर फिल्म से तू ही मेरी शब है। इन्जॉय करते रहिए केके की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को, इमरान हाशमी के ऊपर फिल्माया गया गाना। एंड फीमेल कौन है ये आप बताएंगे चैट बॉक्स में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

साहब की आवाज़ में आप इंजॉय कर रहे हैं पलक देखूं राम गरम मसाला। और वक्त है हमारे अगले गाने की तरफ चलने का। अगला गाना है आपके लिए एक दिन तेरी राहों में बाहों में आऊंगा। इंजॉय करते रहिए इस प्यारे से गाने को। हम मिलते हैं अगले सॉन्ग केके की आवाज़ में लेकर के ओ मेरी जान फ्रॉम लाइफ इन

0: लाइफ इन अ मेट्रो और आप सुन रहे हैं ओ मेरी जान केके की आवाज में। भाई केके की आवाज वन ऑफ माय फेवरेट साउंड है, वन ऑफ माय फेवरेट वॉइस है, वन ऑफ माय फेवरेट मेलोडी है। रीजन पता है, केके की आवाज जब भी हम सुनते हैं तो महसूस होती है, फील होती है इमोशंस, जज्बात और गाने का हर एक शब्द आपको लगता है ये आपके लिए ही है और केके ने स्पेशली आपके लिए गाया है। फिलहाल अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं खुद को मेन कैरेक्टर समझ लेती हूं और सोचती हूं ये केके ने जो गाना गाया है ये मेरे लिए ही गाया है और मैं हूं अपनी फिल्म की हीरोइन। और गीत का डायलॉग मारते हुए हम कह देते हैं कि मैं तो अपनी फेवरेट हूं और होना भी चाहिए। तो भाई आइए चलते हैं हमारे आखिरी के अगले गानों की तरफ और पहला गाना माफी लेकर आए यानी कि सॉन्ग नंबर 2 आवारापन से मुस्तफ़ा की आवाज़ में तो फिर आओ, और सॉन्ग नंबर 1 जो हमारे इस म्यूजिक डायरेक्टर का एक ज़बरदस्त हिट सॉन्ग है जिसके बाद उनके करियर ने वो ऊंचाइयां छुई थी जिसका आज भी सबको अंदाज़ा है। गाना है धूम मचा ले सुनिधि चौहान की आवाज़ में। जब ये गाना हिट हुआ था उसके बाद हर कोई प्रीतम को जानने लगा था, समझने लगा था और लगातार प्रीतम ने फिर 100 हिट गानों का रिकॉर्ड भी बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आज प्रीतम चक्रवर्ती की और आपने आज उन्हीं के सारे गाने सुने। एक ऐसे कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने आपके लिए एवरग्रीन सॉन्ग्स दिए हैं स्पेशली केके के साथ मिलके। भाई कहते हैं जब केके, इमरान हाशमी और प्रीतम एक साथ आते हैं तो गाने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और उनके सारे गाने हिट होते हैं। इमरान हाशमी कोई डांस नहीं करते, सिर्फ वॉक करके अपने सॉन्ग्स को हिट कर देते हैं। केके अपनी आवाज़ से लोगों का दिल छू लेते हैं और बाकी बात है वो है प्रीतम की। तो प्रीतम का म्यूज़िक हर किसी को इतना पसंद आता है कि सुबह, दोपहर, शाम, आज का वक्त हो, 2010 का वक्त हो या आने वाले कुछ और साल होने वाले हों, हर कोई प्रीतम का दीवाना ज़रूर रहेगा। हालांकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्हें काफ़ी आरोपों से भी गुजरना पड़ा लेकिन इसके बाद भी उनके म्यूज़िक में थोड़ी भी कमी नहीं आई। उन्होंने अपने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों का दिल जीते रहे और आज एक मुकाम है उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो प्रीतम चक्रवर्ती की आप बात कर रहे थे और आप सुन रहे थे उन्हीं के 100 गानों हिट में से 20 गाने जो आज मैं आपके लिए लेकर आई थी छांट कर, ढूंढ कर, सर्च कर कर। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे आज का शो। आपको जैसा भी लगा उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर। आपकी आज मौजूद है लगातार आपके साथ सनी के स्पेशल वाले प्रोग्राम्स में। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Gana 89.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 2.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहां बुलाया।
4: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
4: जी।
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
4: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
4: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं, तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
4: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
4: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
5: जी आज दीदी।
4: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
4: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
4: जी,
5: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
4: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
5: जी दीदी
4: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
5: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
4: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: हां जी, तो कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 4:13 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान असली। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट, और हम लेकर आए हैं क्लिनिक ज्ञान असली आपके लिए स्पेशल आपका हेल्थ वाला प्रोग्राम सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की एक खूबसूरत सी पहल जिसमें बात होती है आपके स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य पर ही हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे।
1: जी हाँ, और हमारी चर्चाएं अक्सर करके स्वास्थ्य पे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, और कई बार हम लोग मतलब उससे हटके भी अगर किन्हीं चीज़ों पे प्रयास करते हैं तो वो चर्चाएं घूम घुमा करके स्वास्थ्य पर ही आ जाती हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं राहुल विश्वकर्मा और आ गए हैं आप सभी के बीच लेकर के आपका पसंदीदा वाला शो। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, हमें मैसेज करिए, हमारे चैट बॉक्स में आइए या हमें कॉल करिए। अपनी समस्याओं को हमसे आप पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का।
0: हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट 6393316429। और ऑफ कोर्स आपको चैट बॉक्स मिलेगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको मिलती है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM के नाम से रेड एंड ब्लैक आइकन में, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं चैट बॉक्स के जरिए। और ऑफ एयर काफ़ी सारी बातें करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक भी हमारा होने वाला है वेट मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मिथ्स को लेकर के हम आए हैं जो बहुत सुनने में आता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डाइट या स्पेशल रूटीन फॉलो करते रहते हैं और फिर भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं दिखता, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखता जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी आती हैं कैलोरीज, और उसे ही आप काउंट नहीं करते हैं। डाइट आप दुनिया भर की फॉलो कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कैलोरीज जो हैं, फैट जो है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली तब जब आप वेट लॉस कर रहे हों। ऐसे कंडीशन में फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरीज का एक बहुत बड़ा गेम होता है, और मुझे लगता है कि आज के इस शो में हम उन्हीं सब चीज़ों पे, उन्हीं सारे मिथ्स पे और उन्हीं सारे बारीक फैक्टर्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज उन्नति मैम हमारे लिसनर्स को किन चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए अपना टॉपिक चूज़ करके लाई हैं।
0: फिलहाल आज हम जिसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसके लिए हमारे लिसनर्स को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल उनके ही होंगे मेनली, और मेरे सवाल तो आपके पास है ही
1: नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, और
0: चलिए मेरे दिमाग में है, मैं आपको बता दी हूँ, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेसले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञानसली में। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। राहुल विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट हैं।
2: जी हाँ, और आज हम चर्चा करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट की कुछ फैक्ट्स पर, जो उसके मिथ्स हैं, जो उसके बारे में चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी समस्याएँ जो आपके वेट से, भारी वजन से या इन सभी समस्याओं से रिलेटेड हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा सर, जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमेशा वेट लॉस ही करना है, बट मुझे लगता है वेट मैनेजमेंट में वेट गेन करना भी आता है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो।
2: बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कि एक जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए आपके जेंडर और आपके हाइट के अकॉर्डिंग, उस जो आइडियल बॉडी वेट है, उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करना ही वेट मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वेट इंक्रीज करना चाहिए, और अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको वेट लॉस करना चाहिए, बट आपको आइडियल वेट के आसपास ही अपना बॉडी वेट रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इस वक्त जो हमारी लड़कियां हैं जो हमें सुन रही हैं, उनका पता नहीं क्या एक सपना हो रखा है कि हर किसी को स्किनी होना है, स्लिम होना है, बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे उन्होंने टीवी पर मॉडल्स देखी हैं।
2: एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ 5-7 या 10 सालों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और स्पेशली जो एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें तो पता नहीं क्या ब्यूटी के अलग ही स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा चाइना जैसे देशों में अब ऐसा हो रखा है कि एक A4 साइज के पेपर के अंदर अगर आपका बॉडी आ जाता है, यानी कि आप उसके पीछे छुप जाते हो, तो आप एक आइडियल वेट में हो, अदरवाइज आप नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचिए A4 साइज का पेपर कितना बड़ा होता है, और उसके अंदर अगर आप हाइड हो रहे हो, आपकी कमर उतने में आ रही है, तो आप एक आइडियल वेट है आपकी।
2: बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स अभी पिछले 5-7-10 सालों में सेट किए गए हैं, जो भी हमारा जो ये फैशन वर्ल्ड और जो भी इन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, आई डोंट नो कि कौन इन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है।
1: एक्चुअली करता कोई भी नहीं है, बस मुझे लगता है कोई एक इंसान होता है जो
2: वो लहर, हाँ,
1: कहीं ना कहीं अपने एग्जैक्ट जो गॉड गिफ्ट उनको मिल रहा होता है, जिसमें वो 18% बॉडी फैट के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को देख के लगता है एक्चुअल आइडियल वेट ये होता है। बल्कि कई बार महिलाएं सिर्फ 30% बॉडी फैट पर आकर अपना पूरा जो उनका जो मंथली साइकिल होती है, उनका जो डेली लाइफ होता है, अपना पूरे दिन का काम कर पाती हैं, बट वो अपना बॉडी फैट कम करने के चक्कर में, 18% करने के चक्कर में अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, अपने हेयर हेल्थ, अपने हार्मोन हेल्थ सब की बैंड बचा लेती हैं।
2: एग्जैक्टली, और उन्हीं चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हेल्दी स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल करते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि उन्नति मैम अगला क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं।
1: सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैंने तो आपको बता दिया कि आइडियल बॉडी फैट फीमेल्स के अंदर 28% तक माना जाता है, क्योंकि हर एक बॉडी अलग है, हर एक बॉडी का हर एक काम अलग है
2: जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या 28% इम्पॉर्टेंट है या 18% ही इम्पॉर्टेंट है? क्या मेल्स में भी ऐसे बॉडी फैट फैक्टर होते हैं, तो वो कितने होते हैं, ताकि हमारे मेल्स भी समझ सके कि जीरो फैट पर जिंदगी नहीं चलती है।
2: देखिए बिल्कुल, जैसे फीमेल के लिए ये स्टैंडर्ड एक 28% पे सेट है, चूँकि मेल बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक कैलोरीज रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट, ये फीमेल बॉडी के थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं जो चूँकि बॉडी वेट उनका ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी डेंस ज़्यादा होती है, तो उनके बॉडी में फैट स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कहें कि मेंस के लिए जो मतलब पुरुषों की बॉडी के लिए जो हमें एक आइडियल रिक्वायरमेंट परसेंटेज चाहिए होता है फैट के लिए, वो अराउंड 32-35% होता है, 32-35%। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जैसे आपका जो पहला प्रश्न था कि क्या 28% ही हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है या फिर 18% पे भी हम सेम एज इट इज की काम कर सकते हैं। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में हर चीज़ का अपना एक प्लेस होता है और हर चीज़ का अपना एक रोल होता है। हमारे बॉडी से जो पसीना तक बाहर आता है, हम जो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा, जो लेटरिंग पेशाब, यूरिन वगैरह भी बाहर आता है, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के मैकेनिज्म का हिस्सा हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि पसीने के बारे में हम लोगों ने पिछले बार में चर्चा की थी कि वो एक हमारे बॉडी का टेम्परेचर मैनेजमेंट का सिस्टम है, यूनिट है, और अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड कर सकता है, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का हमें शिकार होना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह जो फैट होता है हमारे बॉडी में, उस फैट की भी कई सारी डिफरेंट भूमिकाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फैट जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है।
1: अब ये कहाँ मौजूद होते हैं?
2: हाँ, अब ये वैसे तो हमारे ऑल ओवर बॉडी में डिस्पर्स्ड होते हैं, बट आउटर पोर्शन पे, बॉडी के आउटर पोर्शन, आउटर लेयर्स पे ये होते हैं, बट जो सबसे डेंस मात्रा में पाए जाते हैं ये अराउंड थाइज, अराउंड स्टमक, ये जो हमारा बेली होता है,
1: यानी कि आपकी लोअर बॉडी के आसपास ज्यादा फैट एब्जॉर्ब होता
2: है। बिल्कुल बिल्कुल, कमर से थोड़ा सा ऊपर और कमर से थोड़ा सा नीचे, ये इसका आइडियल लोकेशन है जहाँ सबसे डेंस मात्रा में ये एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको फैटी टिश्यूज भी बोलते हैं। और ये ही वो काम करते हैं कि फैट को अपने अंदर स्टोर करके, डिसॉल्व करके, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये स्टोर करके रखते क्यों हैं। देखिए, जैसे पिछले भी कई सारे सेगमेंट्स में मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि जैसे आप किसी भी गाड़ी में तेल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, वो गाड़ी कुछ दूर तक चलती है, जो भी 100, 200, 500 किलोमीटर का फ्यूल आपके पास है, उसके बाद जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है, अगर आपने रिफिल नहीं कराया तो फ्यूल ख़त्म होने के बाद इंजन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। बट ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह से भी भूखे हैं तो शाम के टाइम पे आपके बॉडी में इतनी एनर्जी है कि आप उठ के यहाँ से चल के कहीं जा सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना ढूंढ सकते हैं। तो वो उस टाइम पे, जब जिस टाइम पे हमें फूड नहीं मिल रहा होता है, हम भूखे होते हैं, बट फिर भी हमें चलना होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करना होता है, जैसे
1: डेली मेंटेनेंस की जरूरत होती
2: है, डेली मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और जैसे जो एनर्जी है, जो कैलोरीज हैं, वो हमको एवरी टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हम सो भी रहे हैं उस टाइम पे भी हमारा हार्ट जो है वो कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है।
1: मुझे लगता है ना उस वक्त थोड़े ज्यादा कैलोरीज लगती है, क्योंकि एक तो हम सो रहे होते हैं और हमारे सोते वक्त हमारी बॉडी खुद को रिकवर करने का काम कर रही होती है।
2: एग्जैक्टली, तो इन्हीं चीजों की वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमें कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर जब हमें फूड अवेलेबल नहीं होता है, खाना अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारी बॉडी हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिटेड फैट को ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो है हमारे स्किन के आउटर पोर्शन पे, मतलब जो डर्मा है, एंडोडर्मिस है, मतलब स्किन के ऊपरी जो परत होती है उसके नीचे की जो परतें होती हैं उसमें एक पतली फैटी लेयर भी होती है। ठीक है, हर जगह के स्किन में जितना पतला स्किन है उतना पतला फैटी लेयर है, बट फैटी लेयर तो है। तो वो जो फैटी लेयर होती है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल कि मतलब हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, और स्पेशली मतलब टेम्परेचर लॉस होने से रोकती है। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर कम है हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर से, तो वो टेम्परेचर लॉस होने से वो फैटी लेयर उसको रोकती है। जैसा कि आप पोलर बियर्स में देख सकते हैं कि वो 6 महीने खाना खाते हैं और 6 महीने गुफाओं में वो स्लीप मोड में आराम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाता है एडिपोज टिश्यूज़ के वजह से, ताकि वो 6 महीने का जो फैट है वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं।
1: और इसीलिए मुझे लगता है बायोलॉजी की सब्जेक्ट में जब आप छोटे होते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि जिनका बॉडी मास ज़्यादा होता है उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड कम लगती है, और जिनका बॉडी मास कम होता है उन्हें ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी कम लगती है।
2: जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही रीज़न है कि दुबले पतले लोग नॉर्मल लोगों की अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा ठंडी फील करते हैं। तो इन चीज़ों में फैट की बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, जब हम उस आइडियल फैट परसेंटेज को भी लॉस करने लग जाते हैं। जब हम उस आइडियल फैट परसेंटेज को लॉस करने लग जाते हैं तो हमारे बॉडी की ये कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं। जैसे हमारे बॉडी का वेट, टेम्परेचर सिस्टम, टेम्परेचर मैनेजमेंट इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा जो लोग जिनके बॉडी में बहुत लेस फैट परसेंटेज अवेलेबल है, जैसे आपने बताया जो स्किनी लड़कियां हैं 18% पे लेकर के आना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तो उस कंडीशन में जब आप अपने बॉडी फैट को इतना ज़्यादा कम रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको जब आप हंग्री होते हैं या जब आप नहीं भी हंग्री होते हैं तो मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है, या अगर आप भूखे हैं तो आपको चक्कर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप हंगर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, भूख लगती है तो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में अगर आइडियल फैट परसेंटेज आप उससे काफ़ी ज़्यादा लो रख रहे हैं तो इनका सामना आपको करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो आपकी डिस्टर्ब होती है, वो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि आपके ओवरीज को भी मेंटेन करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, और जब आप फैट कम करते हैं तो आपके पीरियड्स फिर डिले होते हैं, और आप सोचते हैं यार हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, पीरियड्स डिले क्यों हो रहे हैं।
2: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब आपके जो हार्मोन रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं और भी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव आपको थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिलता है।
1: अब चलिए चलते हैं उन मिथ्स की तरफ जो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से फैले हुए हैं और हर कोई उनका शिकार हो ही जाता है। सबसे पहले जो हर इंसान ये सोचते हैं कि हम 16 घंटे कुछ ना खा करके 8 घंटे में सब कुछ खाएंगे और हमारा वज़न कम हो जाएगा, जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, जो कि मुझे दूर दूर तक नहीं लगती।
2: बिल्कुल। ऐसा स्पेशली कई सारे पेशेंट्स मतलब हमारे लोकल लाइफ में भी ऐसा हमको पेशेंट्स मिले हैं जिनका ये कहना होता है कि हम 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर एक बार ही खाना खाते हैं लेकिन तब भरपेट खाते हैं। देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहीं पे कर रहे होते हैं,
1: और वहाँ पर भी आप अच्छा खाना नहीं खाते, आप हेल्दी चीज़ें नहीं लेते हैं वहाँ पर, फिर आपको क्योंकि आप बहुत देर से अपना हंगर टॉलरेट कर रहे थे तो आपको जो मिलता है समोसे कचौड़ी पकौड़ी आप सब खाते हैं।
2: और कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा करने वाले लोगों में मैंने देखा है कि कई बार वो ऐसा करते हैं कि वो दिन का खाना स्किप करके वो रात में खाना खाते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अनआइडियल तरीका होता है, जैसे स्पेशली वो लोग जो दिन का खाना मिस करके और रात में खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, उनको मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा, जब भी आप दिन में खाना खाते हैं ये मतलब बहुत सारे जो हेल्थ रेगुलेटरी के गाइडलाइंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां रिसर्च होती हैं वहां से भी ये गाइडलाइन आई है कि आपको सुबह का खाना, दिन का खाना भारी करना चाहिए, रात में हल्का खाना खाना चाहिए,
1: क्योंकि रात में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। अगर आप रात में भी वॉक वगैरह कर रहे हैं, खाना खाने थे 2-3 घंटे तक घूम रहे तो आप ऑफकोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज फिर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है।
2: बिल्कुल। अगर आपकी रात की फिजिकल एक्टिविटी कम है, जो कि यूजुअली सबकी होती है, दिन में वो काम करता है,
1: कोई होता है जो निकल जाते हैं खाना खाने के बाद की एक अच्छी वॉक करके।
2: हाँ ठीक है, वो अच्छी हैबिट है, हेल्दी डाइट है और हेल्दी हैबिट है, मुझे लगता है कि उसका पालन करना चाहिए। और जो भी लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब दिन का खाना स्किप कर रहे हैं, कम खा रहे हैं और रात में खाना खा रहे हैं, देखिए वो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं होता है। उस टाइम पे आपकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फैट होता है, जो कंटेंट्स होते हैं, उनको स्टोर करती है, क्योंकि उनका कंजम्पशन नहीं हो पाता है, बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग जो लंबे समय तक फास्टिंग रखते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, आपका जो स्टमक होता है, ये कमज़ोर होता है और डैमेज भी होता है,
1: प्लस ये आप ही की चीज़ों को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपके ब्लड सेल्स कम बनेंगे जिससे आपको एनीमिया होगा और थकान होगी वो अलग।
2: अब मैं बहुत से लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर वो ढेर सारा खाना खाते हैं, जब आप लंबे समय तक हंग्री रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो उस समय पे भी आपके जो पेट होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है
1: जी।
2: जब स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होता है, अंकुचन प्रकुचन की प्रक्रिया होती है, तो उससे एसिड रिलीज होता है, और जब उस एसिड के पास कोई मीडियम नहीं रहता है उसको डिसॉल्व करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, तो वो हमारे पेट की जो अंदर की इनर लाइनिंग होती है वो उसको ही डैमेज करने लगता है वो एसिड, क्योंकि वहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं है खाने में मिक्स होने के लिए, तो जो हमारे पेट की इंटरनल लाइनिंग है उसको जा करके एसिड वो मतलब ब्रेक डाउन करने लगता है, तोड़ने लगता है, गलाने लगता है, और जिससे हमको पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं होती हैं, खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से पे दर्द होना, ठीक है, खाना खा लेने के बाद पेट में दर्द उठ जाना, मतलब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है हमारा, इसकी वीकनेस, इसकी कमजोरी और इसके डैमेज का कारण बनता है बहुत लॉन्ग टर्म तक फास्टिंग।
1: प्लस हम आपको बता दें कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिसके बाद फिर आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको होती हैं, और ये महीनों चलती हैं। और जिस काम के लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है और उसे लगता है कि एक ही वक्त का खाना मिलेगा, तो मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर दो।
2: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक हंग्री रहें। शॉर्ट मील्स लें, छोटे खाने लें, छोटा आहार लें,
1: बेस्ट थिंग है।
2: बिल्कुल, और उसमें जो मतलब हाई फैट के और हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं उनको कट डाउन करना ये विकल्प होता है, ना कि आप लंबे समय तक कुछ भी ना खाएं।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है ना अगर किसी को वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो उसको मॉडल्स की कैटेगरी को छोड़ के एथलीट की कैटेगरी में आना चाहिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स वुमेन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है एंड उनके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं कि हमें तो रैम वॉक वाली मॉडल की तरह बनना है, फिर आप अपने फैट को डिस्टर्ब करते हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, एंड लास्ट में डिस्टर्ब होती है आपकी पूरी हेल्थ।
2: अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी नहीं जान पाता हूँ कि लोगों को ऐसा कैसे लगता है कि वो जो एकदम दुबली पतली सी लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली फीमेल्स में ऐसा ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इसके पीछे पागल रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी दुबली पतली एकदम लकड़ी सी लड़कियाँ अच्छी हाँ मतलब अच्छी किसको लगती होंगी, वो लकड़ियाँ ही हैं, वो अच्छी किसको लगती होंगी। मुझे लगता है अपने आप को देख करके वो मिरर में उन्हें लगता होगा कि हम ऐसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक आइडियल हाइट के साथ एक आइडियल वेट का होना इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया में स्पेशली अगर आप किसी बाहर की सीरीज़ को देखकर आपको लग रहा है कि इंडिया में भी सेम होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी वेट आपकी ज्योग्राफी पे भी मैटर करता है।
2: बिल्कुल, देखिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बॉडी का शेप, बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी जो बनावट है, ये कहीं ना कहीं जियोग्राफी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो स्पेशली आप, अच्छा मुझे लगता है कि ये बीमारी भी तमाम बीमारियों की तरह चाइना जैसे ही कंट्रीज से आ रही हैं, ये जो सोस्किनी वाली है, तो ये जियोग्राफी पे भी मतलब डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का टाइप, आपके बॉडी का शेप और ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
2: तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल लोगों को नहीं होना चाहिए।
1: चलिए अब बात करते हैं उस मिथ की जिसको सुनकर आई थिंक आज काफ़ी लोगों के भ्रम टूटेंगे। लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वो लड़का बन जाएंगी। इस बात को ट्रॉल किया जाता है, और मुझे लगता है कि अगर वेट लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुद को भूखा भी नहीं रखते हो, आप अपनी हर चीज़ इंजॉय करते हो, आपका फैट लॉस भी होता है, आपका मसल्स गेन भी होता है, प्लस आपकी बोन्स डेंसिटी भी बढ़ती है।
2: अब देखिए, इस बात पे चूंकि ये बहुत ही विस्तृत और गंभीर बात है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कई सारे जो पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स को भी ये मिथ रहता है कि लड़कियों को बहुत भारी वजन और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वो लड़कों की तरह हो जाएंगी। देखिए, अगर आप बल्की बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है वो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी बॉडी बल्की होगी। अभी उधर साउथ इंडिया से कोई एक फीमेल बॉडी बिल्डर काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म तक गई थी, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है, देखने में जाहिर सी बात है वो लगता है कि वो बहुत हट्टी कट्टी मजबूत है, और मुझे लगता है कि किसी अगर मैन को भी उठा के पटकना हो तो वो इतनी स्ट्रेंथ है उसके पास उसकी बॉडी में।
1: बट एक फीमेल को बल्कि बॉडी बनाने के लिए और एक मेल की तरह दिखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लस बहुत ज्यादा वेट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो एक आम लड़की नहीं कर
2: सकती। आम लड़की नहीं कर सकती है, बट देखिए एक आम लड़की अगर बॉडी को फिट रखने के लिए वो वेट लिफ्टिंग और ऐसी चीजें, थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी बात है। और मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि वो लड़कियां, अब ये तो हो गई शहर की लड़कियां, जैसे सेम अगर आप ऑन द कॉन्ट्री अगर गांव देहात की लड़कियों को ले लीजिए, तो मैं देखता हूं कि गांव देहात की लड़कियां जो है एक 30-40 किलो से लेकर के 50 किलो तक का वज़न जो है वो कैरी करके एक दूसरे जगह पे रखती भी हैं, मतलब जो भी घरेलू काम होते हैं, स्पेशली जब अनाज वगैरह की कटाई होती है, मैंने देखा है लिटरली अपनी आंखों से।
1: जी, और लोग सवाल भी करते हैं कि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो इतनी मजबूत कैसे होती, क्योंकि वो वेट उठाती हैं इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत।
2: बिल्कुल, वो वेट उठाती हैं, मतलब जो एक्सरसाइज करके हम अपने बॉडी को वर्कआउट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना वर्कआउट उनके गाँव में जो घरेलू काम होते हैं उसमें ही हो जाता है। और जो मेन बात है वो ये है कि वो लड़की जो मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज से ज़्यादा जुड़ी हुई है, भारी वज़न उठाना, भारी काम करना और ऐसे कामों में लंबे समय से लगी हुई है, उन लड़कियों में आगे चल के शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के प्रेगनेंसी 9 मंथ तक जो होल्ड करना हो गया, डिलीवरी से लेके और पोस्ट डिलीवरी के जो भी चीज़ें, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो शहरों की अपेक्षा उन महिलाओं में कम आती हैं
1: जी।
2: दूसरी बात, जो महिलाएं शहर में ही मतलब अच्छा वर्कआउट और बॉडी फिटनेस और इन चीज़ों के लिए, वेट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे ध्यान देती है, एक्सरसाइज करती है, वर्कआउट करती है, अपने आप को फिट रखती है, उसके अंदर भी ये पाया गया है नॉर्मल महिलाओं की अपेक्षा कंसीव करना, प्रेगनेंसी को होल्ड करना, डिलीवरी करना या पोस्ट डिलीवरी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है, उनको ये समस्याएं कम होती हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो लड़कियां जो वर्कआउट करती हैं उनको डिलीवरी, प्रेगनेंसी, कंसीव जैसी चीज़ों में कम समस्याएँ आती हैं, वो लड़कियाँ जो ऐसा नहीं करती हैं उनको अपेक्षाकृत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। अब ये डिलीवरी वाला मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था
1: जी।
2: ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे बॉडी में जो वर्कआउट करने पे अच्छा मेंटेन रहती हैं, नहीं करने पे वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती हैं। तो मुझे लगता है कि वेट लिफ्टिंग करना, वर्कआउट करना, अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और इसे प्रेज करना चाहिए, इसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे डीमोटिवेट करना चाहिए।
1: और हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी केस स्टडी हुई है, यानी कि वो लोग जिनको अर्थराइटिस था, जोड़ों में दर्द था या जिनकी हड्डियां कमज़ोर थी, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि आप वेट लिफ्टिंग करो और 3 महीने लगातार वेट लिफ्टिंग करने के बाद, जिम ज्वाइन करने के बाद उनकी अर्थराइटिस की दवा बंद हो चुकी है।
2: देखिए कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो वर्कआउट है, वर्कआउट से हमारे बॉडी में जो मतलब आप इसको कैसे कह सकते हैं, रिनोवेशन, ठीक है, जैसे ये मैकेनिज्म सबने सुना होगा कि हमारी पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह पे नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया से थोड़ी फास्ट, थोड़ी सरल और थोड़ी सहज हो जाती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है तो माइक्रोवेसल्स के थ्रू हर जगह पे ब्लड सप्लाई होता है, ट्रांसफ़र होता है, नरिशमेंट भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो कार्टिलेज डैमेज होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स डैमेज होते हैं, अगर हम वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग जैसी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में वो जो भी डैमेज पार्ट है वो रिपेयर होना स्टार्ट होते हैं और रिपेयर होने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है।
1: चलिए अब रिपेयर में की ही बात कर रहे हैं तो वापस से डाइट पर आएंगे। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन रिपेयर करने वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसे रिपेयरमेंट होगी।
2: आप स्पेशली बॉडी के किस पार्ट की रिपेयरमेंट?
1: अब आप अगर मसल्स की ही बात करें या फिर आप बात कर रहे हैं बोन्स की, अगर आपने कोई हैवी वेट उठाया है तो आपकी मसल्स कहीं ना कहीं रैप्चर हुई हैं, खराब हुई हैं, अब उन्हें होना है रिपेयर और रिपेयर होने के लिए लगता है प्रोटीन। और प्रोटीन को हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी।
2: देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी,
1: और यहाँ तक कि आपके बालों से लेकर के आपकी हर एक चीज, यहाँ तक कि आपका डीएनए भी प्रोटीन से बना है।
2: देखिए हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी होती है,
1: इसीलिए मैंने बालों से लेकर के
2: डीएनए तक की बात आपने बिल्कुल सही की। और चूंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे जो सेल्स होती हैं, वो प्रोटीन से मिलकर ही बनी होती हैं, हमारा पूरा बॉडी ही प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं देखिए रिक्वायर्ड तो होता है।
1: और इंडिया में तो और भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा मिला ही नहीं है।
2: बिल्कुल, और देखिए जैसा कि मैम ने कहा कि प्रोटीन लेंगे तो हमारी किडनीज खराब हो जाएंगी, तो स्पेशली वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं, कई बार उन लोगों को ये डर रहता है कि प्रोटीन हाई होने पे कहीं जोड़ों में ना दर्द हो जाए, कमर वगैरह में दर्द जैसी समस्या ना हो जाए या फिर ऐसा। देखिए इसके लिए आपको समझना चाहिए कि आप प्रोटीन को जितना ज़्यादा हो सके वो नेचुरल फॉर्म में लें।
1: बिल्कुल,
2: जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो चिकन वगैरह का सहारा लेते हैं, वो बॉइल्ड चिकन लेते हैं, ना कि वो सालन वाला और
1: ग्रीसी नहीं लेते हैं,
2: ग्रेवी वगैरह बना करके एकदम अच्छे से ऐसे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना सिंपल प्रोटीन लेंगे आपके बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करके और एब्जॉर्ब करने में उतना ही ज्यादा ईजी रहेगा,
1: इसीलिए वो लोग चिकन ब्रॉथ, चिकन सूप, इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम
2: ज्यादा करते हैं, ताकि वो बहुत ही अपने बेसिक फॉर्म में रहे और हमारी बॉडी उसको बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर

0: चनवा औ मंगलसूत्रवा सब सोने के तीन चारठो गहनवो ले गए,
1: सब उठाई ले गए,
0: उठाई ले गए, उठाई ले गए। पर वो कहां है हमार बिटी, अपने बिटी वा कहां जाओ, तू हरम जा दो, धंसी जाती हूं, मर जाती हूं, तू हमार कहां गहनवा लेके चली गई।
1: अब बताओ गहनवा जो ना कीमती हो गए,
0: काहे तू वैसे चली जा रो, हां तू हमार लाख रुपया ना ले जाती हूं, तू हमार गहनवा ना ले जाती हूं, तू वैसे जाती हूं उछेन दो हो जाओ।
1: दिमकियास पैदल है मैं लागत है आए,
0: और वतना
1: भाई कहा था कि हमार इज्जतिया रहा है, सोना चांदी और पैसा चला जाए कोनो बात नहीं, इज्जत चली गई तो जानो सब कुछ चलागा।
0: लेकिन वही नहीं कहती, मैं कहती तू चली जाती हूं, तू जाओ निकल जाती हूं, लेकिन हमार जेवरिया हमार पैसावा तो धई जाती हूं।
1: हे मोरी माता,
0: उनका अपने बिटिया के नहीं चिंता है, और यही यही पावे खरतिन वे गई पुलिस के लगे शिकायत की, अरे भैया हमार ले गए 1 लाख रुपया लेके गए, कहती 5 लाख लेके गए है।
1: देखो एक कहावत कही गई है कि जस करनी तस भोगव ताता,
0: और नरक
1: जात, जात का है पछताता। तो जस करे हो तो जस वैसे तो भोगी हो
0: सही। हाँ। पूरा ही कहा तो बहनी, पूरे
1: सर एक पुत बिटिया बहुत नहीं कहा रहे, बहुत कहात रहे, हंसी हंसी तारी बजाए बजाए बानी उनका कहाया, इसे तरिया मार मार हंसे।
0: हाँ
1: हाँ
0: उनका
1: ले, हाँ उनके सामने आएगा
0: बहनी, कोई पूत बिटिया उंगली नहीं करे, नहीं
1: उठावे चाहिए।
0: हाँ, नहीं उठावे चाहिए बहनी,
1: कब कब के कर समय बदल जाए। हाँ,
0: पूरे कहा तू, सबके नीक सोचे चाहिए,
1: सबके वाला सबके देखत है।
0: हाँ सबके नीक सोचे चाहिए बहनी,
1: नीक सोचे चाहिए, और का
0: सबके नीक सोचबो तो तोहरो नीक हो जाई।
1: तो देखो वहां तो कही थे समझाई थे उस दिन हम कहा, अतनी बड़ी तोरे विपदा पड़ी रहा है, तू का तो भगवान की शरण में रहा है,
0: और का
1: तू तो हुआ बैठ करके पर
0: वही बैठ के पंचायतिया शुरू कर दी, सुख लेनी है बुरैया करत रही बहुत ढेर तक केस।
1: हाँ वो तो करता है।
0: हाँ।
1: और दोस्तियों गाठे रहा थे,
0: और घुसर के बतवाता है वहीं से,
1: है तो कही था सुख लेनिया जनता ना ही का की कौन मेर है।
0: हाँ और वो दोस्ती करे ही जनता नहीं करती,
1: बहुत खराब मेहरारू है
0: उनका। हम समझाई थे की तू इनके साथवा ना रहा करो, ये तुम्हें मिटाई दे, बर्बाद कर दे।
1: गौआ यहाँ तो है कोई एक दूसरे की सुनत नहीं, देखो सब अस कहा जाता ना कि सब भोले भाले दिल के हैं।
0: हाँ पूरे है। तू हाँ
1: तो वह से है कि बस बात पड़ी तो तनिक चौचो चौचो हुएगा, उसके बाद सबका मन साफ है,
0: साफ है,
1: फिर बोलने लगे।
0: हाँ, और का
1: हाँ
0: अरे बहनी का कही, अब हम तो यहाँ भैया सबसे कहते हमरे, हम तो भैया अपने आमे बगीचवा यही बाज रही थे, ना कोई घरे आना ना कोई घरे जाना।
1: भाई वहाँ तो कही थे कि अपन काम देखो।
0: हाँ
1: तो कहे के लिए हाथ दुआरे दुआरे बैठी हो तो यार कुछ ना कुछ तो बात उठबे करी,
0: वो तो है ही है, जब चार मुंह हुई बात हुई।
1: और बिटिया पूत का बहुत ज्यादा ढील देख जरूरत तो नहीं,
0: नहीं जरूरत है बहनी, दुनिया बड़ी खराब है।
1: अब तुहार उनके देखा ना बिटिया का देखे ना का संगार पटार रहा है।
0: हाँ।
1: बस तुहार शादी ब्याह ना ही भा रहा है, एक बार तू का तो बहनी तू काहे के लिए इतना
0: सज समर के
1: मेकअप। हाँ, मेकअप करके चलत रही,
0: बहुत मेकअप करत रही, बहुत
1: देखो तब
0: किया
1: कनवा माता ना बड़ा बड़ा पता नहीं कहा झुमका लिया।
0: हाँ, हाँ।
1: और गलुआ अब लाल लाल लगाए ले, अखिया अब लाल लाल लगाए ले,
0: बहुत बेकार लागत ही वही।
1: हाँ बस ऐसे सज समर के चल दे, बहतारी का बोना पूछे कि तू बिटिया कहाँ जा, तो सज समर
0: तो के माई का ना पूछे चाहिए बहनी।
1: वहा तो बस यह तो खूब बढ़ तो पहले बढ़ते दिए हो।
0: हाँ तो अब चिल्लात हो।
1: हाँ
0: कहाँ भाग गए कहाँ भाग गए, पुलिस वो आवारा रहती हम देखो लठिया भटकत रहा अपन,
1: तब और का
0: हम ए चटपटाओ
1: का
0: आज संजवा कहीं आई बोटा हर बे टहरे तो आओ तो तुम्हें आओ दे दी हो गिरा है जो नंधिया मैं। हाँ
1: अच्छा तो आए जरूर आए तो अमुआ दे हो तो बे कर।
0: हाँ तो आए जाओ अमुआ नहीं जाओ बोरिया भर धरा है कहका बांट दे सबका और सबका बांटे ने तू ही रह गयी है
1: तो दे दिए हो।
0: हाँ
1: हमारे तो बहुत काम, हम खटाई डाल दी।
0: हाँ खटाई डाल दो तू नीक नीक सामान बनाए ले थोड़ा कम रकम का।
1: अब मैं सोचा रहा है कि अब आम थोड़ा और मिल जाए।
0: हाँ
1: तो एक ऐसे खटैया मिलाए के नोंचा कहा जाता है।
0: हाँ
1: नोंचा बनाए के धई दी
0: तो बड़ा रकम रकम जानती हूँ बनी, नोंचा का होता है खाए के मुहा नोच लिया
1: नहीं, उमा तेल मसाला की ज्यादा जरूरत नहीं होता है।
0: हाँ
1: हम तो ऐसा बनाए थे ना बहुत सरल तरीका से,
0: कसका बताओ तो तनी
1: छील डाले।
0: हाँ
1: अमुआ का।
0: हाँ
1: और छील करके उसका तनिक ऐसे कुछ कुछ आए दे सिला पे धई के आम।
0: अच्छा काट गए
1: काटब ना ही काटे तो कहे तनिक तनिक का कूच डारब।
0: हाँ
1: और उमा हींग और नमक और तनिक मरचा।
0: हाँ
1: और थोड़ा सौंफ ओंफ डाल दे।
0: हाँ
1: बस उसका मिलाए करके धुपवा में धई दे।
0: हाँ
1: हरियम भाई के।
0: हाँ
1: बस जब तुका खाए खो दाल चाउर सब बनत है,
0: हाँ हाँ,
1: तनिक निकाल लियो।

0: ओका चाहो तो चटनियों पीस लो धरा रही तो का चटनी में डाल
1: खराब होई ना
0: ना ही खदा
1: खन परा रही
0: हां हिंगिया डारो म बढ़िया बहुत बढ़िया
1: हिंगिया डारे रहो
0: हां टेस्टवा बन जात है टेस्ट
1: अच्छा
0: टेस्ट हां
1: टेस्ट
0: टेस्ट बन जात है
1: अच्छा अच्छा तो और का बनाओ तू बहनी
0: अब यही गल का बनाई ली थे अब यही
1: गल का होईगा
0: अचार बनाई ली अचार में तो जब जाली पड़ी
1: हां हां
0: तब बनाई
1: अच्छा
0: अबे तो बस सिरजे खाए ना अमुआ सिरज के अपना खत्म कर दो जो आंधी पानी में गिरा है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: का सिरजे खाए
1: अच्छा अच्छा
0: और तू का वो बनाई डालो
1: हाँ काओ
0: मतलब सुखाई डालो काट काट के सुखाई डालो फिर उसका पिसवाई के सूखी खटाई बनाई के धई ले
1: तो वो का कस के पिसवाई ली बहनी क्या पीसी
0: मिस्की मा
1: अच्छा हम ओका खटाई बनाए के झुरवाई ले
0: झुरवाई लो ओका मिस्की मा पीस ले
1: मिस्की मा ओका पीस के ले
0: हां
1: पाउडर बन जाए बस ओका
0: धई ले हमेशा जैसे करेला रेला बनाऊ
1: तो मा
0: तनी के धई दियो बहुत खटाई बढ़िया बन जाई
1: हां
0: हां ओका बना के धई ले तोरे तो बहुत है
1: हां हां हां तो अब तो हम बनाए डरबे जितना तू बताई उतना हम बनाए डरब
0: हाय देखो तोरे बहुत आम बताते हो कि तोरे बहुत गिर गया आम
1: हाँ
0: भवानी परे इतना आम जोन है अब की बार खाए ना चुका था आम
1: बहुत आवा रहा अब की बहुरवा हाँ। बहुत आवा रहा
0: और तुहार पाड़े जी हमका मिले रहा है कहा था है कि हम गए रहन गोणा सहरिया
1: हाँ। हाँ।
0: तो हर ठेला पर मुआ अमुआ दिखाई दे
1: हाँ अमुआ तो बहुत आवा रहा लेकिन जानत नहीं हो अमवा आ रहा आपकी आंधियों तूफान बहुत है
0: आंधिया तूफान तो का कहे दादा एकदम अंधेरी घिरी गई
1: हाँ दिख रहे हो
0: चिर्री देखे रहा चिर्री
1: अरे जोन चिर्री भैया हम तो डराए डराए वही घरम लुकान रहे
0: हमें बहुत डर लागत है चिर्री उरी कहूं गिरत है
1: हमरो बहुत डर लागत है लेकिन अब का करी हम तो वही लुकान रहे घर में यहाँ
0: अब वही बहुत लोग जोन है मरी गए
1: हाँ
0: एक जगह बतावत रहे
1: हाँ
0: लोटन चाचा
1: हाँ
0: कि कहा है कि एक टिनिया आई कहूं से उड़ी के
1: हाँ
0: और के एक मनाई रहा
1: गटेवा काट दी
0: सुने हुई हो ना
1: हाँ सुनन बहनी हाँ। सुनन नुआ उतरा नुजुआ नुजुआ
0: नुजुआ कहूं
1: नुजुआ
0: रहा है हाँ ये जो चला करत है ये कहा जाता है फेसबुक का
1: हाँ
0: फेसबुक पे कहूं चलत रहा है
1: फेसबुक पे
0: हाँ हाँ
1: अच्छा चलत रहा कहूं रिलिया चलत
0: हाँ,
1: रही
0: हुई रिलिया में वो बतावत रहे
1: हाँ
0: गलत कटी का
1: अरे बहनी बहरे ठाट रही हुई है
0: हाँ अब यहाँ तो कहते कि लड़का बच्चन का कह दो कि आंधी पानी आवे तो भैया घरे रहा
1: घर में रहा करो हाँ?
0: पता नहीं कहाँ से का उड़ के चला
1: तो बहनी हम जानते हैं सकरवा हम उठे ना और दरवाजा अपन खोलेन तो हमरे बराबर एक थोड़ी लकड़ी की जो है पटरा टाइप के बहनी उड़ के परारा बहरे हम कहें अब कोई बहरे हो तो मूड उड़ फूट
0: जात और का
1: तब बताओ यही तो मुश्किल रहते यही
0: लाते एक एक एक बात का बताओ एक रहा बहुत नीक बात है
1: बताओ बताओ
0: है तो हम बजरिया गए रहन
1: हाँ
0: तो जैसा हम लोग बोलित है
1: हाँ
0: ऐसे अपन बोलत रहन
1: हाँ
0: कुछ लेत रहा है ठेलुआ वाले से बतवाए उतरा ठेलुआ वाला अपने लोगन के अवधि तो बोलत है
1: हाँ हाँ
0: तो हम लोग बतवाए रहन वहाँ कौनो बाहर का मनाई ठाड़ रहा है
1: हाँ।
0: हम ना जानी तू कब नहीं
1: हाँ
0: तो कहिस कि आपकी बोली बहुत मीठी है हमसे कहा लगा
1: हाँ
0: हाँ कहिस कि आपकी बोली बड़ी मीठी है
1: हाँ
0: और ये जो बोल रहे हैं भाई साहब इनकी बोली भी बड़ी मीठी है
1: कौन रहा कहाँ मनैया हुए
0: कौनो गुजराती रहा है हम हाँ। नाई जानी तू करना हियाक नाई रहा है
1: अच्छा हियाक नाई रहा
0: है आवा होई गोंडा या
1: हाँ,
0: कोई
1: हाँ।
0: कोई
1: ए कहूं तोरे पिछवा तो नाई परिगा
0: अरे नाही हो
1: हाँ हम मैं तो यहाँ बुझा
0: नाही बड़ा लंबा चौड़ा रहा है तू
1: का नीक लाग गई हुई हो
0: नाही वो कही कि तोहार बोलिया बहुत नीक है मतलब कही कि आप बहुत मीठा बोलती हैं और ये भैया जी भी बहुत अच्छा बोलते आप लोगों की भाषा बहुत अच्छी लग रही है आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है
1: ऐसे कहा था
0: ऐसे हाँ। कही सा हाँ।
1: हाँ
0: तो फिर हम ना ही पूछा कि भैया तू कहाँ से आए हो
1: हाँ पूछे
0: हिम्मत ना ही पड़त है ना कोई मतलब अनचिन अनचिन मनई हो तो कैसे बुलकार दे
1: हाँ, हाँ,
0: पर वो बुलकार दे सब का
1: हाँ।
0: तो हम का भैया हमारे तरफ ऐसन बोली बोली जात है
1: अच्छा,
0: ये एक अवधि कहा जात है
1: अवधि कहा जात है
0: तो हाँ। बहुत आप लोग मीठा बोलती हैं मैं तो श्री राम की नगरी में आके धन्य हो गया
1: ऐसे बोला
0: ऐसे बोला
1: हाँ, हाँ। और तुम्हारे फोटो वोटो तो नहीं खींचे
0: फोटो वोटो नहीं खींचे हाँ फोटो खींचे नहीं
1: फोटो
0: खींच के लाई जाए कहूं पेपरवा में दे दे तो
1: अपन हमार नंबरवा फोन के तो नहीं दे दी हुआ कहीं मोबाइलिया के नंबरवा
0: नहीं कुछ नहीं हम कुछ नहीं दिया न फोटो खींची है न कुछ कही बस खाली बतवाई कही कि हम
1: तुम्हें वायरल कह दे
0: हाँ वायरल तो कही दे
1: हाँ
0: हमारा फोटो आ जाए वहाँ पे चलाओ तो
1: हाँ वहाँ पे चलाओ तो वायरल हो जाती हूँ बहनी
0: तो बस यही कही इसके हम राम की नगरी में आके धन्य हो गए यही बोली तो रामचंद्र जी भी बोलते थे
1: अवधि भाषा
0: तो और का बहुत गलगल हुई गई हमारे के राम का नाम ले यही बोली बोलत रहे राम जी के दरबार में घर में यही बोली बोली हाँ, जात रहा
1: बोली
0: तो
1: बोली
0: बड़ा अच्छा लगत है ना
1: बहुत नीक लगत
0: हम तो कहते कि भैया सब ऐसे बोलो एक दूसरे से हिल हिल के रहो प्यार से रहो
1: हाँ।
0: और दुनिया में रखा का है
1: कुछ हो नहीं तो चलो चटपटो
0: तो चलो भैया तैयारी करे है अब
1: मंगलवा
0: जुहावे है तो चलो एक दिन बजरिया चलो
1: चलो चलो
0: मर मसाला कम पड़ेगा है तो लेके
1: आए चलो चलो
0: अरे चलित है तनी अपने जो उन श्रोता है उनसे राम जो मतलब कुछ राम राम करे खाइये नहीं तो
1: नहीं कहीं नहीं
0: राम बोले का है
1: राम राम बोले का है उनका
0: कहावा कि कहीं इसकी राम की नगरी में आए के हम धन हुईगा
1: हाँ हाँ
0: तो हम लोगों का तो हर
1: हाई हन धन आए
0: हाँ हम लोगों तो
1: हाइये हन राम नगरिया में
0: उनके घरे परिवार
1: और का और का
0: अब जब अगली बार आई हो ना तो एक हम और बहुत बढ़िया गाना सीखे हैं
1: अच्छा अच्छा
0: हम सुनाई तुका
1: ठीक ठीक ठीक हाँ
0: तो चलो भाई जितने हमारे श्रोता लोग हैं उनसे जौन है राम राम कह लिया जाए हाँ,
1: राम राम
0: और
1: भैया
0: मंगल के जौन है उनका बधाई हाँ, दे दी जाए कि बड़का मंगल
1: भाई हो हाँ, भाई बड़का मंगल
0: जितने मंगल है आप लोग पुण्य के बहुत भागी हैं
1: हाँ,
0: जो आप लोग को इतने सारे मंगल मिल रहे हैं
1: और सुंदर कांड अपने अपने घर कराओ सब
0: करते रहिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है
1: हाँ बहुत सौभाग्य
0: तो बस भाई सबको इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं और आप सुनते रहिए
1: 89.6 एफएम ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है अरे भाई सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जहाँ योग ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी
3: बिल्कुल इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए कॉल करें 888-100-9400
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा क्या करें
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल गुर्दे दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO INO वेंटिलेटर फोटोथेरेपी डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ संपर्क करें 0522 2711 827

0: मोहब्बत के इस सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416, जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गन स्लेट 9.6 FM। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला, ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। और आज का दिन तो बहुत खास है भाई, संपूर्ण विश्व के लोगों को मातृदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में तो हर दिन माँ का ही दिन होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी इंसान को कुछ फील कराया जाता है कि हाँ, आप अपना बर्थडे मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कुछ स्पेशल सी फीलिंग्स होती है, खास एहसास होता है। अगर आप सबने अपनी माँ के लिए कुछ आज किया है, उनको एक अपने हाथ से बनाकर एक प्याली चाय भी पिला दी है, उनके लिए कुछ बाजार से लेकर चले गए हैं आप, तो बहुत अच्छा किया है। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आज कर लीजिए, क्योंकि हम इस पक्ष में हैं कि कम से कम भाई हम पैदा होते मतलब बर्थडे मनाया जाता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी ने विश किया। तो आप सभी की माताओं को ही बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों ने हमारे बारे में कुछ सोचा, कुछ स्पेशल वाली फीलिंग्स पाएंगे वो। और उनको चाहिए क्या, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और उनका प्यार और थोड़ी सी इस बात की परवाह कि आप उनकी परवाह करते हैं। माँ, माँ क्या है बताता हूँ मैं। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली में मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर चुंबन है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। तो मैं ये कविता की पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, आप सभी को प्रणाम। और इसके पश्चात मैं साथ दीपांशी तिवारी जी हैं भाई, उन्होंने भी कह दिया है गुड इवनिंग आप सभी देशवासियों को, ये विश्ववासियों को। सबलू सावन जी हैं, हमजुर में मोहब्बत की सजा पाएंगे, सकती हुई जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन के प्यार में जो मिली थी वो सजा हमसे पूछिए। क्या बात है भाई, मुंबई में कुछ ऐसा ही होता होगा, तू रूठ जाता है तो दिल टूट जाता है, रूठने वाले भी तेरे भी अजीब अंदाज है। क्या बात है भाई, आज बहुत शायराना हो रहे हैं। और बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिन मिले तेरा हाल बता सकता हूँ, है मेरी मोहब्बत में इतना असर, तेरी आँखों के आंसू अपनी आँखों से गिरा सकता हूँ। वाह क्या बात है भाई। और ये बेनाम कोई है भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग सर, आपको भी नमस्कार। और धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं, बहुत प्यार श्रोता। वाह क्या मरियम जी, हाँ कोई बात नहीं। तो जी भाई, सबलू सावन जी आपको प्रणाम करते हैं, धर्मेंद्र मोहन जी आपको नमस्कार करते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं भाई, माँ पर हमने आपको एक कविता सुनाई, क्यों ना आपको एक प्यारा सा गीत भी सुना दिया जाए। और हमको लगता है कि ये गीत जो हमारा होगा वो बहुत शानदार होगा। चलिए तो दुनिया के सभी माओं को प्रणाम करते हुए अब आपके समक्ष रखते हैं ये प्यारा सा गीत। उम्मीद है इस गीत को आप सभी दिल से एंजॉय करेंगे। सुनते रहिए रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये

क्या बात है भाई, क्या बात है। और हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, और आपको धन्यवाद। अरे आपको धन्यवाद भाई, कम से कम आप आए यहाँ पर। और काश ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी ही मिलेंगे हम दोनों। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र मोहन जी और सबनू समझ लिखते हैं भाई, नमस्ते आर्य मनु जी, आज काफ़ी लेट हो गए। ठीक है भाई, लेट हो गए, कोई बात नहीं, आपका लेट होना चल सकता है। और जी हाँ, हे माँ तुझे सलाम, अपने ही बच्चे तुझको पुकारे, राम हो या राम सर, प्लीज चला दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। और माँ ऐ अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। आज भी अपने माता के गोद में बैठकर कहानियां सुनने का, लोरी गाने का मन होता है, लेकिन कुछ व्यस्तताएं और कुछ हम कह सकते हैं कि भाई समय की पाबंदियां, उस लम्हे का हमको लाभ नहीं लेने देती। लेकिन फिलहाल चलिए चलते हैं और प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद फिर आपसे करेंगे एक छोटी सी मुलाकात, और फिर चलेंगे संगीत में अंतराल के उस पार।

पुनः आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र लिखते हैं, सुब्रू सावंत ने लिखा कि हम वो नहीं जो दिल तोड़ेंगे। क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। हम वो नहीं जो दिल तोड़ेंगे। शाम कर थाम कर हाथ साथ छोड़ देंगे, हम दोस्ती करते हैं पानी और मछली की तरह, जुदा करना चाहे तो हम दम तोड़ देंगे। क्या बात है भाई। सब्रू जी फिर लिखते हैं कि वो चाहते हैं जी भर के प्यार करना, हम सोचते हैं वो प्यार ही क्या जिसमें जी भर जाए। वाह क्या बात है भाई, 100% की बात कही आपने। रुकती है मेरी कलम तो सिर्फ एक बात पर, क्या लिखूं मैं उस माँ पर जिसने खुद मुझे लिखा है। क्या बात है। धर्मेंद्र जी कहते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, हम क्या बताएं, जैसे धरती माँ लहराते खेत, अनन्या देवी बन जाती हैं। क्या बात है भाई जी, उसी प्रकार से इस भारत देश को प्रणाम करने का, क्या भाई बहुत अच्छे विचार हमारे धर्मेंद्र मोहन जी के हैं। और उफ तक नहीं करती वैसे ही अम्मा का दर्जा है। क्या बात है। दीपांशु जी हैं, गुड इवनिंग सर जी कैसे हो। जी हाँ मैं अच्छा हूँ। रफ्तार जी हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता राजेश सिंह जी हमारे साथ हैं, नमस्कार सर। और जी बिल्कुल, और भाई आप शशि सिंह जी का भी इस्तकबाल करते हैं। इस गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। फिलहाल जिंदगी एक जंग है और हमको लगता है कि अगर हम इसको तब जीत सकते हैं जब हमारी माँ हमारे साथ हो। तो आइए आनंद उठाते हैं इस प्यारे से गीत का। इसके बाद

जी हाँ, बढ़ते हैं भाई फरमाइशी गीतों की ओर। और आज की जो पहली फरमाइश है, चूंकि आज मातृ दिवस है, मदर्स डे स्पेशल है, तो उन्हीं की प्यारी सी फरमाइश है, ये तो सच है कि भगवान है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गीत आज के मौके पर।

हाँ, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। चलते हैं भाई अपने बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता की तरफ, श्री राजेश सिंह जी, और गीत उन्होंने भेजा है बदतमीज कहो या कहो जानवर।

जी हाँ, बदतमीज कहो या कहो जानवर, लेकिन यहाँ तो भाई मामला जब जब फूल खिले पदा कर अटक गया है। फरमाइश है श्री नरेंद्र द्विवेदी जी की, फिल्म का नाम जब जब फूल खिले, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और गीत है परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना।

0: आमियम साहब,
1: जी हाँ, ये अब बढ़ते हैं भाई। आज के दिन बहुत ही प्यारी सी गज़ल भेजी है अखिलेश यादव जी ने, और गज़ल है चिट्ठी आई।

जी हाँ, और इसी के साथ भाई आज मातृ दिवस है, तो आइए दीपांशी जी की भी फरमाइश है, तू कितनी अच्छी है। और यही फरमाइश हमारे साथ की है नागेश्वर धाकड़ जी ने, तू कितनी अच्छी है। तो आइए इन दोनों की फरमाइश को एक साथ करते हैं पूरा, तू कितनी अच्छी है। मदर्स डे स्पेशल।

जी हाँ, आइए भाई चलते हैं ऐसी शख्सियत की तरफ जिनकी यहाँ हाथों में जादू है एकदम। श्रीमती शशि सिंह जी, जो राजेश सिंह जी की अर्धांगिनी है और बहुत प्यारा गीत चुना उन्होंने, कुछ ऐसे बंधन होते हैं, मुकेश और लता की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता कैफ जी की तरफ। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

0: जी हाँ, आप चलते हैं भाई आकाश जी की तरफ, और गीत है तू तो मौसम है पल में बदल जाएगी। जी हाँ, आकाश जी की प्यारी सी फरमाइश रौतामा से, तू तो मौसम है पल में बदल जाएगी।
1: कहा था ना तुझे, उसके इंतजार में अपनी लाइफ खराब मत कर। शादी कर रही है वो, भूल जा भाई उसे।
2: दिल्ली की टिकट बुक कर।
1: समर तू
2: देखना चाहता हूँ बेईमानों की शादियां कैसे होती है। टिकट बुक कर।
1: समर यार,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रति कुहावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।

0: दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा
3: शिमारू के नए
0: श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिल्कुल मदीने वाले से मेरा भी सलाम। और ये प्यारी सा गीत ने सुना संतोष जी की फरमाइश पर, जो हमको सुनते हैं भाई गिलौली से, बहुत ही प्यारे श्रोता हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही प्यारा गीत भी चुना। आप चलते हैं अपने और भी प्यारे श्रोता राजू सलमानी जी की तरफ, और क्या अंदाज है उनका, गीत भी बहुत अच्छा चुना है। आया आया टरिया पे कोई चोर।

जी हाँ, राम जी पैदा हुए थे भाई इक्ष्वाकु वंश में, रक्कुली सदाचलियाई वाली परंपरा में, और सूर्य उनके देवता थे। और सुरेंद्र यादव जी ने फरमाइश की है, कृपा करो सूर्य भगवान। जी हाँ, चलिए क्या मिलता जुलता गीत है आपको।

आप सभी पर, हम सभी पर सूर्य भगवान की कृपा हो भाई, बहुत ही धन्यवाद आपको ऐसा भजन भेजने के लिए। अब चलते हैं भाई धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ, और बहुत ही प्यारा गीत है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है।

जी हाँ, जवानी और दीवानी को जिंदाबाद करते हैं। अब चलते हैं निब्बल भाई की तरफ। फिल्म सुहाग, गीत बहुत अच्छा है यार, सुन यारी तेरी, और उसके बाद मुमताज अंसारी जी की फरमाइश, आज फिर तुम पे प्यार आया है, और फिर अंबर गोयल जी पर पल चलेंगे, टिप टिप बरसा पानी। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम करेंगे समाप्त। तो आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः मुलाकात होगी गोंडा मैसेज मसाला में।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना स्लेट 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। और आज तो खास दिन है, आज पूरे विश्व में मातृ दिवस मनाया जा रहा है, मदर्स डे। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल सा फील कराने के लिए कि हाँ आप खास हैं, कुछ विशेष दिन अगर बना लिए जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको बताएं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1908 को हुई थी अमेरिका में, और अन्ना जार्विस ने अपनी माँ, उनकी माँ का नाम था रीफ जार्विस, उनकी याद में उन्होंने इस चीज़ की, इस दिवस की शुरुआत की थी उनके सम्मान में। और उनकी माताजी एक सोशल वर्कर थी, जो कि समाज में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। तो उसके पश्चात फिर कई सारे देशों ने इसको मनाया, और वर्तमान समय में सफ़ेद कार्नेशन फूल का इस्तेमाल किया जाता है इस दिन। और ये एक ऐसा दिन होता है जो दिन हम समर्पित करते हैं अपनी माँओं को। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माँओं के चरणों में मेरा प्रणाम। और दूसरी खास बात, आज हम दो विषयों को लेकर एक साथ चलेंगे, और दूसरी खास बात यह है कि आज शबाना आजमी का नाम आप सभी ने सुना होगा। शबाना आजमी के पति का नाम जावेद अख्तर है, आप उनको भी कायदे से जानते हैं। और शबाना आजमी के पिता का नाम कैफी आजमी साहब था। और इत्तेफाक ये है कि मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो मातृ दिवस पड़ा वो 10 तारीख को पड़ा। और कोइंसिडेंस ये है, इत्तेफाक ये है कि 10 मई 2002 को शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी गोलोकवासी हुए थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो हमारे पास आज दो चीज़ें हैं, दोनों पर चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा करेंगे अपनी माओं पर, कुछ गज़ल माओ के नाम करेंगे, और कुछ गज़लें जो कैफी आजमी साहब ने लिखी उनको बहुत सारे लोगों ने गुनगुनाया, जगजीत सिंह ने उनको बहुत गाया है, तो वो गज़लें भी सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि माँ का पद दुनिया के पद में सबसे बड़ा होता है, और जिन्होंने मनाया, अन्ना जार्विस ने, उन्होंने भी अपनी माँ के याद में मनाया, तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत किसी गज़ल से करें। और अगर गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में हो तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। जी हाँ, 1995 में एक फिल्म आई जिसका नाम था जय विक्रांता। उसका एक गीत है, उसकी एक गज़ल है, जिस गज़ल को लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है, और आवाज़, अरे गज़लों की दुनिया का बादशाह मैं उनको कहता हूँ। जी हाँ, वही है वो जिन्होंने नाम फिल्म में गाया था, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। जी हाँ, पंकज उदास की प्यारी सी आवाज़, फिल्म जय विक्रांता, समीर का लिखा हुआ गीत, आनंद मिलिंद ने संगीतबद्ध किया, और गीत के बोल, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। और जब हम माओं की बात करते हैं तो इस दुनिया के बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो बेटे जो कम से कम अपनी माँ का स्तनपान कर लिए होते हैं, कहते हैं अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ कहा जाता है। लेकिन जिनको हम भगवान मानकर पूजते हैं, वो भगवान कृष्ण अपनी माँ के दूध के लिए भी तरस गए थे। जब हम बात करते हैं माँ और
बेटे के रिश्ते की, तो शायद इस दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता जो इससे पाक हो, जो इससे पाकीज़ा हो, इससे पवित्र हो। आप याद कीजिए, हम याद करें अपने बचपन के दिनों में जाएं। छोटे बच्चे को देखा मैंने, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा पैर मारता रहता है, पैर खाकर, लात खाकर अपने बच्चे का पेट भरने की सहनशीलता अगर इस दुनिया में किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ के पास है। हम छोटे थे, बिस्तर गीला करते थे, माँ गीले बिस्तर में लेट जाती थी और हमको सूखे बिस्तर पर लेटाती थी कि मेरे बेटे को कोई, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। तो ये माँ का प्यार है जब तक

बुलंदी कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। मैं यहाँ से कार्यक्रम करके जाता हूँ, 10:45 कभी 11:15 हो जाता है, घर में शायद सभी की आंख एक बार लग जाए लेकिन मेरी माँ की खिड़की खुली रहती है कि अभी मेरा बेटा आया नहीं, अभी आ रहा होगा, और गाड़ी रुकने के पहले ही आवाज़ आ जाती है। तो सभी माओं को प्रणाम करते हुए आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में। सुनिए ये गज़ल और उसके बाद बात करेंगे कैफी आज़मी साहब की।

जी माँ, माँ और माँ, सिर्फ माँ। इस दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत शब्द माँ क्या है, एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। फूल अगर बहुत अच्छा हो, खुशबू ना हो, तो कोई मानी नहीं होते उसके। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। जब जिंदगी में कहीं कुछ समझ में नहीं आता, तब लोग माँ के पास जाते हैं। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली में मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर चुंबन है, ममता की धारा है। माँ गालों पर चुंबन है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। तो विश्व की सभी माताओं को प्रणाम इस कविता के माध्यम से। लेकिन जरा सोचिए मित्रों, अगर हम आज का परिवेश देखते हैं तो अध्यापक होने के नाते भी, तो मैं खैर अपने आप को अध्यापक नहीं मानता, लेकिन सुन देखता हूँ कि बच्चे क्या यार मम्मी तुम भी ना, मतलब वो जो शब्द हो चुके हैं उनके, वो थोड़े से सम्मानजनक कम हो गए हैं आज के दौर में। मुझको कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा खराब हो, हमारे ही सामने आया है, लेकिन ये कहीं न कहीं देखा गया। और भौतिकवादी दुनिया में जहां पर धन को बहुत महत्व दिया जाता है, वहां वहां तो ये भी कह दिया जाता है कि पंक्तियां निकलती हैं कि लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद, लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सकें। लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सकें। पूरी करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। और माँ गरीब को क्या चाहिए, माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। माँ को यही एक अच्छा लगता कि वो धुंधली आंखों से अपने बेटे को देखती है तो उसका बेटा दिखाई नहीं पड़ता, तो बेटे से कहती है बेटा चश्मा ले आओ, चश्मा बनवा दो। लेकिन
अरे साहब, गोंडा में खुले हुए वृद्धाश्रम इस बात का प्रतीक है कि औलाद ने अपने माता पिता को वहां भेज दिया। जिनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है, वो अगर वृद्धाश्रम में है तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर एक सवाल खड़े करते हैं। ये संवेदनशील विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। आंखें खराब हो गई बच्चों को पालकर, आंखें खराब हो गई बच्चों को पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, जीते जी बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। कहते हैं मेरे पापा की निशानी है, जब पिता थे तो शायद उसका सम्मान उनका नहीं हुआ। हम लोगों को सीखना चाहिए। छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक घर में विवाह हुआ, मतलब पति पत्नी, बच्चे, बच्चों के बाबा दादी रहते थे। तो कुछ दिन के बाद जो है वो उनके बाबा को खांसी बहुत आती थी, घर में रहते थे तो डिस्टर्बेंस होता था लोगों को सोते समय। तो ये हुआ कि उनकी जो खाट है, जिस चौखट पर वो, जिस चारपाई पर लेटते हैं, उसे बाहर कर दिया जाए, तो वृद्ध है, खांसी आती है तो परेशान करेंगे। तो उनकी खाट बाहर हो गई, बिस्तर बाहर हो गया, वृद्ध थे, खांसते रहते थे। कुछ दिनों की बात, वृद्ध लोग कहाँ कितने दिनों के मेहमान, एक दिन चल बसे। जब वो मृत्यु हो गई उनकी, तो उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि अब ये सामान जो है ये भी रख दीजिए बाहर, इसकी क्या आवश्यकता है। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं माँ से कि इसको फेंकिए मत, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पिता ने बड़े मासूमियत से पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो उस बेटे ने उत्तर दिया, पापा जब आप बूढ़े हो जाएंगे और खांसेंगे तो यही जो चारपाई है और ये बिस्तर है, ये मैं आपके लिए बाहर करूंगा, इसको रख दीजिए क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, नीम का पेड़ कभी आम नहीं देता। अगर आपने अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इस बात की उम्मीद है कि शायद आपको अच्छा बर्ताव ना मिले। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सामने जब आप रहें, विशेषकर जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो अगर हमको सुन रही हैं, तो अपने सास और ससुर की सेवा बहुत करें ताकि बच्चों के समझ में आए, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। तो वो सीखने की परंपरा है, बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आप उन्हें क्या बना रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। श्री रामचरित मानस पढ़ता हूं मैं तो याता है भगवान से बड़ा कौन, तो याता है भगवान से बड़ा कौन, भगवान से बड़ी मां, उसने भगवान को पैदा किया है। बहुत ही लिखा तुलसीदास जी ने श्री राम के बारे में, लेकिन लिखी बंधु कौशल्या दिश प्राची कीरति जासु सकल जग माची, उनको प्रणाम करता हूं पहले जिनकी वजह से यह संभव हो पाया, उन्होंने बताया कि हाँ बेटा ऐसे होता है। एक छोटी सी कहानी और बताता हूं आपको कि शिवाजी ने युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ, तो एक मुस्लिम महिला को पकड़ कर लोग ले आए, बड़ी अच्छी बात थी। और उस समय यह होता था कि राजा अगर राजा के ऊपर अटैक करता था, राज्य जीत जाता था, तो उसकी पत्नियों को वो अपनी पत्नी बना लेते थे, ये परंपरा थी कुछ ऐसी। तो शिवाजी छोटे कद के थे, दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थे, तो सैनिक लेकर के आए पालकी में,
तो शिवाजी ने पूछा कि इसमें क्या है। सैनिकों ने कहा कि इसमें जो लूटी गई चीज है उसमें सबसे बेशकीमती चीज है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिवाजी ने कहा क्या है जरा देखें। तो जब देखने की बात की गई तो पालकी उठाई गई तो उधर से गौहर बानू निकली। गौहर बानू निहायत ही खूबसूरत, मतलब उसे हम सुंदरता का पर्यायवाची कहें तो गलत नहीं होगा। शिवाजी ने गौहर बानू की ओर देखा और कहा, नमस्ते किया और कहा कि अगर आपकी जितनी भी खूबसूरत मेरी माँ होती तो शायद मैं भी बहुत सुंदर होता। अफसोस कि मेरी माँ आपके बराबर सुंदर नहीं थी। आपके बराबर अगर सुंदर होती तो हम शायद बहुत सुंदर होते। परंपरा, अब ये जो उनके अंदर वाक्य बोला गया वो छत्रपति शिवाजी नहीं बोल रहे थे, वो जीजाबाई बोल रही थी, वो उनकी माँ बोल रही थी, वो उनका संस्कार बोल रहा था। तो अपने बच्चों को आपको कैसी परवरिश देनी है ये जिम्मेदारी हम लोगों पर ज़्यादा है कि बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। जी हाँ, बात बातें बहुत हो गई। नज ने कहा नमस्कार सर। जी हाँ, आदाब करते हैं नेहा जी। नमस्कार मनु सर। जी हाँ प्रणाम, आपको भी आदाब। और आप जाने क्या कहेंगे, आप कहने दीजिए। और वास्तव में मुझको लगता है कि मैं जब कहता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही कह जाता हूँ और नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर सर आज माँ पर ही सुनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल माँ पर सुनाएंगे। माँ पर क्या सुनाएं, सब कुछ उन्हीं पर तो है। सविता शास्त्री जी उपस्थित है भाई, शुभ संध्या आपको भी। और माँ के लिए हर दिन होता है, माँ के बिना कोई दिन नहीं होता। जी हाँ, और इसका एहसास तब होता है जब हम माता पिता बनते हैं। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है ये बच्चे तब समझ पाते हैं जब वो पेरेंट्स बनते हैं। उससे पहले तो उनको लगता है ये तो सभी करते हैं। है कितना मुश्किल सुनहरे रोटी को गेहूं करना, कहीं खरीदूं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं। पिता कितनी मेहनत करता है घर के लिए ये पिता जानता है, माँ माँ जानती है। जी जहां तक मुझे लगता है कि एक बेटी के लिए दुख कल बहुत होती है कि उसे माँ की छोड़ के आना पड़ता है और वहाँ माँ फिक्र में रहती है मेरी बच्ची ठीक है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा जी, बिल्कुल सही कहा। ये सुन में माँ की बेटी को ज़रूरत होती है, उस वक्त बेटी अपनी जिम्मेदारियाँ में उलझ जाती है। शायद कभी कल का भी वक्त नहीं होता, कल का भी वक्त नहीं होता बेटी के पास, क्योंकि खुद को एक माँ बन चुकी होती है। क्या बात कही आपने, सही बात है, ये होता है। मनीष शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सभी को। आपको ही मनीष शर्मा जी, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और बहुत सारे स्टार्स भाई दे दिए, दिल दे दिए। और जी अरे मनीष शर्मा जी, अरे ये गुड नाइट, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं साहब, गुड नाइट कहने का अधिकार सिर्फ हमको है हमारे शो में, और कोई नहीं कह सकता। अशोक त्रिपाठी, अरे भाई व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, तो माँ को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी अशोक जी क्षण स्पर्श, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और हमारी माता जी हैं जो आपकी धर्म पत्नी हैं उनको भी मेरा प्रणाम निवेदित है। जी हाँ बट हुई थी जी, क्या बात है, बहुत खूब कविता सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी पापा से लिए मेरे लिए झगड़ा भी कर लेती हैं। जी बिल्कुल, उस्मान खान ने कहा बहुत सही बात है सर। जी जी बिल्कुल, क्या बात है, उस माँ के लिए क्या लिखूं। लेकिन शबाना आज़मी के बारे में, उस माँ के लिए क्या लिखूं जिसकी लिखावट हूँ मैं, लेकिन शबाना आज़मी के बारे में ज़रूर लिखेगा। क्या बात है, क्या बात है, आपकी पंक्तियाँ मतलब गागर में सागर भरते हैं आप प्रभु। इसीलिए तो मैं आपको मतलब दुनिया से परे हट कर देखता हूँ। और बोया है गर बबूल तो पाओगे कैसे आम। क्या बात है, क्या बात है भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जी बहुत खूब। अब अगर माँ की बात कर ली गई और पिता की बात नहीं की गई तो मुझको लगता है अधूरा रहेगा। इस दुनिया के प्रत्येक रिश्ते में आप देखिए
तो इंसानियत का जो रिश्ता है उसमें पहले पुरुष है फिर महिला है, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, ऐसे ही चलता है, पहले पुरुष फिर स्त्री। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सिया राम कहते हैं, उमा शंकर कहते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। सोचिए इंसान के रिश्ते में एक नाम ऐसा है जिसमें माता पहले है और पिता बाद में है, माता पिता। आपने कभी नहीं सुना होगा पिता माता। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे की वजह यह है कि धरती के बाकी सारे रिश्ते इंसान के हैं और ये जो माता पिता का रिश्ता है ये भगवान का है, क्योंकि भगवान के नाम में स्त्री पहले है पुरुष बाद में है। इंसान के रिश्ते में पुरुष पहले है स्त्री बाद में है। तो पिता माता पर आपको एक कविता सुनाई थी और अब पिताजी पर एक कविता सुनाता हूं। रात इंदौरी का एक शेर मुझको याद आता है इस मौके पर कि उन्होंने लिखा कि सबकी नींदों में चले ख्वाबों में शामिल हो जाए, सबकी नींदों में चले ख्वाबों में शामिल हो जाए, लोग सोए हैं चलो शहर में दाखिल हो जाए। कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं। और अंतिम की दो पंक्तियां शायद इस दुनिया के हर पिता का दर्द होगा कि ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए। जब आप पिता बनते हैं तो बेटे को बेटी को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, आसान नहीं है साहब। पिता होना अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हमने पिता का दर्द समझा है पिता होकर। जब बाप बनता है व्यक्ति तब जानता है कि बाप बाप होता है, और क्यों होता है वो इसलिए होता है क्यों, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। हमको याद है नेहा जी ने अपने बेटे के बर्थडे पर सुनाया था, आज उंगली थाम के तेरी तुझको तुझे मैं चलना सिखलाऊं। बल्ला सहनी पर गाया गया, मन्ना डे की प्यारी सी आवाज है और वहां पर पुरुष ने ही उंगली पकड़ी है। तो पिता साहब याद कीजिए, बचपन में आपने अपने माँ के कंधे पर नहीं बल्कि पिता के कंधे पर बैठ करके मेला देखा होगा, अगर देखा होगा तो। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खा रहा है। पिताजी थोड़ा सा डिसिप्लिन वाले होते हैं, क्यों जानते हैं, माँ बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है, दुलार देती है, कहीं बिगाड़ ना दे तो थोड़ा सा अनुशासन में रखना पड़ता है। जिस घर में पति और पत्नी दोनों ढीले पड़ गए वो घर चौपट हो गया। एक को थोड़ा सा बाहर से नारियल वाला व्यवहार रखना पड़ता है कि मतलब बाहर से कड़ा। मुझे याद है, मतलब मेरी व्यक्तिगत जीवन की बात है, शायद नहीं शेयर करना चाहिए लेकिन आज मौका पड़ गया तो कह रहा हूँ। फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट था मैं, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था और वहीं मेरे पिताजी पढ़ाते भी थे। किराए का मकान था तो बगल में कुछ स्टूडेंट्स रहते थे जो बीएससी बीकॉम बीए वाले, हम लोग बगल में रहते थे किराए पर, आजमगढ़ की बात है, पिताजी वहीं शिशु मंदिर में अध्यापक। तो मैं घर से विद्यालय से घर पर आया और देखा कि वो शनिवार के बाद छुट्टी होती थी तो सोमवार को आते थे वो बच्चे, तो
तो मैंने देखा उनके घर के अंदर गया तो सब लोग सो रहे थे, और एक चावल का लड्डू होता है अगर आप जानते होंगे, ढ्योढ़ी जिसको कहा जाता है, तो हमको मीठा थोड़ा सा बचपन में ज़्यादा पसंद था। तो वो सब लोग सो रहे थे, हमने जगाया एक आध बार, भैया ले लें, वो दीवार पर रखा था। मन कहाँ माने, पांचवी क्लास का विद्यार्थी, गया एक उठा लाया और लोहे से उसको फोड़ने लगा। पिताजी ने साइकिल खड़ी की, अंदर आए और पूछा हमसे कि ये कहाँ से, ये किसने दिया। तुमने बताया कि वो बगल में, तुमने कहा उन्होंने दिया क्या, हमने कहा नहीं, वो लोग सो रहे थे तुम उठा लाए। मतलब मेरा हाथ जो है वो विद्या पर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने पहले मुझको मारा और इसके पश्चात मेरी माँ से जो है वो माचिस मंगाई और कहा इसी जबान के लिए ना, बहुत पसंद है मीठा तुमको, और मुझे लगता है कि कम से कम, उन्होंने कहा जीभ निकालो, अब जीभ निकालें वो माचिस जलाएं वो जीभ पर रखें, तब तक जीभ अंदर। ऐसा करते करते करते करते करीब आधी माचिस ख़त्म हो गई। बच्चे आए जो बगल में आए थे, मैं तेज तेज जो रहा था जागा, वो लोग जागे, आए पापा को समझा, रहे क्या आप एकदम हैवान है क्या, ऐसे मारा जाता है बच्चे को, क्या किया, लड्डू ही चुरा लिया, कौन सी खास बात हो गई। चढ़ने का नहीं, बात लड्डू की नहीं है, बात यह है आज इसने चोरी की है, इसकी जुबान डला दूंगा तो इसको जिंदगी भर याद रहेगा कि चोरी नहीं करनी है, और अगर आज इसको छोड़ दिया तो फिर ये इसकी आदत में शामिल हो जाएगा। और यकीन मानिए, उस दिन के बाद से मेरी कभी बेईमानी या चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ी। द क्रेडिट गोज टू माई फादर। थोड़ा बहुत भी जो कुछ मैंने सीखा ये सब अपने पिता से ही सीखा है। उस समय लगता था कि पिताजी खराब हैं, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन आज लगता है कि अगर उन्होंने उस दिन दिया सलाई से, और मैं 3-4 दिन तक कुछ खा नहीं पाया सिवाय दूध के, फिर वही ले गए, दवाई भी कराए, बाद में समझाए भी, तो अब समझता हूँ कि उन्होंने जो किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और ये आवश्यक था। बातें आज ज़्यादा हो रही हैं और हमको लगता है कि आपको गज़ल सुनना चाहिए। पिता कभी कुछ पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा, अभी मेरे पिताजी का खट्टा वाला आपको सुनाया मैंने, कभी कुछ खारा है, पिता पालन है पोषण है परिवार का अनुशासन है। पिता पालन है पोषण है परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, अरे पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। लोग कहते हैं बाप की जेब है क्या, अरे हाँ, इसका मतलब बाप की जेब पे अधिकार है। पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता नहीं होगा तो माँ हमारी अधूरी हो जाएगी साहब। जिस घर में पिता नहीं है वहाँ पर माएँ अधूरी हैं, हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं, मस्तक पे सिंदूर नहीं है। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो। अपने माता पिता से ये कभी मत कहिएगा कि आपने मेरे जीवन में आपने मेरे लिए क्या किया है। ये समझिएगा कि उस समय उनकी आँख के आंसू अगर निकल आएंगे तो शायद आपकी सफलता आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। रहीमन आह गरीब कह कबहू न निष्फल जाए, मुई खाल की स्वासो सार भस्म हो जाए। जो बकरी होती है उसकी धौकनी जब चलती है तो लोहा पिघल जाता है, कभी देखिएगा लोहार के यहाँ जाकर, तो कभी मत कहिएगा। मैंने कई सारे बच्चों को सुना कि पिताजी ने क्या किया, अरे जो उन्होंने किया
वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, और जब आप करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत कुछ किया। जी हाँ भाई, कि हमारे साथ हंस गोंडा जी हैं, नीना जी हैं, हेलो जी हाँ हंस गोंडा जी, सर मेरी अम्मा भी ऐसी ही हैं। ऐसा नहीं है अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। आए हाय हाय हाय, मुनव्वर राना की ये पंक्तियाँ क्या बात है भाई, क्या बात है, लगता है आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए भाई, अब आपको चलते चलते एक प्यारा सा, एक प्यारी सी गज़ल और सुनाते हैं, और माँ पर एक गज़ल हुई है तो भाई एक गज़ल और बनती है, तो वो गज़ल आपको सुनाते हैं हम, और इसी गज़ल के साथ आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आसमान वाले ने चाहा तो कल पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी समय 9:30 बजे बाहर गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की।

0: हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति
1: और मैं आपकी होस्ट आयुषी,
0: और ये है पर्दा। और आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर केस माना जाता है। एक ऐसा केस जिसे पूरी दुनिया ग्रीन रिवर सीरियल किलर के नाम से जानती है।
1: नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी नदी से है।
0: और सच में है, इस केस का नाम उसी नदी से पड़ा जहां पहली बार कुछ लाशें मिली थी। ग्रीन रिवर जो अमेरिका के सिएटल इलाके के पास बहती है।
1: तो क्या यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी?
0: हाँ, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 15 जुलाई 1982। सिएटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के किनारे कुछ लोगों को पानी में बहती हुई कुछ लाशें दिखाई पड़ती हैं।
1: और जाहिर है कि ये किसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य रहा होगा।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। लोगों की निगाह जैसे ही इस मंजर पर पड़ती है वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही वक्त बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है और पहचान की प्रोसेस शुरू की जाती है।
1: तो क्या उस लाश की पहचान हो पाई थी?
0: हाँ, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह लाश 16 साल की लड़की जिसका नाम था वेंडीली कोफील्ड।
1: ओह, सिर्फ 16 साल? इसका मतलब अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी।
0: और किसी ने उसे खत्म कर दिया। फिलहाल जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था।
1: यानी कि ये तो साफ साफ एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था।
0: हाँ, पुलिस तुरंत ही इस केस को प्रायोरिटी देती है और सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन कई हफ्तों की जांच के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल ही नहीं पाता।
1: हाँ, और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है जब कोई क्लियर एविडेंस ना मिले।
0: बिल्कुल, लेकिन इस केस की असली खौफनाक बात अभी सामने आना बाकी था।
1: मतलब?
0: करीब एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को उसी ग्रीन रिवर के इलाके में 3 और लाशें बरामद होती हैं।
1: 3 और?
0: हाँ, और ये तीनों भी महिलाओं की लाशें थी जिनकी उम्र लगभग 17 साल 23 साल और 31 साल बताई जा रही थी।
1: तो अब तो पुलिस को शक होने लगा होगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम है।
0: बिल्कुल, लगातार मिलती इन लाशों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सिएटल और उसके आसपास के इलाके में कोई ऐसा इंसान जरूर घूम रहा है जो महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा है।
1: और यहीं से शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे लंबी और खौफनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन बन गई।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन तीनों लाशों का भी पोस्टमार्टम करवाया और जो रिपोर्ट में सामने आया उसने सबके दिल को झकझोर के रख दिया।
1: क्या?
0: तीनों महिलाओं की हत्या का तरीका लगभग वही था जैसे 16 साल की वेंडीली का केस था।
1: यानी कि इन तीनों हत्याओं का एक ही पैटर्न था।
0: बिल्कुल, जांच में पाया गया कि इन तीनों के साथ भी पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई।
1: तो अब पुलिस के लिए ये साफ संकेत था कि शायद ये एक सीरियल ऑफेंडर का काम हो सकता है।
0: और मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस पहले से मिले मामलों को समझने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच उसी इलाके में नदी के आसपास 3 और महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं।
1: मतलब अब कुल कितनी लाशें हो गई होंगी?
0: उस समय तक लगभग 7 लाशें।
1: सिर्फ कुछ महीनों में 7 हत्याएं? ये तो पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा दहशतगर्द होगा।
0: बिल्कुल, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर किसी और को नहीं फीमेल्स को टारगेट कर रहा था। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में डर का माहौल फैल रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो गई। पुलिस पर भारी दबाव बढ़ने लगा और जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
1: और जब कोई स्पष्ट सबूत ना हो तो इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
0: यही तो बात है, यही इस केस में भी हो रहा था। पुलिस ने हर संभव दिशा की जांच कर ली, सस्पेक्ट की पहचान की गई, लोगों से पूछताछ की गई, कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कोई सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था।
1: लेकिन क्या किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला?
0: नहीं, काफी इन्वेस्टिगेशन और जांच के बावजूद भी पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई पक्का एविडेंस हो। पर तुम्हें पता है, एक ऐसा नाम जरूर था जो बार बार घूम घूम कर आ रहा था।
1: कौन?
0: गैरी लियोन रिजवे।
1: गैरी रिजवे, यानी वही आदमी जो बाद में इस केस से जुड़ा माना गया था।
0: हाँ, लेकिन उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था।
1: तो फिर क्या वजह थी जो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट माना?
0: एक्चुअली हुआ क्या था, एक परिवार ने पुलिस को बताया था कि जिन लड़कियों की लाशें मिली थीं, उनमें से एक लड़की को उन्होंने ट्रक में बैठते हुए देखा था और अगले दिन उसी तरह का सेम ट्रक गैरी रिजवे के घर के सामने खड़ा था।
1: यानी शक की एक छोटी सी कड़ी गैरी तक पहुंच रही थी।
0: इसी वजह से गैरी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गैरी समेत कई सस्पेक्ट के सीमन सैंपल को भी लिया और उन्हें विक्टिम के शरीर से मिले सैंपल के साथ फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा था।
1: और क्या कोई मैच मिला?
0: नहीं, किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल उन विक्टिम से मिले सैंपल से मैच ही नहीं हुआ।
1: यानी कि अभी भी पुलिस के पास गैरी के लिए कोई भी सबूत नहीं है।
0: सबूतों की कमी और फॉरेंसिक मैच ना होने की वजह से गैरी सहित सभी सस्पेक्ट को रिहा कर दिया गया।
1: और शायद उसी समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो जाने दे रहे हैं आगे चलकर वही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक किलर निकलेगा।
0: और यहीं से ये मामला और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का नाम बार बार घूम घूम कर पुलिस के सामने पहले ही आ चुका था,
1: पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया जा रहा था। और अब गैरी लियोन रिजवे, ये नाम बुलाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया।
0: खैर, हाँ सही कहा, ये नाम हिस्ट्री के उन पेजेस में शामिल हो गया है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। खैर, गैरी लियोन रिजवे, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहा राज्य में हुआ था।
1: उसका परिवार कैसा था? लेकिन
0: गैरी के पिता ट्रक ड्राइवर थे। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी ने अपने स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी।
1: तो मतलब शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी।
0: ऊपर से दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर अंदर कुछ और था।
1: अंदर क्या था?
0: ऊपर से जितनी नॉर्मल जिंदगी दिख रही है गैरी की, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। गैरी ने यूनाइटेड स्टेट नेवी ज्वाइन कर ली थी और उसे वियतनाम वॉर में भी भेज दिया गया था।
1: वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय के सैनिक के भी मन में इसका गहरा प्रभाव रहा होगा।
0: सही कहा, वियतनाम में रहते हुए गैरी का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। बताया जाता है कि वह वहाँ अपना ज्यादातर समय अलग अलग सेक्स वर्कर्स और महिलाओं के साथ बिताता था।
1: तो फिर इसका असर तो उसकी शादी पे भी पड़ा होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जो कि काफी आक्रामक और गलत होता। लगातार झगड़े, खराब रिश्ते की वजह से एक साल के अंदर ही उसकी पहली शादी टूट भी जाती है।
1: और उसके बाद?
0: पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद 1973 में गैरी ने दूसरी शादी कर ली।
1: दूसरी शादी? अब ये किससे?
0: उसकी दूसरी पत्नी का नाम था मार्सिया लोरेन ब्राउन।
1: तब फिर क्या ये शादी उसकी सफल रही?
0: नहीं, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि गैरी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहा, अपनी पत्नी के साथ काफी कठोर, काफी हिंसक और काफी खराब।
1: यानी उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था।
0: बिल्कुल, और आखिरकार 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है। और इसी के लगभग एक साल बाद यानी कि 1982 में गैरी रिजवे ने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे आगे चलकर उसे अमेरिका का सबसे फेमस और खतरनाक सीरियल किलर में शामिल कर दिया गया।
1: यानी वही समय जब ग्रीन रिवर के आसपास लाशें मिल रही थी।
0: बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक कई महिलाओं के मर्डर होने लगे और उनकी लाशें अक्सर ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में मिलती रही।
1: लेकिन पुलिस गैरी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही थी?
0: सबसे बड़ी एक ही वजह है ना, एविडेंस की कमी।
1: यानी एविडेंस की कमी से बार बार कातिल भटक रहा था और आजाद दुनिया के सामने घूम रहा था।
0: बिल्कुल, और शायद उसके बिहेवियर पे भी किसी ने अभी तक नजर ही नहीं दौड़ाई थी।
1: हालांकि तुमने अभी बताया था कि 1982 में उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा भी गया था, वो कैसे?
0: सही कहा, उस समय जब एक परिवार ने आकर बताया था तो उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा जरूर गया था, बट क्योंकि उस वक्त की फॉरेंसिक सैंपल्स में उसका नाम, उसका एविडेंस कहीं मैच ही नहीं हुआ तो उसे जाने दिया गया।
1: फिर भी वो बचा कैसे?
0: क्योंकि उस समय की डीएनए टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। जो सैंपल पुलिस के पास थे उनसे गैरी के खिलाफ कोई पक्का मैच ही नहीं हुआ और यही वजह थी कि गैरी खुला छूट गया। और मुझे लगता है ना, गैरी को खुला छोड़ना ये पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था।
1: जब कोई कातिल ऐसे खुलेआम घूमेगा और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और हत्याएं करने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला था?
0: आगे आगे लाशें मिलती जा रही थी, तब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के बैकग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया और वहाँ एक पैटर्न दिखाई पड़ता है।
1: पैटर्न? कैसा पैटर्न?
0: ज्यादातर पीड़ित ऐसी लड़कियां थीं जो या तो घर से भागकर आई थीं, या सेक्स वर्क में शामिल थीं, या फिर जिनका कोई परिवार नहीं था या परिवार से लगभग कम संपर्क बाकी था, यानी कि ना के बराबर।
1: यानी कि किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनकी गुमशुदगी शायद तुरंत नोटिस में ना आए।
0: बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोई नहीं लिखाता, उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता, और यही किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये ख्याल आया और उसी की वजह से उन्होंने उन इलाकों में नजर रखना शुरू की जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते थे, उनके ऊपर निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं के बीच में कोई ऐसा सुराग मिलेगा या फिर वो व्यक्ति सामने आएगा जो इन हत्याओं के पीछे है और ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
1: तो क्या फिर कुछ पता चला?
0: हाँ, इसी निगरानी के दौरान एक दिन पुलिस की नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
1: क्या हुआ था?
0: पुलिस ने देखा था कि गैरी रिचवे एक सेक्स वर्कर के साथ बेहद ही आक्रामक तरीके से उलझा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार वह उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था और स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही थी।
1: तो फिर पुलिस ने तुरंत जाके इंटरफेयर तो जरूर किया होगा।
0: हाँ, पुलिस ने वहीं गैरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए फिर से थाने ले गई।
1: क्या इस बार पुलिस को गैरी के खिलाफ कोई सबूत मिला या फिर इन हत्याओं के पीछे का कोई सबूत?
0: चीजों को देखते हुए एक बार फिर से गैरी को सस्पेक्ट माना गया और इस बार एक बहुत ही लंबी पूछताछ भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया।
1: अच्छा, पॉलीग्राफी यानी कि वो टेस्ट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है?
0: सही कहा। इसी टेस्ट से व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट एंड अन्य फिजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई पड़ता है।
1: तो क्या इस टेस्ट से गैरी के खिलाफ कुछ सामने आया?
0: नहीं, गैरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक था और उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया।
1: यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे दी उसने।
0: बिल्कुल सही कहा, और इस बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे।
1: यानी कि पुलिस को इस बार भी उसे रोकने के कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले।
0: बिल्कुल, इसी वजह से गैरी को फिर से छोड़ दिया गया।
1: और यही वो मोड़ आता है जहां शायद ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था।
0: गैरी को अब पूरी तरह से यकीन भी आई थिंक हो चला था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। रिहा होने के बाद गैरी ने अपने अपराध बंद नहीं किए, बल्कि वह पहले की तरह और भी महिलाओं को निशाना बनाता रहा।
1: और हर बार वही पैटर्न दोहराता था क्या?
0: लगभग। हत्या के बाद वह अक्सर लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
1: और पुलिस को बार बार सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी लाश।
0: बिल्कुल, इसी वजह से मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम देना शुरू कर दिया
1: और वही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया,
2: द ग्रीन रिवर सीरियल किलर।
1: इतने सारे शक होने के बावजूद भी पुलिस गैरी तक नहीं पहुंच पा रही थी।
0: हाँ, और इसी दौरान उसकी जिंदगी जो ऊपर से एकदम सामान्य दिख रही थी, उसी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। 1985 के आसपास गैरी एक और महिला को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम था जूरियत माउसन। बाद में वही उसकी तीसरी पत्नी बनती है।
1: यानी बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी लग रही थी।
0: बिल्कुल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद गैरी का सेक्स वर्कर के पास जाना बंद नहीं हुआ और इसी दौरान वह लगातार महिलाओं की हत्या करता जा रहा था। हत्या का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसे कहा गया ग्रीन रिवर टास्क फोर्स।
1: मतलब पूरी दुनिया की टीमें मिलके सिर्फ एक सीरियल किलर के पीछे हाथ धो के पड़ गईं,
0: जिनका अब सिर्फ एक ही टारगेट था, उस किलर तक पहुंचना जिसने इतनी महिलाओं की हत्या की है। इस टास्क फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों से पूछताछ की, इलाके की जांच की, संभावित सस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जो सीधे हत्यारे तक पहुंच सके।
1: फिर पुलिस ने क्या किया?
0: एक बार फिर सस्पेक्ट की नई सूची तैयार की गई और इस बार फिर से इस लिस्ट में नाम था गैरी रिचवे का।
1: यानी कि अभी भी पुलिस को गैरी पे शक था।
0: हाँ, और इस बार पूछताछ के दौरान पुलिस ने गैरी के बाल और सलाइवा का सैंपल भी लिया था, लेकिन उस समय जो फॉरेंसिक टेक्निक्स उपलब्ध थीं, उससे पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली।
1: और नतीजा वही हुआ।
0: गैरी को एक बार फिर से छोड़ दिया गया
1: और यही उसकी आजादी को आगे लेके गई और लोगों के लिए ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हुआ।
0: सही कहा, गैरी अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से महिलाओं को निशाना बनाता जा रहा था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी लड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वक्त आता है साल 2001 का। तब तक गैरी पर शक तो था ही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।
1: 2001 यानी तब तक लगभग कितनी लाशें मिल चुकी होंगी?
0: शायद 50 से ज्यादा।
1: 50 लाशें, वो भी एक आदमी ने मारे थे?
0: और अभी तो इसकी गिनती बाकी है।
1: अच्छा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ?
0: दरअसल पुलिस के पास 7 अप्रैल 1987 को लिया गया एक पुराना सैंपल मौजूद था। 2001 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी आगे हो चुकी थी, काफी विकसित हो चुकी थी, और वहां पर ये सैंपल मैच किया गया।
1: यानी कि वही पुराना एविडेंस फिर से जांचा गया?
0: हाँ, और इस बार डीएनए टेस्ट ने गैरी रिचवे को सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। इसके बाद 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फाइनली इसके खिलाफ कोई सबूत तो मिला, लेकिन क्या गैरी ने अपना जुर्म को एक्सेप्ट किया?
0: नहीं, गिरफ्तारी के बाद गैरी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, कई महीने गुजर गए, लेकिन गैरी मुंह नहीं खोल रहा था।
1: लेकिन आखिरकार सच सामने आया कैसे?
0: काफी समय के बाद गैरी ने पुलिस के सामने एक शर्त रखी।
1: शर्त?
0: हाँ, उसने कहा कि वह अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करेगा, हर मामले की जानकारी भी देगा, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
1: यानी कि वो पुलिस के साथ डील करना चाहता था।
0: बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने ये शर्त मान भी ली, क्योंकि उस समय इन मामलों का सच जानना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गैरी ने जो कबूल किया उसने सबको निशब्द कर दिया।
1: अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने?
0: उसने कहा कि उसकी पहली हत्या 1982 में थी, उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाता रहा और अक्सर उनकी लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
1: तो फिर अभी तक लगभग कितनी लाशें थीं, उसको याद था ये?
0: उसने कहा कि उसे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो 70 से 90 के बीच हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है।
1: Oh my God, यानी 70, 80 और 100,
0: या फिर उससे भी ज्यादा।
1: आगे क्या हुआ फिर?
0: फिलहाल के लिए जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 48 विक्टिम की पहचान करने में सफलता मिली।
1: और आखिरकार अदालत ने फैसला क्या दिया?
0: अदालत ने गैरी रिचवे को 48 अलग अलग हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सबूत मिटाने और अपराध के लिए भी दूसरी सजा

0: कहा जाता है कि घर का माहौल बच्चों पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है।
1: सही कहा, और ऐसी परिस्थितियों ने गैरी के बिहेवियर और उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता दोनों बदलते गए, और वही बदलाव आगे चलकर उसे इस रास्ते पर ले गए जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना डाला।
0: और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो बच्चा इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक था।
1: बिल्कुल, गैरी रिजवे की कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अध्ययन मानी जाती है। इस खौफनाक केस पर समय समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और टीवी अडैप्टेशन भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच और उसके अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं।
0: और यही थी कहानी द ग्रीन रिवर किलर की, एक ऐसा मामला जिसने कई सालों तक पूरे अमेरिका को दहशत में रखा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर के एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोम फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोरदा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी, इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसास इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

श्रोताओं, अब मैं जिस नगमे को आपके साथ साझा करने वाली हूँ वो आपकी आरजे अनोखी का सबसे पसंदीदा नगमा है। नगमा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है।

मैं उड़ा जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में जिसके बोल हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने की।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में

बना नहीं। जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजे अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे, हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपने लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।